मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को है। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडी भीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने को है, अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया।

0: AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। जब मन में श्रद्धा हो, हृदय में विश्वास हो और जुबा पर भोलेनाथ का नाम हो तो जीवन की हर राह आसान लगने लगती है। महादेव केवल एक नाम नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और शांति का प्रतीक हैं। तो आइए अपने मन को भक्ति में डुबोते हुए भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए सुनते हैं ये मधुर भजन गीत।

माँ के दरबार में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। माँ के चरणों में सच्चे मन से झुकने वाला हर भक्त अपने मन में एक नई आशा और विश्वास लेकर लौटता है। माँ की महिमा अपरंपार है, उनकी भक्ति में वह शक्ति है जो मन को शांति और जीवन को नई ऊर्जा देती है।

जहाँ भी देखूं मुझे प्रभु आप ही नजर आते हैं। प्रभु भक्ति जब सच्चे मन से की जाए तो भगवान हमसे दूर नहीं रहते बल्कि हमारे आसपास ही रहते हैं। भक्ति में जब डूबा हुआ मन प्रभु को पुकारता है तो हमें हर तरह से प्रभु का आशीर्वाद मिलता है।

विद्या की देवी माँ सरस्वती को ज्ञान बुद्धि और वीणा की देवी माना जाता है। माँ शारदा की कृपा से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में फैलता है।

0: अभी आप अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर समाप्त हुआ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे

0: बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम, आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत के विचार।
5: वैदिक ऋषियों तथा विचारकों की दृष्टि सदैव समष्टि मूलक रही है। समष्टि के हित में उन्हें प्रत्येक व्यक्ति का हित, विश्व श्रेय ही में व्यक्ति का श्रेय स्वभावतः उन्हें संभव तथा सार्थक ज्ञान पड़ा। इस भावना एवं आदर्श को उन्होंने अनेक गूढ़ तथा प्रकट संकेतों एवं प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्ति दी है। किंतु वैदिक आरण्यक युग की इस सीमा एवं विवशता को स्वीकार करना पड़ेगा कि वे अपने अंतर्दृष्टि की उपलब्ध मानव आत्मा की एकता तथा वैभव को विश्व जीवन में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए। भले ही वे बार बार अनेक रूपों में उसका समर्थन करते रहे हों, उन्होंने यह भी अनुभव कर लिया था कि मात्र परम एकता का बोध प्राप्त कर ना अलम नहीं है, बहु का बोध, वस्तु जगत की विविधता की शक्ति का बोध भी विश्व श्रेय तथा लोक मंगल की समग्रता की उपलब्धि के लिए उतना ही आवश्यक है। इसीलिए हमें उपनिषदों में मिलता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूयते तमो ये विद्यायामृता, अथवा विद्यां च विद्यां च यस्तद् वेदोभयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। अतः केवल अपने अंतर में एकत्व के ज्ञान को ही सर्वोपर मान लेने या वही रुक जाने के कारण वे बाह्य जगत संबंधी विविधता के भौतिक अंधकार को नहीं भेद सके और उन दोनों को मानव जीवन की भूमिका में संयोजित नहीं कर सके। आज के युग में हम देखते हैं कि जिस प्रकार वैदिक ऋषियों ने अंतर जगत की छानबीन की, उसी प्रकार वैज्ञानिक बाह्य जगत अर्थात भौतिक जगत की छानबीन में निरत हैं। किंतु ऋषि के अनुसार वे भी अपने एकांगी ज्ञान के कारण अंधकार में निमग्न होने जा रहे हैं। अर्थात वैदिक युग की अंतर्मुखी दृष्टि के समान ही वैज्ञानिक युग की बहिर्भ्रांत दृष्टि भी एकांगी ही है, जिसका प्रमाण हमें आज विश्व ध्वंस के शस्त्रार्थों में देखने को मिल रहा है। यदि विज्ञान का विज्ञान वेदोभयम सह के अनुसार इस युग के एकांगी बहिर्मुखी जीवन का मनुष्य के अंतर जगत की संपद या प्रकाश से समन्वय तथा संयोजन नहीं किया जाएगा, तो विज्ञान भी अपने लोक मंगल या विश्व मानवता के निर्माण के स्वप्न को चरितार्थ करने में असफल ही रहेगा। वैदिक युग की आध्यात्मिकता को हम मानव जीवन के धरातल पर इसलिए भी प्रतिष्ठित नहीं कर पाए और उसे सामाजिक सामूहिक जीवन का व्यापक अंग नहीं बना।

0: पाए कि उसके लिए हमारे पास भौतिक शक्तियों का यथेष्ट ज्ञान नहीं था। भौतिक आध्यात्मिक तत्व भिन्न रहकर तो जीवन के लिए उपयोगी रह नहीं सकते हैं। वे एक ही सत्य के दो रूप थे और उस सत्य को स्थापित करने के लिए हमें दोनों संचरणों के ज्ञान का पर्याप्त बोध आवश्यक था। यदि वैज्ञानिक विद्युत शक्ति का आविष्कार कर एवं उसके अस्तित्व का बोध प्राप्त कर वहीं रुक जाते और उसके व्यावहारिक रूप की भी यथोचित यंत्र आदि बनाकर जीवन में उसका उपयोग करने का प्रयत्न नहीं करते तो वह भी आत्मज्ञान की तरह मानव जीवन को सुख संपन्न बनाने के लिए उपादेय नहीं हो सकते। इसी प्रकार आध्यात्मिक मानवीय एकता, उदात्तता, विश्व संवेदना, करुणा, प्रेम, शांति आदि आत्मा के वैभव को जीवन के धरातल पर उतारने के लिए हमको उसकी भौतिक पीठिका का निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि जड़ तत्व मानवता के विकास प्रसार आदि के लिए सबसे बड़ी पर्वताकार बाधा है। जड़ की शक्ति से उसकी जड़ता पर विजय पाकर ही हम आध्यात्मिक उन्नयन को संभव बना सकते हैं। उसी प्रकार आज भौतिक विज्ञान जिस मानव समता के धरती पर जीवन का स्वर्ग प्रतिष्ठित करने के स्वप्न देख रहा है, वह भी तब तक सफल या संभव नहीं हो सकता जब तक वह मनुष्य के आत्मिक उन्नयन, आध्यात्मिक व्यक्तित्व के अंतर मूल्यों को भी अपनी भौतिक संपदा के साथ ही संयोजित न करे।
1: अभी आप सुन रहे थे सुमित्रा नंदन पंत के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं मुर्गी और बत्तख में लगने वाली बीमारियां और उनसे बचाव विषय पर डॉक्टर जेम्स सिंह से दिनेश कुमार पांडे की बातचीत।

0: डॉक्टर जयम सिंह जी, आप पशुपालन के विशेषज्ञ हैं, तो भैया आपसे हम ये जानना चाहते कि भाई कुछ लोग व्यवसाय के रूप में मुर्गी पालन करे थी, बतख पालन करे थी, हाँ, तो कहों कहों ऐसा देखे के मिलता है कि भैया जो मुर्गी पालन तो कह दें लेकिन वहाँ तमाम बेरामी और रोग दोख लग जाते, जो वजह से उनके मुर्गी कच्छत हो जाते है और उनके व्यवसाय में घाटा हो जाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते कि जो मुर्गी पालन भैया हर एक कहे हैं, तो कौन कौन मुर्गियन में बेरामी होत है, हाँ, जोने से कि अगर वो बचाव करें तो उनका अच्छा लाभ होए, तो उनके बारे में बताएं।
1: हाँ, पहले बार मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो रानीखेत डिजीज़ है, ये वायरस डिजीज़ है।
0: जी जी
1: ये बहुत घातक बीमारी है। वो खासकर हम ये जो वायरस जो है वो एवियन पैरामेक्जो वायरस टाइप ए नाम का एक वायरस है, उसी वायरस से ये फैलता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है और इसका मॉर्टलिटी रेट जो है 60-80% तक होता है, मतलब 60-80% तक इसका
0: जी जी डॉक्टर भैया,
1: मॉर्टलिटी
0: एक
1: होता
0: बात
1: है।
0: और ही जानना चाहब कि का ये जो वायरस वाली बिरामी बा वो एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी तक फैल जाता है?
1: हाँ, ये एक दूसरा मुर्गी से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे
0: अच्छा
1: ये
0: अच्छा
1: फैलते चले जाते
0: जी
1: हैं
0: जी
1: ये।
0: जी तो अच्छा, ये के का लक्षण होते हैं मुर्गी पालक पालन करे वाले भैया कैसे समझें कि ये मुर्गी के हमारे ये रानी खेत वाली बिरामी हो गई?
1: हाँ, मुर्गी में तेज़ बुखार आ जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है
0: जी जी
1: और ये क्या होता है कि उसका सूजन हो जाते हैं, पैरों में लकवा मार जाते हैं,
0: हाँ,
1: तब पता चल जाता है कि ये जो बीमारी जो है वो रानीखेत डिजीज़ का बीमारी हो गई है।
0: अच्छा, वो अंडा के उत्पादन में भी कमी आवत हुए?
1: हाँ, अंडा के उत्पादन में भी कमी आता है।
0: अच्छा, तो अगर ये लक्षण दिखाए मुर्गीन के, तो हम तो ये समझते हैं भैया कि जोने मुर्गी में ये लक्षण दिखाए वो मुर्गी के और मुर्गियन से अलग कर दे चाहिए,
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: और अलग कर दे, फिर एकरे बचाव में क्या करें?
1: बचाव में ये है कि हम लोग 7 दिन में, 8वां दिन पे और 10 हफ्ते में हम रानीखेत वैक्सीन उसको लगाना चाहिए।
0: अच्छा,
1: हाँ, उसके बाद ही उसको बचाव हो जाएगा। और कोई ऐसा दवा है नहीं है उसका कुछ उपचार के लिए, वैक्सीन ही उसका रामबाण उपचार है।
0: का मतलब ये भैया कि जो नहीं ये टीका लगावे वाली व्यवस्था

0: व्यवस्था है
1: हाँ
0: ओका हमेशा करावत रहें तो बीरामी ना होए।
1: ना होए
0: अब अगर बीरामी होगी तो ओकर इलाज बहुत मुश्किल काम है।
1: बहुत मुश्किल बा।
0: अच्छा, तो काहे का मतलब ये है कि इलाज से बचाव बेहतर है। यही आधार पे पशुपालक मुर्गी पालन भैया हरे करे वाले अगर करी तो निश्चित रूप से यह बीरामी से उनकर मुर्गी बची रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और भैया और दूसर कौन बीरामी हो सकता है?
1: और है एक बर्ड फ्लू नाम का एक वायरस है,
0: जी।
1: वो एवियन इन्फ्लुएंजा नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए नाम का एक वायरस है, उसी वायरस से फैला जाता है ये।
0: अच्छा, तो ये भैया यहू का ऐसे है का कि एक मुर्गी से दूसरे, दूसरे से तीसरे हो जाते?
1: हाँ, ये मुर्गी से तो होता ही है, उसके साथ साथ आदमी में भी होता है ये।
0: अच्छा,
1: हाँ, ये बहुत घातक बीमारी है ये।
0: का मतलब ये कि अगर मुर्गी में भवा जोन मनाई जाए वो हो
1: हाँ,
0: सकत,
1: हो सकते।
0: तो ओकरे एक लक्षण का हो तो भैया?
1: लक्षण जो है वो एक्चुअली ये होता है, तेज बुखार आता है, और मुर्गी में सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और ये उसका उसका सीना, उसका पैर, उसका जो जो

0: मतलब ये कि अगर मुर्गी में भवा उ जोन मनाई जाए वो हो सकत है,
1: हो सकते
0: तो ओकरे एक लक्षण का हो तो भैया।
1: लक्षण जो है वो एक्चुअली ये होता है, तेज बुखार आता है और मुर्गी में सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और ये उसका सीना, उसका पैर, उसका जो जो हेड होता है वो भी सूजन आ जाता है बहुत बुरी तरीके से, और उसके बाद उसका जो लेट्रिन, जो डायरिया जो होता है वो वाइट कलर और पीली कलर का आ जाता है,
0: अच्छा, तो कहे का मतलब भैया कि
1: उसका
0: एकरे,
1: बीज जो है,
0: हाँ एकरे
1: उसका
0: बचाव
1: बीज,
0: में का करे के चाहिए?
1: उसको बचाव करने के लिए एक एक वैक्सीन आता है, वही वही वैक्सीन से ही कंट्रोल कर पाएंगे उसको, एवियन इन्फ्लुएंजा करके एक वैक्सीन आता है, उसी वैक्सीन से आपको कंट्रोल कर सकते हैं बस।
0: कहे का मतलब ये कि वह टीका वाली व्यवस्था है कि
1: हाँ,
0: अगर
1: टीका वाले,
0: टीकाकरण करत रही
1: हाँ हाँ
0: तो ऐसे बचाव हो
1: बचाव
0: सकता
1: हो
0: है।
1: सके थे।
0: अच्छा एक बात हो भैया कि ये बिरामी हो के कई दिन पहले से लक्षण दिखाए शुरू हो जाते?
1: लक्षण जो है आपको जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तक आपको लक्षण दिखाना चालू हो जाएगा, जब से बीमार होने लग जाता है
0: जी जी
1: उसके बाद
0: लक्षण दिखाई
1: लक्षण
0: लगते हैं।
1: दिखाई देगा।
0: अब एक बात डॉक्टर भैया यहीं और जानना चाहब कि अगर ये बिरामी मनई में फैल जाते है तो एका बचाव के लिए मनई कौन कौन साधन अपनावे कि मनई में न फैले और एका मुर्गी का अलग रख दे, एक उपचार भी करे, दवाई करे?
1: हाँ, उसका एक उपचार है को जो जहाँ पर जो एवियन इन्फ्लुएंजा, जो बर्ड फ्लू जो कहते हैं उसको, वहाँ पर जहाँ पे होता है उसका 1 किलोमीटर आगे जाके उनका जो जितना अंडे हैं, जितना मुर्गियाँ हैं उसको मारा जाता है
0: अच्छा
1: और काट के और दफनाया जाता है,
0: मतलब जमीन में गाड़ देते
1: जमीन
0: हैं।
1: में गाड़ा जाता है उसको,
0: अच्छा
1: और जो जितना फार्मर है उनके लिए गवर्नमेंट सरकार उनको पैसा दिया जाता है।
0: अच्छा अच्छा काहे का मतलब ये कि अगर जोने मुर्गी में बिरामी हो जाए और अगर मुर्गी मर जाए तो ओका 1 किलोमीटर दूर कुल में जहाँ सुनसान हो वहीं गड्ढा खोद के गाड़ दें, हाँ नहीं तो वो मनई में फैल सकत।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: और कौन बिरामी हो तो भैया?
1: और एक एक एक और घातक बीमारी है, उसका नाम है मैरिक्स डिजीज बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही, वो हार्पी वायरस करके एक बीमार एक घातक वायरस है, उसी से ही ये मुर्गियों को दिक्कतें होती है इसमें।
0: अच्छा, तो एक लक्षण का है भैया?
1: ये पैरों, गर्दन और पंखों में लकवा मार जाता है, मुर्गियाँ लंगड़ाने लग जाती है और अंदरूनी अंगों में भी ट्यूमर बन जाती है इसमें।
0: अच्छा यूं सांसों से लेने में दिक्कत होती कि नहीं होती?
1: नहीं, इसमें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है, बस ये कैंसर टाइप का ये फोम होता है
0: अच्छा
1: अंदर
0: अच्छा
1: में।
0: तो यहू के बचाव में कुछ टीका उका हो की व्यवस्था
1: हाँ,
0: है?
1: इसके लिए मैरिक डिजीज जो होता है वो पहले दिन ही वैक्सीन लगाना पड़ता है,
0: अच्छा
1: जिस दिन
0: अच्छा
1: बच्चा हो जाता है उसके बाद उसके एक ही दिन में ही वो चमड़े में वैक्सीन लगाई जाती है।
0: अच्छा, तो अगर वैक्सीन लगवा ले हैं तो ये बीरामी होए की संभावना कम रहे,
1: कम रहे,
0: हाँ
1: हाँ
0: अगर मान लो होएगी तब भैया?
1: तब हो गई तो भैया उसको बचाना बहुत मुश्किल है।
0: अच्छा, तो ये भैया और बिरामी है कोनो?
1: नहीं, और कोई एक और है, वो है गम्बरो। गम्बरो जो होता है वो भी बहुत अच्छा, बहुत घातक बीमारी है, ये भी वायरस है, मगर वो जो फैलते हैं वो इन्फेक्टियस बर्सल डिजीज़ बोला जाता है, उसी उसी वायरस से ही होता है। ये वायरस जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होती है, ये खासकर हमारे जो मुर्गियाँ होती है उसके इम्यून में इफ़ेक्ट करते हैं।
0: तो इसे भैया एक लक्षण में का देखे को मिले?
1: लक्षण में ये होता है कि उसका बीज जो है वो व्हाइट कलर का बीज करते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो अब एकरे बचाव के लिए का करे के
1: उनके
0: चाहिए?
1: उनके बचाव के लिए हम लोग थोड़ा सा बैक्टीरिया, वो एंटीबायोटिक का कुछ देना पड़ेंगे। मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जैसे एमोक्सिलिन, क्लोक्सासिलिन का सॉल्यूशन आता है, उनको दे सकते हैं, और सल्फा ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं,
0: जी
1: सल्फा मेथोक्जाजोल्स और ट्राइमिथोप्रिम जैसे मेडिसिन आता है, तो उनको यूज़ करके हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी जी जी अच्छा एक भैया कुछ चर्चा ये कर रहे थे भैया कि लीची रोग का होता?
1: लीची रोग ये होता है कि लीची जो है एक फल के रूप होती है, तो लीची जो होता है उसके हार्ट में लीची का छिलका हुआ जो कवर होते हैं उसी तरह कवर होते हैं,
0: जी
1: ये जो
0: जी
1: हार्ट जो है उसको लीची की तरह कवर करते हैं।
0: जी
1: बतख में दो ही ऐसे बीमारी होती है वो बहुत घातक।

0: बीमारी होती हैं, एक तो नाम है डग प्लेग और एक तो नाम है डग कोलेरा।
1: जी
0: वो डग प्लेग जो है वही वायरल इन्फेक्शन से फैला जाता है। वो उसको उसका भी जो बीज जो है वो ग्रीन कलर का बीज करते हैं, और इसमें क्या होता है कि कभी कभी लालपन भी आते हैं उसमें,
1: जी
0: मतलब ये क्या ब्लडी डायरिया बोला जाता है इसको, ब्लडी डायरिया भी होते हैं। तो इसका जो वैक्सीनेशन जो है, इसके वैक्सीनेशन ही उसका उपचार है। जो
1: जी
0: वैक्सीनेशन जो है 8 से 12 वीक के उम्र के जो डक है
1: जी
0: उनको उनको दिया जाएगा।
1: अच्छा, हम कहते हैं डॉक्टर भैया आप बहुत अच्छी जानकारी दे, जो भी मुर्गी पालन करे वाले भैया हैं, बतख पालन करे वाले भैया हैं, वहाँ जानकारी से निश्चित वाक लाभ उठें, ये जानकारी देख ले, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे मुर्गी और बत्तख में लगने वाली बीमारियां और उनसे बचाव विषय पर डॉक्टर जेम्स सिंह से दिनेश कुमार पांडे की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर पंकज गुप्ता की वार्ता, ब्रेन स्ट्रोक कारण लक्षण और उपचार।
1: स्ट्रोक या किसी मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति ब्लॉक होने या रक्त वाहिनी के फटने की वजह से होता है, जिसके कारण मस्तिष्क के उस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वहां ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ नहीं पहुंच पाने के कारण मस्तिष्क का वो हिस्सा धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है या कुछ एरिया डेड भी हो जाते हैं, जिसके कारण से मरीज को लकवा या विकलांगता, कोमा अथवा मृत्यु भी हो सकती है। स्ट्रोक अपने में एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति होती है, जिसमें तत्काल उपचार सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में स्ट्रोक मृत्यु या विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। शहरी इलाकों में स्ट्रोक का इंसिडेंस लगभग 84 से 262 पर लाख पॉपुलेशन, जबकि ग्रामीण इलाकों में 334 से 424 पर लाख पॉपुलेशन है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के प्रति टालने की प्रवृत्ति, शिक्षा की कमी और इलाज में देरी इसका मुख्य कारण है। स्ट्रोक तीन प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्चीमिक स्ट्रोक्स, दूसरे होते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक्स और तीसरे हेमरेजिक स्ट्रोक्स। ट्रांजिएंट इस्चीमिक स्ट्रोक्स, इस स्ट्रोक में मस्तिष्क के रक्त प्रवाह में क्षणिक रूप से बाधा उत्पन्न होती है। इसमें मरीज को बहुत मामूली समस्या समझ में आती है और यह सामान्य रूप से 24 से 48 घंटों में ठीक हो जाता है, किंतु इसे एक वार्निंग सिग्नल के तौर पर देखा जाता है। मेजर स्ट्रोक होने से पहले इस तरह के अटैक्स हो सकते हैं। इस्चीमिक स्ट्रोक स्ट्रोक में होने वाले डिफरेंट वैरायटीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है और ये लगभग 87% ऑफ केसेस में पाई जाती है। इस स्ट्रोक में खून का थक्का मस्तिष्क की नस को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क के एक हिस्से में रक्त प्रवाह नहीं हो पाता और वह धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। ट्रांजिएंट स्ट्रोक के विपरीत इस इस्चीमिक स्ट्रोक का इलाज यदि तुरंत शुरू नहीं किया गया तो यह घातक भी हो सकता है। आइडियल सिचुएशन में इस्चीमिक स्ट्रोक में यदि इलाज 4 घंटे के अंदर थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा शुरू कर दिया जाए तो रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। जो तीसरी वैरायटी है उसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इसमें मस्तिष्क में रक्त वाहिनी फट जाती है और ऐसी स्थिति में दिमाग के अंदर ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है, जिसे आमतौर पर ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। इस स्थिति में भी हैमरेज वाले एरिया में रक्त का संचार सामान्य रूप से नहीं हो पाता और मरीज विभिन्न प्रकार की विकलांगता, कोमा या मृत्यु का शिकार हो सकता है। अब स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? स्ट्रोक के लक्षणों में मरीज को बोलने में समस्या होना, समझने में परेशानी होना, हाथ पांव में लकवा या चेहरे का टेढ़ापन होना, शरीर के किसी हिस्से में सूनापन, एबनॉर्मल बिहेवियर, आँखों से धुंधला दिखाई पड़ना या दो दिखाई पड़ना, अत्यधिक तेज सिरदर्द होना, उसके साथ में उल्टी, चक्कर और असंतुलन होना और कभी कभी मरीज बेहोश भी हो सकता है। स्ट्रोक के मुख्य कारणों में सबसे प्रथम कारण अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी और शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं। कुछ मरीज जो हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं

0: उनमें कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिनसे खून का थक्का पतला किया जाता है, इसे एंटीकोगुलेंट ड्रग्स कहते हैं। उनके ओवरडोज की वजह से भी इस तरह के स्ट्रोक पड़ सकते हैं। मस्तिष्क में कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि एनर्जम और एवी मेलफॉर्मेशंस। कभी कभी उनके ब्लीड करने की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। अब हम किन सावधानियों के द्वारा इन स्ट्रोक का बचाव कर सकते हैं? तो उनमें सर्वप्रथम आता है ब्लड प्रेशर और शुगर का रेगुलर चेकअप और मॉनिटरिंग। दूसरी तरह से हम बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकने के लिए खान पान में फैट्स की मात्रा कम रखें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें जिसमें 8 घंटे की नींद, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ ना करें, वज़न कम करें, सब्जियां फल ज़्यादा खाएं और जंक फूड्स को अवॉइड करें। इसकी डायग्नोसिस हम सीटी स्कैन या एमआरआई से करते हैं, और इलाज में इस्चीमिक स्ट्रोक्स में मेनली थ्रोम्बोलिसिस या दवाइयों के द्वारा खून का थक्का पतला किया जाता है, जब हेमरेजिक स्ट्रोक में दवाइयों के द्वारा और कभी कभी ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज किया जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रेन स्ट्रोक कारण लक्षण और उपचार, डॉक्टर पंकज गुप्ता की ये वार्ता। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वीव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 7:30 पर किशोरी अमोनकर का गायन, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर पंडित जसराज का गायन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर अमृता मालवी के स्वर में भजन और गीत प्रसारित किया जाएगा।

सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे प्रद्युम्न कुमार, संगीता मिश्रा और सुभाष चंद्र यादव। और साथ ही सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार।

11:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे आपकी पसंद, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी रूपक, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, प्रतिभागी होंगी दीप्ति मिश्रा और तनु आर्या। दोपहर 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा।

शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया, युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर, शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी, रात 8 बजे फिल्म संगीत।

रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा कहकशां। तो ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। ह्यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। षोडशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सितंबर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलंघ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्प्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायु प्रहारस्य अथ सिंदूराभियानस्य आधारशिलां अरचयत्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्य प्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः 28-29 सितंबर मासे दिल्ल्यां संभूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुंबय्याः 26-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमंत्री स्पष्टम् उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघः सम्प्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगितताम् अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मंत्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयम् अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये संदेशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय संबंधान् उच्चस्तरं नेतुं तत्परौ वर्तेते। असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रसंगे कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यमेन संसूचयत् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् इयं मंत्रणा अतीव सफला आसीत्, उभौ देशौ च संबंधानां दृढ़ीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मंत्री

0: नमस्ते।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

अभी आप श्री रामचरितमानस ही संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए केदारनाथ फिल्म का ये भजन अमित त्रिवेदी की आवाज़ में। संगीत अमित त्रिवेदी का है, रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए चारधाम फिल्म से ये भजन। हरिहरन की आवाज़ में संगीत दिया है सुरेंद्र कोहली ने और रचना है उदय शंकर की।

अभी आपने सुना चार धाम फिल्म से ये भजन, और अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Acar. नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा किए अपने विचार। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की भी चर्चा की। कहा, प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है आंवला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 संबंधी समीक्षा बैठक में दिए कई अहम निर्देश। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में सुधार पर दिया जोर। और भारी बारिश और खराब मौसम से प्रभावित जिलों में राहत एवं बचाव कार्य को लेकर राहत आयुक्त ने की समीक्षा। प्रभावित परिवारों की दिक्कतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। वहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं।

0: महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रतापगढ़ के आंवले और इससे समृद्धि की राह बना रही मातृशक्ति का उल्लेख कर समूचे उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किए जाने पर समूह की अध्यक्ष कमलेश कुमारी ने भी प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया।
1: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे समूह को चुने और हम लोग मेहनत किए हैं। सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं पहले और आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है। बहुत खुश है हमारे समूह की महिलाएं भी खुश है क्योंकि इस दुनिया जानेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की।
2: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
3: ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
2: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राविधानों, वित्तीय स्वीकृतियों और वास्तविक व्यय की समीक्षा की। उन्होंने बजट प्राविधानों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने और व्यय की गति तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि अगले 2 माह में हर हाल में 70% वित्तीय स्वीकृतियां जारी हों और कुल आवंटित बजट के सापेक्ष कम से कम 60% व्यय सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना चाहिए। बैठक के दौरान श्री योगी ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और बैंकिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रूरल क्रेडिट कॉन्क्लेव जैसी आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने के भी निर्देश दिए। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर विपक्ष की आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि SIR के बारे में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने की यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे दिन कल ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में विशेष व्यावसायिक सत्र आयोजित हुआ। सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश विश्व में अपनी खास पहचान बना रहा है।
4: 3,000 करोड़ से अधिक एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं समझता हूं अब उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की

0: बुलेट ट्रेन चल गई है और बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाने वाली।
1: प्रदेश में हुई भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रभावित जिलों में राहत तथा बचाव कार्य लगातार जारी है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने कल राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की। राहत आयुक्त ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और प्रभावित परिवारों की दिक्कतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी लेने और तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। खराब मौसम को देखते हुए अमरोहा, श्रावस्ती, पीलीभीत और बिजनौर जिलों में स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा किए अपने विचार। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की भी चर्चा की। कहा, प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है आंवला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 संबंधी समीक्षा बैठक में दिए कई अहम निर्देश। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में सुधार पर दिया जोर। और भारी बारिश और खराब मौसम से प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को लेकर राहत आयुक्त ने की समीक्षा। प्रभावित परिवारों की दिक्कतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीटिंग वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन राग है देशकर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवन प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में

0: बनाने जा रहे हैं।
1: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवर्ण इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
3: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा

0: गांव में हुआ था जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 33 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने के मौके पर इसकी याद ताजा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल का मुजाहिरा किया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने सियाहत के शोबे के लिए कौमी डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा तामीर करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और तिरुवनंतपुरम में पहले ओडीआई में मर्दों की क्रिकेट में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी से भारत को वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की कामयाबी में बड़ी मदद मिली है। अब खबरें तफसील से। भारत सर्जिकल स्ट्राइक्स की 10वीं सालगिरह मना रहा है जिसमें दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी मुखालिफ पॉलिसी की एक नई मिसाल कायम की थी। 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन के पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स पर निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। ये कार्रवाई इसी महीने के शुरू में उड़ी में होने वाले दहशतगर्दाना हमले का एक बराह रास्त और फैसला कुन फौजी जवाब थी जिसमें 19 भारतीय जवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। ये सालगिरह कौम की दिफाई तदाबीर में एक दहाई के इर्तका की अक्कासी करती है। गुज़श्ता रोज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स को एक तारीखी संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस सर्जिकल स्ट्राइक ने कंट्रोल लाइन के पार कार्रवाई करने में भारतीय फौज के किरदार को उजागर किया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कारकुन अशोक सिंघल को खिराज अकीदत पेश किया है। एक अंग्रेजी अखबार में अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल की जिंदगी एक यादगार उसूल की अक्कास है। दूसरों की फलाह बहबूद की कोशिश फर्द की जाती कामयाबी से कहीं ज्यादा अहमियत हासिल कर लेती है। जनाब मोदी ने कहा कि हफ्ते के रोज से मुल्क ने अशोक सिंघल की सालगिरह की 7 साल तकरीबात का आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अशोक सिंघल ने समाजी इत्तेहाद और मसावात को मजबूत बनाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल को फिक्री वजाहत की ऐसी नेमत हासिल थी कि मुआशरे में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं होना चाहिए और हर फर्द मसावी इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह उनका एजाज था कि उन्हें अशोक सिंघल के साथ बातचीत करने के बेशुमार मौके मिले। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। इसकी तस्दीक बैंक मुलाजमीन की और

0: इंडिया एसोसिएशन AIBEA ने की है। ये फैसला भारतीय बैंकों की एसोसिएशन IBA के साथ एक मुआयदा तय पाए जाने के बाद किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में AIBEA ने कहा कि यह फैसला IBA और बैंक यूनियनों के मुत्तहिदा फोरम UFBU के दरमियान एक मीटिंग के बाद किया गया। ये मीटिंग हड़ताल से मुतालिक मामलात के बारे में कल रात मुनाकिद की गई थी। मरकज ने सियाहत के शोबे के लिए एक कौमी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो सार्फिन को एक मुश्तरका डिजिटल जगह पर प्रोडक्ट्स और खिदमात के वसीर रेंज तक रसाई के काबिल बनाएगा। सियाहत की वजारत ने नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की तामीर के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ हाथ मिलाया है, जिसका हदफ 2028 के अख्तितम तक 23,000 सियाहती तजुर्बात और होम स्टेज को साथ लाना और उन्हें तलाश के काबिल काबिल एतमाद और बैंकिंग के काबिल बनाना है। मरकजी वजीर सियाहत गजेंद्र शेखावत ने कल आलमी योम सियाहत के मौके पर भारत मंडपम में मुनक़दा एक तकरीब से इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मुल्क आज मुजाहिद आजादी भगत सिंह को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। आज ही के दिन 1907 में भगत सिंह पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में पैदा हुए थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह की पैदाइश एक इनकलाबी घराने में हुई। वो अपने 7 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में प्यार से भगन वाला कहा जाता था, जिसका मतलब होता है खुशकिस्मत। और उन्होंने राजगुरु जी और सुखदेव जी के हमरा अपनी कुर्बानी पेश करके मुल्क की आजादी में अपने नाम के इस मतलब को साबित किया। जश्न इनकलाब के उन्वान से आज लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक रियासती सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। मुल्क के अजीम सपूत को खराज अकीदत पेश करने के लिए लोग शहीद भगत सिंह नगर में उनके आबाई गांव खटकर क्लब भी पहुंच रहे हैं। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुजाहिद आजादी शहीद भगत सिंह के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अपनी गैर मामूली शुजात और बहादुरी से भगत सिंह ने आजादी की तहरीक में नई जान डाली है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत के इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में 2026 की वोटर फहरिस्त पर खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR के जारी काम के लिए नई तारीखें मुकर्रर की हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली में 2026 की वोटर फहरिस्त में खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR का काम जारी है और इंतखाबी कमीशन ने दावे और एतराजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर की है। नोटिस का मरहला या दावों और एतराजात को निपटाने का मरहला 30 नवंबर तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त अब 4 दिसंबर को जारी की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर ने बताया कि कल कौमी राजधानी दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशनों की जगहों पर खसूसी कैंपों का एहतमाम कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। ये कैंप फॉर्म 6 के जरिए नए वोटरों के इंदराज और दीगर इंतखाबी खिदमात फराहम करने के लिए लगाए गए थे। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर ने एक बयान में बताया कि नौजवान वोटरों के इंदराज के लिए खुसूसी कैंपों के इनेकाद का एक और दौर शुरू किया जाएगा। ये कैंप कल और बुध को कौमी राजधानी के सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी इदारों में मुनक़िद किए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंतक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने के अमल के जरिए लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आ रही है। आज इस खुसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान में हम तस्करा कर रहे हैं कि नमो भारत के जरिए इस नजरिए को लोथल में समंदर से मुतालिक कौमी विरासती कॉम्प्लेक्स जैसे इकदाम की शक्ल में किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
2: गुजरात के शहर लोथल में कदीम हड़प्पन गोदी के फरोग के साथ साथ समंदर से मुतालिक कौमी विरासती कॉम्प्लेक्स भारत के पहले कौमी इदारे के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जहां समंदर से मुतालिक मुल्क की 4,500 साल से ज्यादा की मालामाल तारीख की नुमाइश की जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स को आलमी सतह के एक सकाफती मकाम के तौर पर डिजाइन किया

0: गया है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम बनाया जाएगा और बहरिया की एक गैलरी कायम की जाएगी, जिसमें आईएनएस निशंक, समंदर पर प्रवास करने वाले एक जहाज और एक UH-3 हेलीकॉप्टर जैसे मशहूर दिफाई असासों की नुमाइश की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके, समझ सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे विश्वास है ये दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा।
0: गुजरात की समंदर से मुतालिक 5000 साल की विरासत और कैसे इस बड़े प्रोजेक्ट से मुस्तकबिल की नस्लों के लिए इसका तहफ्फुज किया जाएगा, ये जिक्र करते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा,
2: जहाँ तक गुजरात में मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवन

0: गुजरात की समंदर से मुतालिक 5000 साल की विरासत और कैसे इस बड़े प्रोजेक्ट से मुस्तकबिल की नस्लों के लिए इसका तहफ्फुज़ किया जाएगा, ये जिक्र करते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा,
1: जहाँ तक गुजरात में मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। आप सभी यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा लाइट हाउस म्यूजियम और सबसे बड़ी ओपन एक्टिव गैलरी का साथ भव्य नेवल म्यूजियम भी बनाया जाएगा।
0: अहमदाबाद से अपर्णा खुम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने अगले दो दिन के दौरान आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत भारत के शिमाल मशरकी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना में भी आज इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। उत्तराखंड में हिमालयी इलाकों में फंसे हुए 179 को पैमा और मुआविन अमले को बहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में को पैमाओं के 13 ग्रुप्स के अरकान मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। मर्दों के क्रिकेट में कल रात तिरुवनंतपुरम में विराट कोहली और शुभमन गिल की शानदार सेंचुरियों की बदौलत भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में जबरदस्त जीत हासिल की। विराट कोहली 139 रन पर जबकि ऋतुराज गायकवाड 13 रन पर नॉट आउट रहे। 296 रन के हदफ का ताकुब करते हुए भारत ने 41 ओवर्स और 4 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए। इस तरह भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। विराट कोहली ने एक रोजा मैचों की अपनी 55वीं सेंचुरी बनाई। वो वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद 15,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम जापान में जारी एशियाई खेलों में आज निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर की क्यादत में भारतीय टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा अपने पास बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, लेकिन उसे ग्रुप मरहले के मुकाबले में नेपाल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
3: शुक्रिया कोनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात में मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम मोदी के इजहार ख्याल को शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भारत में दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मर्दमशुमारी में शिरकत की अपील। अखबार प्रताप ने अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वजीर खारजा एस जयशंकर के खिताब को अहमियत देते हुए लिखा है कि दहशतगर्दी से समझौता नहीं, अपने दिफा का हक बरकरार, इस्लाहात पर मबनी कसीर फरीकी निजाम का हामी है भारत। अखबार इंकलाब ने भी इसे अहम खबर बनाया है। प्रताप की एक और अहम सुर्खी है, मोबाइल रिचार्ज 28 दिन के बजाय 30 दिन का मिलेगा, मरकजी हुकूमत ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 को लागू किया। अखबार की बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह है, आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने का फैसला तेहरान की जानिब से तयकरदा शराइत की तकमील से मशरूत है, ईरानी वजीर खारजा का बयान। ईरान को माशी तौर पर तनहा करने के लिए अमरीका का 50 से ज्यादा ममालिक पर दबाव, अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का दावा।
2: आखिर में खास खबरें एक बार फिर, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स के 10 साल पूरे होने के मौके पर उसकी याद ताज़ा कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल का मुजाहिरा किया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्क गिर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने सियाहत के शोबे के लिए कौमी डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा तामीर करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है और तिरुवनंतपुरम में पहले ODI में मर्दों के क्रिकेट में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी से भारत को वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की कामयाबी में बड़ी मदद मिली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी सुनने वाले श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। हेलो श्रोताओं, कैसे हैं आप? खुश रहिए, अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नीरा त्रिपाठी जी के भेजे हुए इस सुविचार से। कष्ट देने के बाद दिया गया प्रेम, अब शब्द बोलने के बाद मांगी गई माफी और नजरअंदाज करने के बाद दी गई इज्जत जीवन में कोई महत्व तो नहीं रखती। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सुविचार हमें भेजा नीरा त्रिपाठी जी। और श्रोताओं, अब आते हैं अपने विषय पर। हमारा आज का जो विषय है वो है रिश्तों में लाएं मिठास। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हम सभी के जिंदगी से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिश्तों में लाएं मिठास की। रिश्ते हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत पूंजी हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, पड़ोसी और सहकर्मी, हर रिश्ता हमारे जीवन को अलग रंग देता है। लेकिन रिश्ते केवल नाम से नहीं चलते, उन्हें प्यार, विश्वास, सम्मान और समय की जरूरत होती है। कभी कभी रिश्तों में बड़ी समस्याएं नहीं बल्कि छोटी छोटी बातें दूरियां पैदा कर देती हैं। एक कठोर शब्द, थोड़ी सी गलतफहमी या सामने वाले को समय ना देना रिश्तों में खटास ला सकता है। रिश्तों को मजबूत बनाना है तो शब्दों में मिठास और व्यवहार में अपनापन लाना ही होगा। श्रोताओं, रिश्तों में मिठास लाने का सबसे आसान तरीका है मीठा बोलना। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक अच्छा शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक कठोर शब्द किसी का दिल दुखा सकता है। श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और लौटते हैं अपने कार्यक्रम में।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं रिश्तों में लाए मिठास की। कई बार हम अपने ही लोगों से बिना सोचे समझे ऐसा कुछ कह देते हैं जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोलने से पहले एक पल रुक कर सोचे, क्या मेरे शब्द सामने वाले के दिल को खुशी देंगे या चोट पहुंचाएंगे। आज की व्यस्त जिंदगी में हम सभी के पास बहुत काम है, लेकिन अपने लोगों के लिए समय कम होता जा रहा है। आज हम रहते तो एक शहर में हैं, लेकिन किसी के घर जाने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। हमारे मोबाइल में इतना बैलेंस होता है कि चाहे जितनी देर बात की जाए, लेकिन हम नहीं करते। बहुत मन हुआ तो व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग भेज दिया और रात को सोने गए तो गुड नाइट। एक ही घर में रहने वाले लोग कभी कभी मोबाइल के स्क्रीन में इतने व्यस्त होते हैं कि एक दूसरे से बात करने का समय नहीं निकाल पाते। रिश्ते समय मांगते हैं, सुविधा नहीं। कभी कभी माता पिता के पास बैठकर उनसे बात करिए, कभी भाई बहन से हाल चाल पूछिए, कभी दोस्त को बिना किसी काम के फ़ोन कीजिए। आपके लिए यह 5-10 मिनट हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए यह बहुत बड़ी

खुशी हो सकती है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए बड़ी कोशिश नहीं बल्कि एक छोटी सी पहल काफ़ी होती है। किसी की बात सुने बिना निष्कर्ष निकाल लेना रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है। रिश्ता वही खूबसूरत है जहाँ से मैं से ज़्यादा हम की भावना हो। रिश्तों में कभी कभी गलतियाँ होती हैं, कोई बात हमें बुरी लग सकती है, कोई उम्मीद पूरी नहीं होती और मन में नाराज़गी पैदा हो जाती है, लेकिन हर छोटी बात को दिल में रख लेना रिश्तों में भारीपन बढ़ा देती है। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, कई बार माफ़ी रिश्तों को फिर से जोड़ने की शुरुआत होती है।

रिश्ते वह आधार हैं जो हर गम को छोटा और हर खुशी को बड़ा कर देते हैं। रिश्ते ही हैं जो पूरी तरह से टूट चुके व्यक्ति को फिर से संभाल सकते हैं। रिश्ते ही हैं जो जिंदगी से हार चुके व्यक्ति को फिर से जीने की नई राह देते हैं। तो श्रोताओं, आखिर में हम आपसे यही कहेंगे, हर रिश्तों को सम्मान दें और अच्छी भाषा का प्रयोग करें। आज मानव जीवन रिश्तों से बंधा हुआ है। हर रिश्तों में एक मर्यादा का होना बहुत ज़रूरी है। मर्यादा मतलब उन रिश्तों में विश्वास, अपनापन होना। बिना विश्वास के रिश्ते टिक नहीं सकते। एक दूसरे के विचारों को समझना, हर रिश्ते में सम्मान बहुत ज़रूरी है। समाज में रिश्तों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अब इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। श्रोताओं, आप अपने प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। तो कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म घर से ये गीत। संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और रचना है गुलजार की।

कभी कभी कोई गीत सिर्फ गीत नहीं होता, बल्कि दिल की उन खूबसूरत भावनाओं को आवाज़ देता है जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह पाते। कुछ ऐसी ही मीठी अनुभूति लिए है फिल्म यादों की बारात का ये गीत,

था आर डी बर्मन ने और रचना थी मजरूह की। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही दिल ठहर सा जाता है और बीते हुए खूबसूरत लम्हे आंखों के सामने ताज़ा हो जाते हैं। ऐसा ही एक बेहद मधुर और भावपूर्ण गीत हम लेकर आपके लिए आए हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म पहचान से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना पहचान फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज़ थी, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और रचना थी नीरज की। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
2: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों आरटीओ कार्यालय में दलालों की सक्रियता और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरटीओ परिसर में औचक छापेमारी की गई। इस दौरान आरटीओ कार्यालय में बड़े पैमानों पर दलालों की सक्रियता पाए जाने पर 11 संदिग्ध दलालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसी के साथ ही जाँच के दौरान आरटीओ कार्यालय के अभिलेखों में भी गंभीर लापरवाही और विसंगतियाँ पाई गयी। एसडीएम सदर कानपुर नगर अनुभव सिंह ने बताया कि
3: का आशय यही था कि शासन द्वारा जो प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, उस प्रकार का भ्रष्टाचार तो नहीं, जिसके क्रम में इनके अभिलेख देखे गए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स प्राप्त की गई है और अब एक जांच की जाएगी, उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अनुपालन।
2: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय समन्वित रवि दलहन अनुसंधान परियोजना की 2 दिवसीय 31वीं वार्षिक समूह रवि दलहन वार्षिक बैठक समारोह का शुभारंभ किया गया। समारोह का उद्घाटन सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग डेयर तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर ML चाट ने किया। कार्यक्रम के दौरान महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर ML जाट ने कहा कि दलहन अनुसंधान में वर्तमान चुनौतियों की प्राथमिकता निर्धारित कर लक्ष्य निर्धारित कार्य योजना बनाना आवश्यक है। उन्होंने किसानों के लिए उत्पादन के साथ लाभ को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि
4: टेक्नोलॉजियों को किसानों की तरह पहुंचाने का काम हो जाएगा। उसके साथ अगले 1 साल में और कौन कौन सी रिसर्च हमें करनी है और जो खास मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा होगी। किसी के क्रॉप में बीमारियों के बारे में हो या कीड़ों के बारे में हो या फिर फसल उत्पाद के टेक्नोलॉजी के बारे में हो, इन सभी मुद्दों पर 2 दिन में रिसर्च के आगे का भी प्लानिंग होगा।
2: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले यूपी टेक्स 2026 कार्यक्रम को लेकर जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में कानपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के टेक्सटाइल गारमेंट और वस्त्र उद्योगों से जुड़े उद्यमियों की भागीदारी के साथ ही टेक्सटाइल उद्योग में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर को रेडीमेड होजरी एवं गारमेंट उद्योग के बड़े स्तर पर विकसित करने और बड़ा हब बनाने पर जोर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि
5: तमाम तरह से वस्त्र इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा विभाग बहुत तरह से छूट दे रहा है। कानपुर बड़ा पुराना शहर है और कपड़ा उद्योग का पूरे देश का सबसे प्रमुख शहर। हम लोग अभी पीएम मित्रा पार्क लखनऊ और हरदोई में 1000 एकड़ में बना रहे हैं। 10 संत कबीर टेक्सटाइल पार्क भी हम उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, जिसमें कानपुर में भी हम लोग एक टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से वस्त्र क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य को प्रमुख तौर पर पूरे देश के लोगों को आकर्षित करने का काम हमारा विभाग कर रहा है।
2: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जनपद स्त्री जनगणना समन्वय समिति की बैठक के दौरान ईबी स्लिप फील्ड ट्रेनरों एवं सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण प्रचार प्रसार और स्वगणना सहित द्वितीय चरण की सभी तैयारियां समय से पूरी करने के साथ ही फील्ड ट्रेनर चार्ज ऑफिसर सहित जनगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि 16 से 30 नवंबर तक नागरिक स्वगणना कर सकेंगे जबकि 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक प्रगणक घर घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति के संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। नागरिकों से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही प्रगणक कोई दस्तावेज मांग सकेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े विकास योजनाओं के निर्माण संसाधनों से बेहतर नियोजन और भविष्य की नीतियों का लक्ष्य तय करने में महत्वपूर्ण आधार होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की सही जानकारी दर्ज होना आवश्यक है। द्वितीय चरण यानी जनसंख्या गणना में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसांख्यिकी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक प्रवास सहित अन्य निर्धारित जानकारियां एकत्र की जाएंगी। जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी। स्वगणना की सुविधा के माध्यम से लोग निर्धारित अवधि में स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर घर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जनसंख्या गणना का कार्य पूर्ण करेंगे। उन्होंने लोगों से स्वगणना की सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग कर जनगणना में सक्रिय सहभागिता

0: पता करने की अपील किया।
1: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
2: जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आशीर्वाद का दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 5100 दीपों के प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र यादव, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बलिया एवं कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के नाथ द्वार मंदिर परिसर एवं प्रशासनिक भवन को 5100 दीपों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर HPV टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय एवं जिला स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में बलिया जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में 14 से 15 आयु वर्ग की 52 किशोरियों का टीकाकरण कराया गया। इस अभियान की विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर स्मिता सहायक आचार्य समाज शास्त्र विभाग ने बताया कि
3: HPV टीकाकरण यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु टीकाकरण। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है, जिसे गर्भाशय का कैंसर कहा जाता है। इस कैंसर के होने का प्रमुख कारण HPV का संक्रमण है, इसलिए नियमित स्क्रीनिंग तथा HPV टीकाकरण इस कैंसर से बचाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रयास किशोरियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: बलिया के जिला युवा कल्याण अधिकारी रवि कुमार मिश्रा ने बताया है कि विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के इस महत्वपूर्ण स्वरूप के माध्यम से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को अपनी प्रतिभा, विचार, नेतृत्व क्षमता और नवाचार को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। जनपद बलिया में भी 1900 से अधिक युवाओं ने क्विज में भाग लिया है। युवाओं में कार्यक्रम को लेकर उत्साह और सहभागिता लगातार बढ़ रही है। पात्र युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मेरा युवा भारत, माई भारत, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, विभिन्न विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विकसित भारत चैलेंज ट्रैक के अंतर्गत प्रतिभागियों के चयन की प्रक्रिया 5 चरणों में हो रही है। प्रथम चरण में ऑनलाइन क्विज, दूसरे चरण में चयनित प्रतिभागियों के लिए 500 शब्दों का निबंध, तीसरे चरण में जिला स्तरीय चैंपियनशिप, चौथे चरण में राज्य स्तरीय संवाद और अंतिम चरण में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता होगी। चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी मिल सकता है। बलिया में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति सेशन डिवीजन बलिया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके शुभारम्भ किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल सिविल, आपराधिक, राजस्व, बैंक विवाद इत्यादि के कुल 68,556 वाद निस्तारित किए गए। इसमें कुल समझौता धनराशि 27,04,41,642 रुपए तथा मौके पर ही कुल धनराशि 20,97,27,574 रुपए मात्र की वसूली की गई। महर्षि भृगु की पावन तपोभूमि बलिया में शहर स्थित ऐतिहासिक भृगु मंदिर परिसर में संत महात्माओं के सानिध्य में परिवहन मंत्री एवं बलिया सदर विधायक दयाशंकर सिंह ने विधि विधान से भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। भूमि पूजन के बाद आयोजित भव्य भृगु महाआरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वैदिक मंत्रोच्चार, दीपों की रोशनी और महर्षि भृगु के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। भूमि पूजन के दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि भृगु कॉरिडोर का वर्षों पुराना सपना अब कागजों से निकलकर धरातल पर उतर चुका है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कृषि संकाय के BSc कृषि के विद्यार्थियों के लिए ICAR राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव ब्यूरो कुशमौर मऊ में शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। डॉक्टर लाल विजय सिंह ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कृषि में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, जैव उर्वरकों, जैव नियंत्रण एजेंटों, सूक्ष्म जीव संरक्षण तथा फसल उत्पादन एवं मृदा स्वास्थ्य में उनके वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक महत्व से परिचित कराना था।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्र

0: क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: हवा में आज कोई खास पैगाम आया है, जुबां पे अदब का एक हसीन नाम आया है। जी हाँ सामिन, सुबह की इन महकती हवाओं के साए में इसी पाक पैगाम की एक सुरीली गूंज, इन लफ्जों की ताजगी और एहसासात की मखमली परवाज को समेटे आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज से आज के इस रूहानी, इल्मी और मोतबर नशिस्त में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रफीक सफर निकहत सिद्दीकी। रेडियो की इन खूबसूरत तरंगों की राब्ते से जुड़ी हुई इस सुहानी सुबह में तमाम जहीन बजौक और सुखन फहम सामेन का दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। मेरा पुरखलूस आदाब कबूल फरमाएं। सामेन, आज के इस खास सफर में हम जहन और रूह को छूती हुई तीन अजीम मंजिलों से गुजरेंगे। हमारा पहला पड़ाव तारीख के उस दरख्शां और बेमिसाल दिन की जियारत करेगा जिसने इस मुकद्दस सरजमीन को एक ऐसा मुजाहिद अता किया जिसकी रगों में बहता लहू और जिसके लफ्ज आजादी के सुर्ख इबारत बन गए। इस पावन और इनकलाबी याद के फौरन बाद हम एक ऐसा पुरसर और इल्मी मकाला पेश करेंगे जो आजादी के बाद उर्दू अदब के चमन में हमारी खवातीन के सुनहरे और पुरवकार सफर की दास्ता बयां करेगा और आखिर में इस सिलसिले को मुकम्मल हुस्न देने के लिए सुरों और लफ्जों की चाशनी में डूबी एक मखमली गजल आपकी समातों की नज़र की जाएगी जो आपकी इस सुबह को पूरी तरह मुअत्तर कर देगी। यानी आज की इस नशिस्त में तारीख की अजमत भी है, मकाले का शऊर भी और गजल की शबनमी चाशनी भी। तो बज़्मे अदब के इस दिलकश सफर का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम उस अजीम हस्ती के नाम का परचम बुलंद करते हैं जिनकी पैदाइश ने इस मुल्क की तकदीर और इनकलाब की तारीख को एक नया और लाफानी मोड़ दिया। जी हाँ, आज 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की यौमे विलादत है। एक ऐसा जाबाज सरफरोश जिसने महज 23 बरस की उम्र में वतन की आबरू की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। भगत सिंह सिर्फ एक अजीम इनकलाबी ही नहीं थे बल्कि वो बेबाक अफकार के मालिक भी थे। उनकी जेल की डायरी इस बात की गवाह है कि वो उर्दू अदब, शायरी और नफासत के किस कदर शैदाई थे। वो एक ऐसे इनकलाबी थे कि असेंबली की खामोशी को चीरता हुआ वो धमाका हो या फिजाओं में मुसलसल गूंजता इनकलाब जिंदाबाद का सहरंगेज नारा। उन्होंने इस मिट्टी के बच्चे बच्चे की लहू में आजादी की वो तड़प भर दी जो आज भी बुझ नहीं सकती। आज उनकी सालगिरह के इस मुकद्दस मौके पर हम उनकी अजीम शहादत को खिराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी बेमिसाल वतन परस्ती को सलाम करते हुए अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। इसी इनकलाबी सोच और आजाद हवाओं के साए में वक्त हो चला है आज के इल्मी पड़ाव का। सामिन, आजादी के बाद जहां हमारे मुल्क ने करवट ली वहीं हमारे अदब और सोच के जाविये भी बदले। खासतौर पर हमारी खवातीन ने अपने कलम की अजमत से शायरी के फलक को एक नया आसमान और एक नई परवाज दी। तो आइए समात फरमाते हैं आज का ये नशरे मुकर्रर मकाला जिसका उन्वान है आजादी के बाद उर्दू नज्म और खवातीन। मकाला निगार हैं प्रोफेसर जैबुन निसा। समात फरमाएं।
2: आजादी से कुछ पहले और आजादी के बाद मुल्क की तकसीम ने जो अबतर सूरत हालात पैदा कर दी थी उसके असरात इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाहाय हयात पर बड़े गहरे पड़े। ज़ुबान उर्दू के शेर व अदब पर भी इसकी झलक साफ दिखाई पड़ती है। अपने अपने नज़रियात और अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक लफ्ज़ों का खेल शुरू हुआ और आवाज़ें बुलंद से बुलंद तर होती गईं। उर्दू नज़्म पर भी इसके वाज़ेह नुकूश सब्त हुए। दो मुमलिकतों के क़याम, उनके तहजीबी सकाफ़ती पस मंज़र या उसकी नौतबियती का सिलसिला भी शमूलियत इख्तियार कर गया। 50 की दहाई के शोरा की नज़में देखें तो उनमें इन रुझानात की नुमाइंदगी नज़र आती है जो हमारे अहद में एक कलीदी हैसियत रखती हैं। इसी दौर में वो दुशवार गुजार मंजिलें भी हैं जो जुनूब शिमाल की बहस में आती हैं। तीसरी दुनिया के मसाइल का अंबार न्यू के

अयता की। इस इजहार में मुमकिन है उसकी लय कहीं पस्त हो, कहीं बुलंद, कहीं खफीफ हो, कहीं मुहीत, लेकिन आवाज़ें वो ताकत हैं, लहजे में वो असर आफरीनी और इजहार में वो क़ुव्वत है जो लम्हे फ़िक्रिया पैदा करती है। ज़ायदा ज़ैदी की तरह साजदा ज़ैदी, नूरजहाँ सरवत, जमीला निशात ने भी उर्दू की नज़मिया शायरी को अपनी निस्वानी आवाज़ों से बुलंद किया। ख्वातीन नज़्म निगारों ने ज़िंदगी के तमाम शोबे में अपनी शमूलियत ज़रूरी करार देते हुए उन तमाम मौजूआत से अपना रिश्ता कायम रखा जो उनकी ज़िंदगी के लिए अज़बत ज़रूरी थे। उनके यहाँ अपने अहद में परवान चढ़ने वाले रुझानात, तहरीकात और हयात कायनात के मसाइल और मौजूआत उनके तजर्बात और मशाहदात की रोशनी में नज़र आते हैं। उन्होंने असालिब फ़िक्र फ़न से आगाही हासिल की और इस पर अपने फ़न की असास रखी। ख्वातीन नज़्म निगारों की नज़में पढ़कर एहसास होता है कि उनके यहाँ न सिर्फ इजहार की सतह पर बल्कि जज्बात एहसासात की और मौजूआत के हवाले से भी एक नई दुनिया का पुख्ता और ठोस इदराक शऊर है। शहनाज नबी की नज़्म मीनू पास भी इसकी एक बहुत अहम मिसाल है। शबनम शाही।

0: अभी आप लता मंगेशकर की आवाज में मेराज फैजाबादी की इस गजल से लुत्फंदोज हो रहे थे। तो सामिन, आज की ये खास नशिस्त जहां शहीद आजम भगत सिंह की अजीम और पाकीजा यादों के चराग जलाकर शुरू हुई थी, वहीं आजादी के बाद उर्दू नज्म और हमारी खवातीन के तारीखी और बेमिसाल किरदार के मोड़ों से गुजरती हुई इस हसीन गजल के साए में आकर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस उर्दू प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया गया। पेशकश थी प्रदीप कुमार मिश्र की। और अब विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज का ये अदबी और इनकलाबी सफर आपकी समातों को बेहद अजीज रहा होगा। बहुत जल्द इसी वक्त इसी फ्रीक्वेंसी पर एक नई बज्म और कुछ नए लफ्जों की महक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को इजाजत दें। आदाब।
1: उर्दू प्रोग्राम खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं मंजू मोहन और इंदु सारस्वत के गाए।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
6: रेलवे ट्रैक और

0: नेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए अमृता मालवीय के स्वर में ये भजन।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री ने भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का अतुलनीय योगदान युगों तक स्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में 179 ट्रैकर्स पर्वतारोहियों और उनके सहयोगी कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में 13 अलग अलग ट्रैकिंग दलों में फंसे हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। आइए सुनते हैं ब्रेन फॉग विषय पर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ऋचा पाठक से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत। नमस्कार सुधी श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा पाठक और अभय कांत तिवारी जी, और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल फॉग पर। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हमें कुछ चीजें जो जीवन की कुंजी हैं उसे जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अच्छा खाना खाना,
3: हंसना, गाना।

0: अपनों से बातें करना और हाँ, मोबाइल से थोड़ी सी दूरी ज़रूर बनाना ज़रूरी है। तो चलिए, हमने आपसे वादा किया था कि प्रॉब्लम्स जब लेयर्स में हो तो हम कैसे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढें लेयर बाय लेयर। तो चलिए पूछते हैं, तो स्वागत फिर से करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर ऋचा, आपने पिछले एपिसोड में हमारे सुधीर श्रोताओं से वादा किया था कि हम बताएंगे कि जब मुश्किल बड़ी है तो सॉल्यूशन तो हर आदमी गिव अप करने के लिए पहले तैयार रहता है। दुनिया में कुछ बिरले ऐसे हैं जो गिव अप का शब्द ही नहीं जानते, तो कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या बताएंगे?
1: देखिए, इसमें थोड़ा मोटिवेशन तो कम हो जाता है, कई बार कॉन्फिडेंस भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जब आदमी को ये लगता है कि हमारी कैपेसिटीज कम हो रही हैं, अब हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मेरी क्षमता कम हो गई, कुछ लोग उनको बताते हैं कि भाई आपकी एज बढ़ गई है, लेकिन सच ये है कि इतनी आसानी से इंटेलिजेंस खत्म नहीं हो जाती है, कम नहीं हो जाती है। जैसे जो फिजिकली स्ट्रांग है वो ऐसा नहीं कि वो 30 साल का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा तो एकदम से वीक हो जाएगा, धीरे धीरे एक एज का असर पड़ता है, लेकिन वो बड़ा स्लो प्रोसेस है। एजिंग प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है जो इजीली समझा जा सकता है, वो प्रॉब्लमेटिक होता भी नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो होता है और उसी के साथ आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी होती जाती हैं, आपकी लाइफ उस हिसाब से चेंज होती चली जाती है। लेकिन जब आप किसी डिजीज का शिकार होते हैं तो उसके लिए किसी उम्र की बात नहीं है, मेंटल फॉग किसी एज के साथ नहीं होता है, वो बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, वृद्ध में भी हो सकता है। हाँ, उनका जो डायग्नोसिस का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि तब हम देखते हैं कि उस एज ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम संभावित हो सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसकी डायग्नोसिस में तो मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, तो एज ग्रुप के हिसाब से एक तरह से घेरा बन जाता है कि इस एज ग्रुप में ये संभावना है इन चीजों की। जैसे अगर मान लीजिए कोई महिला है वो 50 के आसपास की है, तो हम ये मानते हैं कि उसको मेनोपॉजल प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक ऑप्शन है, हम ये लेके चलते हैं। बच्चों में है तो उसके अदर रीजंस होंगे कहीं ना कहीं से, वृद्ध में है तो एजिंग प्रोसेस के साथ साथ हम और रीजंस को भी देखेंगे। जैसे बच्चों में लोनलीनेस की प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि बच्चे किसी न किसी के साथ अपनी दोस्ती बना लेते हैं, खेल लेते हैं, कर लेते हैं। ये लोनलीनेस की प्रॉब्लम ओल्ड एज के लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है।
0: आपके पास जब पेशेंट आता है ब्रेन फॉग वाला, तो उसने कहा कि भाई हमारा जो दिमाग है वो नॉर्मली या जो उसका कॉग्निटिव सिस्टम है काम नहीं कर रहा, तो इन सब सुझाव के साथ साथ अगर फिर भी बात नहीं बन रही है तो फिर ऐसी कौन सी राह है या तरीका है कि वो बैक ऑन ट्रैक आ सके?
2: इसमें एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहूंगा, जब कोई पेशेंट आया आपके पास तो एक तो आपने सिम्टम्स देखे, तो क्या कोई क्लिनिकल टेस्ट भी है?
1: बिल्कुल,
2: जिससे हम श्योर हो सके कि हाँ इनको ब्रेन फॉग की समस्या है या कोई और समस्या भी है?
1: नहीं, ब्रेन फॉग के लिए कोई टेस्ट नहीं है। ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है इसकी पॉसिबिलिटी जब हम उससे बात करते हैं तो उसके बारे में जानते समझते हैं, तो समझ में आता है कि क्या क्या इसके लिए कारण बन सकते हैं। अब उसमें दोनों चीज हो सकती है, मेंटल कॉज भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं। तो पैथोलॉजिकल कॉजेज के टेस्ट हैं जैसे विटामिन B12 की कमी, थायराइड, तो इनके टेस्ट हैं, इनसे हम टेस्ट करा के इनको जान सकते हैं। अगर आपके उसके साथ शिकायत की कि भाई मेरे सर में दर्द भी रहता है या मेरी आईज में भी या मत्थे में प्रॉब्लम और आंखों में दिक्कत हो रही, डॉक्टर देखेगा कि हो सकता है ट्यूमर हो रहा हो या कहीं सर के हिस्से में इन्फेक्शन है, तो इस तरह से वो उसके और भी जो कंप्लेंट्स होंगी उनके सिनेरियो में हम देखेंगे किस किस टेस्ट के थ्रू हम अपने वहां तक पहुंच सकते हैं, किस एज ग्रुप का व्यक्ति है, क्या चीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसकी अपनी लाइफस्टाइल कैसी है, इन सारी चीजों को देख करके फिर हम उसको समझते हैं कि क्या है। और कॉन्फिडेंस कमी ये एक तरह से ये तो बाई प्रोडक्ट है हमको लगता है, क्योंकि जब आप एक प्रॉब्लम में होते हैं तो धीरे धीरे एक लो मूड आपका होता चला जाता है और आपकी आपको लगता है यार कैपेसिटी कम हो गई, अब तो हम पहले जैसे, तो अपने आप कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जब हमें लगता है नहीं मेरी क्षमता बहुत अच्छी है तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। तो यहाँ फैमिली मेंबर्स का रोल होता है कि वो मोटिवेट करें, वो उनको ले जाएं। अगर वो चीज कभी कभार की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो ग्रेजुअली बढ़ रही है तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप 10-15 दिन अपने लाइफ को एकदम रूटीन पे ला करके देखें कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चीजें बेटर हो रही है, देन ऑल राइट, आप उसको कंटिन्यू करें।
0: बिल्कुल अभय जी, देखिए डॉक्टर ऋचा ने एक बड़ी अच्छी बात कही, अगर आपको कोई दिक्कत थोड़ी ज्यादा लग रही है, अगर दिक्कत थोड़ी कम है तो क्यों ना कुछ ऐसे लोगों के पास बैठे जिससे थोड़ा कॉम्पिटिशन का भाव भी जागृत होता है।
1: बिल्कुल,
0: और एक तरह का स्टिमुलस है, और आपको अपने दिमाग को स्टिमुलस या एक बहुत अच्छा स्पार्क देने की जरूरत होती है, क्योंकि वो रिएक्ट कर नहीं रहा है, वो बिल्कुल चुप हो गया है, जो हमारा ब्रेन है वो बिल्कुल शांत है, और ब्रेन की प्रकृति है चलने की। कई बार मैंने देखा है कि अगर

0: ऋषियों का सानिध्य मिलता है, तो लोग उनकी पवित्रता या मैं कहूँ उनका कौतूहल है या उनका जो ऑरा है बच्चों का बहुत पवित्र होता है,
1: बहुत पवित्र।
0: और लोग जो मन में गांठ बैठी हुई है या जो उनका दिमाग चुप हो गया है, जब एक सुंदर सा स्नेह टच करता है तो शायद वो खुलना शुरू होता है और उनका जो दिमाग है वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है और फिर वो मुस्कुराने सा लगता है। तो अभय जी देखिए, बातें बहुत जरूरी हैं। जब वी मेट आपने फिल्म देखी होगी,
2: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना जब वी मेट अगर आपका भी मन कहे तो उसी फिल्म का गाना सुनवाया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: गीत से पहले दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जो हमारा दिमाग है अगर एक सर्टेन स्थिति में चला गया है तो डॉक्टर ऋचा कह रही हैं कि भाई उसको जगाना होता है। अगर गहरी निद्रा में है तो वक्त लगता है, तो थोड़ा धैर्य बनाना है। घर वालों का काम है कि अगर इंसान परेशान है तो तुरंत आप गिव अप मत करिए, क्योंकि आपका जो इंसान है, आपका जो परिवार का सदस्य है, वो वापस लौट आएगा। थोड़ी एफर्ट तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: हाँ, यहाँ एक चीज हम और जोड़ना चाहेंगे। इधर एक नई टेंडेंसी मैंने लोगों में देखी कि वो अपने मन से सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं।
0: जी,
1: विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी, कुछ भी कहीं से लेके खाना शुरू कर देते हैं। ये उचित नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर समझता है कि आपको कितनी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपके अंदर कोई कमी भी है, तो कमी आई क्यों है? क्या आपके खान पान की वजह से आई है, या आपके सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं इसलिए वो कमी आई है, या डाइजेशन में कोई दिक्कत है इसलिए कमी आई है? तो वो डॉक्टर की सलाह पे ही लें, खुद डॉक्टर ना बने, इस बात का ध्यान रखें।
2: डॉक्टर ऋचा पाठक, एक और प्रश्न पूछना चाह रहा था कि योग, ध्यान और प्राणायाम, इसका कितना प्रभाव होता है इसके उपचार में, इस कंडीशन से बाहर निकलने में?
1: देखिए, अगर मानसिक प्रॉब्लम है, मतलब उसके रीजन साइकोलॉजिकल हैं, तो आई थिंक कि ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल भी दिक्कत है कोई, उसकी वजह से भी है, तो भी हम ये तो नहीं कहेंगे कि मिरेकल करेगा, कोई मिरेकल क्योर जैसा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट तो होगा ही होगा, कोई इफ बट नहीं। क्योंकि यहाँ जो सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू होती है वो अटेंशन से शुरू होती है, और ध्यान करने से अटेंशन आपका बेटर हो जाएगा, जाहिर है मेमोरी बेटर होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन सारी सेल्स को पहुंचेगी, तो वो ऑर्गन्स अपने आप अच्छे से वर्क करना शुरू कर देंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इसमें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है कि 100% उसमें इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन अगर इन केस मान लीजिए अब कोई किडनी की प्रॉब्लम किसी को है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, या किसी के ब्रेन में ही कोई ट्यूमर हो गया है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप प्राणायाम करेंगे तो आपका ट्यूमर ठीक हो जाएगा। तो वहाँ मेडिकेशन तो ज़रूरी होगा, लेकिन अगर आपके इस तरह के कोई सीवियर डिजीज़ नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा आपको मिलेगा।
2: डॉक्टर ऋचा पाठक, ये भी मैं आपसे जानना चाहता रहा था कि अगर हम फिजियोलॉजिकल जो रीजंस है उसको एक तरफ रखें,
1: जी,
2: तो अगर सिर्फ ब्रेन फॉग की बात करें, तो ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है, इसको हमें कितना गंभीरता से लेना है? क्योंकि ये क्या मानसिक थकान है, अगर हम रूटीन चेंज कर दिए, योगा कर लिए, कोई ध्यान लगा लिए, उससे ठीक हो जाएगा?
1: अगर फिजियोलॉजिकल कॉज नहीं है तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। वो पैदा ही इसलिए हुआ है।

0: मानसिक रूप से, क्योंकि कोई ना कोई आपने कोई तरीका गलत चुना है। आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, आप रेस्ट सही ढंग से नहीं ले रहे हैं, या स्विचिंग बहुत हो रही है कि आपके काम में कि इधर किया है, उधर भी किया, उधर भी किया, उधर भी किया। इसको जैसे स्विच कॉस्ट कहते हैं हमारे यहाँ। यूं समझिए कि जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी चल रही है, उसमें क्लच गियर आप जितनी लगाएंगे वो उतना ज़्यादा उसकी एवरेज खराब हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम लोग के दिमाग में कोई परेशानी चल रही है, मान लीजिए अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह की कोई घटना आपके दिमाग में चल रही है, तो आप लगे तो इसमें हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो उसी तरह समझिए कि जैसे कंप्यूटर का रैम है, अब अगर 10 प्रोग्राम पीछे चल रहे हैं तो वही रिसोर्स तो इनटेक कर रहे हैं, तो रैम कम नहीं हुआ है, उसका इनटेक कई लोग कर रहे हैं, इसलिए वो गड़बड़ लग रहा
1: दिमाग
0: है,
1: से
0: मैं
1: कुछ
0: कम
1: ज्यादा ही
0: लग रहा
1: काम ले
0: है।
1: रहे
0: हाँ,
1: हैं।
0: अगर हम उसको ठीक कर लेंगे तो वो चीजें वैसी ही हैं, वो खत्म नहीं हुई, वो एज इट इज हैं,
1: वो
0: उसमें
1: रिवर्सिबल
0: वो
1: है,
0: रिवर्सिबल है,
1: फॉग का
0: साइकोलॉजिकल
1: मतलब
0: रीजन है तो वो रिवर्सिबल है। आई डोंट थिंक कि मतलब पैथोलॉजिकल रीजन रिवर्सिबल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके ट्रीटमेंट के तरीका उनका अलग होता है, हम लोगों का तरीका अलग होता है। हम आदमी को मोटिवेट करते हैं, पहले उसके अंदर थोड़ी सी लालसा जगाते हैं चीजों को लेकर के, उसको प्रेरणा देते हैं, उसके बाद में उसको अटेंशन पे वर्क करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो आई थिंक कि 2 से 3 महीने में बहुत इजीली वो।
1: एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगा कि क्या किसी कंडीशन में कोई मेडिसिन भी दी जाती है? इसमें
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ
0: इन
1: काउंसलिंग
0: केस
1: और
0: अक्सर B12 की कमी इसके लिए पाई जाती है, तो B12 की कमी के लिए उसको दे देते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसी मेडिसिन कुछ लोग दे देते हैं कि जो आपके अंदर एक तरह से थोड़ा सा शक्ति क्रिएट कर दे, मतलब आपको थोड़ा सा ये लगे कि हमारे अंदर एनर्जी आ गई है, तो जब आपका सिस्टम में एनर्जी आती है तो आप अपने आप ऑटोमेटिक उसमें
1: मोटिवेटेड फील करते हैं।
0: मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये चीजें डॉक्टर्स को ही करनी चाहिए।
2: ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आप मेडिकेशन जो डॉक्टर साहब ने कहा है, जो रूटीन कम से कम कुछ संभव नहीं हो पा रहा है, तो जो आपके घर वाले, जो आपके नियर डियर वंस हैं, जो बात कह रहे हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि ये करने से ही बात बनेगी। अभी जी आपने संजू फिल्म देखी होगी, उसमें एक
1: हाँ
2: गाना
1: जी,
2: है कर मैदान फतेह, तो मुझे लगता है कि इस मौके के लिए वो बहुत सुंदर गीत है,
0: बहुत सुंदर,
2: मोटिवेशन है उसमें, और दिक्कतें हैं तो दिक्कतों से बाहर निकलने के
0: बिल्कुल
2: रास्ते भी मौजूद हैं,
0: बिल्कुल
2: तो वो
0: बिल्कुल
2: गाना सुनते हुए चलते हैं।
3: पिघला

0: डॉक्टर ऋचा पाठक, आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, तो एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट के रूप में जब कोई ब्रेन फॉग का पेशेंट या किसी भी मानसिक समस्या का पेशेंट जब आपके पास आता है, तो उसमें उपचार की प्रक्रिया क्या होती है? आखिर हिप्नोथेरेपी काम कैसे करती है, हमारे श्रोतागण जानना चाहते हैं।
1: देखिए, हिप्नोथेरेपी में व्यक्ति को एक अर्ध निद्रा की अवस्था में, इसको हम कहते हैं अल्फा स्टेज में, हम लेके चले जाते हैं, जिसमें वो पूरी तरह सोया नहीं होता है, पर सोने से पहले की स्थिति होती है जो हमारे कमांड्स को सुन सकता है। तो हम उसको उस अवस्था में ले जाते हैं और वो जरूरी इंस्ट्रक्शन हमें लगते हैं कि यहाँ पे हमें इतना ये इंस्ट्रक्शन इसको देने हैं। वहाँ ये भी देखते हैं कि इसको कितने इंस्ट्रक्शन देने हैं और वो कितनी बार में देने हैं, मतलब कितना कितना डोज हमें कितनी बार में देना है, ये भी देखते हैं। तो उसकी सेटिंग हम डिसाइड करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसको उसमें कोशिश करते हैं। और ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फ्रायड ने बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया था और हिस्टीरिया के पेशेंट पे उन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। अभी धीरे बीच में ये एक तरह से विलुप्त प्राय थी, लेकिन इधर कुछ वर्षों में उसमें फिर से काफी प्रोग्रेस हुई है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब मिरेकुलस वर्क हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि ये नई विधा है कोई, इसका हमारे ग्रंथों में, योग के ग्रंथों में बहुत पुराने समय में प्रयोग किया गया है, कोई ऐसी चीज नहीं है। शब्द बदल दिए गए हैं खाली, बाकी सारी वही चीजें हैं। और मनुष्य के अंदर बड़ी क्षमताएं हैं, तो उसमें हिप्नोटिज्म भी उसकी एक क्षमता है, वो हिप्नोटाइज होता भी और हिप्नोटाइज करना भी जानता है। तो मन की एक ऐसी अवस्था में आपको पहुंचा दिया जाता है जहां आप बहुत एक्टिव नहीं रह जाते, तो आप उस कमांड को फॉलो करते हैं और आपका सब कॉन्शियस ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उस हिसाब से कमांड दे करके आपको क्योर करता है।
0: अर्थात उस अवस्था में जो आप कमांड दे रही हैं, दिमाग सुन रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है।
1: दिमाग सुन रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो उसका फर्स्ट टाइम हम ये देखते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्यों है, क्या है, तो हम पहले उसकी जो वजह होती है उसको वॉश आउट करते हैं, और उसको वॉश आउट करने के बाद फिर वहाँ पे पॉजिटिविटी को डालते हैं कोई, क्योंकि अगर आप कोई जगह वैक्यूम छोड़ देंगे तो वहाँ फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे उस पर पॉजिटिव चीजें डाली जाती है, यानी जो कुछ निगेटिव है उसको वॉश करके वहाँ पे पॉजिटिव चीज डाली जाती है ताकि वो चीज प्रॉपर वे में वर्क कर सके।
2: बिल्कुल सुधीश राव, देखिए जितना सुन रहे हैं

0: उतनी सारी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन कुछ चीज जो बिल्कुल गांठ बांधने वाली है कि अपने आप को एकदम रिलैक्स रखिए और अपनी चीजों को जानिए और अपने आप को बिल्कुल छोड़िए मत, क्योंकि जब आप छोड़ेंगे तो कुछ और, जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो कुछ भी आ सकता है मन मस्तिष्क में। तो ये ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं, वो चाहे मानसिक रूप से कोई कंटेंट है या फिर आपकी थाली में भोजन ही क्यों ना हो। तो डॉक्टर ऋचा पाठक, आज आपसे ब्रेन फॉग के बारे में जाना और ये भी जाना कि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक कंडीशन है और कंडीशन बदलती भी है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारे लोगों ने बदला है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने इसके बारे में खुलकर बात की और वो बैक ऑन ट्रैक हुए हैं। तो बस कुछ टिप्स हैं, उसको जरूर ध्यान रखिए। और अभय जी, ये सफर बहुत खूबसूरत रहा है डॉक्टर ऋचा पाठक के साथ। तो यूं ही हम वॉइस ऑफ प्रयाग में नई नई मुद्दों पर बात करते रहेंगे, सॉल्यूशंस लाते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही और हम सुधी श्रोताओं से कहते हैं नमस्कार और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया आपका।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है लोकगीत। आज के कलाकार हैं प्रद्युम्न कुमार, संगीता मिश्रा और सुभाष चंद्र यादव और साथी। पहले आपको सुनवाएंगे प्रद्युम्न कुमार और साथी के स्वर में ये दादरा, तो आइए सुनते हैं।

अभी आप प्रद्युम्न कुमार और साथियों के स्वर में ये कहरवा सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए संगीता मिश्रा के स्वर में कहरवा।

अभी आप संगीता मिश्रा के स्वर में ये पूर्वी सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए सुभाष चंद्र यादव और साथियों के गाए देवी गीत।

अभी आप सुभाष चंद्र यादव और साथियों के स्वर में दादरा सुन रहे थे। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कुछ आवाज़ें केवल कानों तक नहीं पहुंचती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। कुछ कलाकार केवल अपने समय के नहीं होते, वे आने वाली पीढ़ियों की यादों का हिस्सा बन जाते हैं। लता मंगेशकर ऐसी ही एक आवाज़ थी। उन्हें सुनना केवल संगीत सुनना नहीं था, बल्कि भावनाओं को महसूस करना था।

लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर यानी आज ही के दिन 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। बहुत छोटी सी उम्र में ही लता जी ने संगीत को अपना जीवन बना लिया। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। संघर्ष का वह दौर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के सामने झुकने की बजाय अपनी आवाज़ को अपनी ताकत बनाया।

1940 और 50 के दशक में जब उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में अपनी पहचान बनानी शुरू की, तब उनकी पतली मधुर और भावपूर्ण आवाज़ ने गायन की दुनिया का स्वर ही बदल दिया। उनकी आवाज़ में प्रेम था, विरह था, भक्ति थी, देशभक्ति थी और सबसे बढ़कर इंसानी भावनाओं की सच्चाई थी। यही कारण है कि उनकी आवाज़ कई पीढ़ियों तक लोगों के जीवन का हिस्सा बनी रही।

लता जी का महत्व केवल इस बात से नहीं है कि उन्होंने हजारों गीत गाए, उनका असली महत्व ये है कि उन्होंने पार्श्व गायन को एक ऐसी ऊंचाई दी।

नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा पुरस्कार वह प्रेम था जो करोड़ों लोगों ने उन्हें दिया। लता जी ने हमें सिखाया कि प्रतिभा एक जन्म से नहीं मिलती, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन, समर्पण से निखरती है। उन्होंने अपने जीवन में साबित किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इंसान अपने हुनर और सपनों पर विश्वास रखे तो वह इतिहास में अपनी जगह बना सकता है। लता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी जीवित है। शायद इसीलिए लता मंगेशकर केवल एक नाम नहीं, वे भारतीय संगीत की वह अमर धुन है जो समय के साथ कभी खत्म न होगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और साथियों के स्वर में देव फिल्म का ये गीत।

और आइए अब सुनते हैं नीति मोहन को फिल्म जब तक है जा में। संगीत ए आर रहमान का है और गीत रचना है गुलजार की।

और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनपढ़ में। संगीत मदन मोहन का है और गीत रचना है राजा मेहंदी अली खां की।

और आइए आप सुनते हैं श्रेया घोषाल को फिल्म एक्शन रिप्ले में। संगीत प्रीतम का है और गीत रचना है इरशाद कामिल की।

और आइए अब सुनते हैं नेहा कक्कड़ के स्वर में KGF फिल्म का गीत, संगीत तनिष्क बागची का है।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुँचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देश

0: देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों की जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईटी नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईटी नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today urged countrymen to make sure to set aside time for the census. Recalling the appeal from yesterday's Mann Ki Baat address, Mr. Modi said, participating in the census is a national duty for all citizens. He added that the participation helps in creating an accurate picture of the country's future. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has reached Doha in Qatar to participate in the 11th annual meeting of the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, and the AIIB Investors Dialogue 2026. The annual meeting will bring together member delegations, policymakers, and other stakeholders from around the world to discuss the AIIB's strategic direction, operational priorities, and future agenda. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh met with a bipartisan delegation from the United States House of Representatives, led by Representative Brian Mast, Chairman of the House Foreign Affairs Committee. Defence Ministry said the discussion centered around the evolving India-US Comprehensive Global Strategic Partnership, with special emphasis on defense, industrial, and technological cooperation. The United Forum of Bank Unions, UFBU, has announced that the proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, the All India Bank

बजे कहकशा कार्यक्रम होगा जो कि गजलों पर आधारित रहेगा। ये थे आज के दिन भर के शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आइए सुनते हैं खोई हुई व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं। राजकुमार आशापुर प्रतापगढ़ से सूचित करते हैं कि सरिता देवी 25 जुलाई 2026 शाम 4 बजे से लापता हैं। सरिता देवी की उम्र है 30 वर्ष, इकहरा बदन है, चेहरा लंबा है, रंग सांवला है और ऊंचाई लगभग 5 फीट है। इन्होंने साड़ी पहनी हुई है। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 9838516088 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें 9838516088। एक और सूचना सुनिए। नन्हेलाल बिंद प्रतापगढ़ पट्टी से सूचित करते हैं कि रिया बिंद, जिनकी उम्र है 13 वर्ष, ये 9 अगस्त शाम 6 बजे से लापता हैं। रिया की उम्र है 13 वर्ष, चेहरा लंबा है, रंग सांवला है, ऊंचाई 4.5 फीट है। इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है लाल रंग का। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 9435390972 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें 9435390972। एक और सूचना सुनिए। राकेश कुमार मणिकपुर प्रतापगढ़ से सूचित करते हैं कि दिव्या देवी, जिनकी उम्र है 21 वर्ष, ये 22 जुलाई 11:30 बजे से लापता हैं। दिव्या की उम्र है 21 वर्ष, रंग गोरा है, चेहरा गोल है और इनकी ऊंचाई है 4.5 फीट। इन्होंने फिरोजी कुर्ती और कत्थई कलर की जीन्स पहनी हुई है। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 9598732529 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें 9598732529। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं समाप्त हुईं। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित जसराज का ख्याल गायन राग भीम पलासी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का ख्याल गायन राग भीम पलासी। रचना झपताल पर निबद्ध थी बोल थे आयोरी कुंवर कान। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले ये सुविचार, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है और जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त समझा सकता है। और ये सुविचार था हमारे एक श्रोता का, लेकिन इन्होंने तो अपना नाम ही नहीं लिखा। तो भाई श्रोताओं, अगर आप इतने अच्छे सुविचार आप हमें भेजते हैं इस कार्यक्रम के लिए, तो अपना नाम भी लिख दिया करें। इन्होंने सिर्फ शहर का नाम लिखा है और अपनी पसंद के गाने को लिखा है। तो भाई अब इनकी पसंद के इस गाने को और उस शहर के नाम को हम बताते हुए कार्यक्रम का करते हैं आरंभ। और ये पहला गाना बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है और फिल्म का नाम है बत्ती गुल मीटर चालू। और राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत है, हम जरूर सुनवाएंगे। जिन श्रोता ने ये सुविचार लिखा है उन

ये शहर का नाम है जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो चलिए और श्रोताओं के नाम भी हम आपको बताते हैं जिन्होंने इस गीत को पसंद किया है, और उनके नाम हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। और इस गीत को पसंद करने वाले और भी हैं हमारे श्रोता। प्रयागराज से हैं मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, हनी कनौजिया, कोमल कनौजिया, बाला कनौजिया। कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनके परिवार के अन्य सदस्य। मध्य प्रदेश से धनराज बैरागी, सीमा बैरागी, किट्टू, खुशी, लक्ष्मी और श्री वैष्णव। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है और ये है गगनदीप थांदी और इन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ प्यार भरा नमस्कार किया है और ये भी लिखा है, आपका ये कार्यक्रम हमें बेहद पसंद है और बीच बीच में जो सुविचार कभी श्रोता बताते हैं और कभी आप, इनको बेहद पसंद आता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद थांदी साहब। और आपने जिस गीत की फरमाइश की है वो गीत है फिल्म भीगी पलके से, और ये थांदी साहब नवा शहर पंजाब के रहने वाले हैं और इनके परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। साथ ही इस गीत की फरमाइश हमें जिन श्रोताओं ने की है वो हैं कृष्णा पार दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो, महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो आइए सुनते हैं भीगी पलके फिल्म का ये गाना।

कहा गया है, साथ रहकर जो कोई छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वास खाती नहीं। तो चलते हैं अगले गीत की तरफ, और ये गीत है फिल्म चितचोर से, और इस गीत की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं की है उनके नाम है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, आगरा से राजू लवानिया, उज्जैन से लोकेंद्र वर्मा, शारदा प्रसाद प्रजापति, नीलम प्रजापति, सिद्धार्थ प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, नवीन और श्रीजी, मथुरा से, पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी, शालनी, टिवांशी, वाणी, आरपी

उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वास खाती नहीं। तो चलते हैं अगले गीत की तरफ, और ये गीत है फिल्म चितचोर से, और इस गीत की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं की है उनके नाम है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, आगरा से राजू लवानिया, उज्जैन से लोकेंद्र वर्मा, शारदा प्रसाद प्रजापति, नीलम प्रजापति, सिद्धार्थ प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, नवीन और श्रीजी, मथुरा से, पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी शालनी, तिवंशी वाणी, आरपी खेड़ा, जीवन सिंह और इनके परिवार के अन्य सदस्य, सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान योगेश और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो चलिए सुनते हैं चितचोर फिल्म का ये गाना।

इस समय आप सुन रहे हैं संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद, और ये कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को दिन में 12:30 पर प्रसारित किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और ये गीत है फिल्म मिस्टर नटवरलाल, और इसको सुनना चाहते हैं गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार, धनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान, हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी, हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा, पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, आरजू और गुड्डू।

0: ये संदेश आया है हमारे पास छत्तीसगढ़ से और लिखने वाले हैं देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार, टॉली बेबी पूजा तामूरिया, आरती और प्रभा देवी। और इन्होंने लिखा है, मधु जी आपको हृदय की गहराइयों से हम सब प्रेम नमस्कार करते हैं। तो भाई आपका ये प्रेम भरा नमस्कार, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो गीत है फिल्म गुलामी का, लेकिन इस गीत को हमारे और श्रोताओं ने भी पसंद किया है। उनके नाम हैं मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और इनके परिवार के अन्य सदस्य, महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, अनामिका, गजानन येले, नवदीप और विश्वदीप। ये हमारे नए श्रोता हैं जो महाराष्ट्र से हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इस गीत की फरमाइश हमें आई है समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू, असुनीता, आरजू, हसमुखलाल, बुलबुल, शक्ति, संजीव बंटी और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
1: जी हाँ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्स और FM 100.3 मेगाहर्स पर। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है, खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी, इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए

कर्मचारी, राज्य बीमा निगम, स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़ककर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: NCR region, observing that such cases underline a systematic failure on the part of law enforcement authorities. A bench comprising Justice J.B. Pardiwala and Justice K. Vinod Chandran observed that public spaces, including parks and buses, cannot be allowed to turn into high-risk zones because of inadequate lighting, poor surveillance, and the lack of other essential administrative facilities. Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia has said over 100 crore people in the country receive social security coverage. This includes health security coverage of 5 lakh rupees for over 60 crore citizens, ESIC health security for 25 crore people, free grains to over 80 crore people, and financial assistance to farmers and women. The minister was addressing the National Conference on Industrial Relations and Labour Awards in New Delhi today. The BJP today hit out at opposition parties for attempting to malign and weaken the nation's autonomous and constitutional institutions. Speaking to media in New Delhi, senior BJP leader and Union Minister Jagat Prakash Nadda alleged that the opposition was vitiating the atmosphere even after the Election Commission rejected the claims made by them. Prime Minister Narendra Modi paid tributes to freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said Bhagat Singh's spirit of sacrificing everything for the nation's honour stands as a timeless symbol of the courage and resolve of India's youth. In Uttarakhand, the Char Dham Yatra has resumed after improvement in weather conditions today. Garhwal Commissioner Anand Swarup said necessary directions have been issued to the concerned district magistrates. The Char Dham Yatra had been suspended from the afternoon of the day before yesterday until yesterday in view of the weather forecast and the safety of pilgrims. At the 2026 Asian Games in Japan, India's Isha Singh won the silver medal today in the women's 25-meter pistol individual competition. The 21-year-old shooter won the medal with 38 points to finish second. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex plunged 945 points to 72,952, while the Nifty tanked 299 points to 22,842 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज बाज़ाब्ता तौर पर पंचायती राज महकमे के जरिए 1375 नए मुंतखब ग्राम पंचायत अफसरान को तकरारी नामे दिए। तकरीब में पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि 2017 में हुकूमत के क़याम के बाद से रियासत को माफिया राज से निजात दिलाने और नौजवानों को उनकी शिनाख्त दिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। आज हुकूमत की कोशिशों की बदौलत उत्तर प्रदेश पुल की मईशत में तरक्की का इंजन बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में जो तब्दीलियां आई हैं उसके नतीजे में रियासत ने अपनी मईशत फीकस आमदनी और बजट में 3 गुना इजाफा किया है।
2: आज यूपी के इन 1375 परिवारों के जीवन में एक नई रोशनी लाने का काम किया है। हमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, जो आज से 10 वर्ष पहले बीमारू राज्य हुआ करता था, उस राज्य को हमें देश के अंदर सबसे समृद्ध राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में मदद की है।
1: प्रोग्राम में देही तरक्की पर एक खसूसी मुख्तसर फिल्म भी दिखाई गई। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में माली साल 2026-27 के बजट के इंतजामात, माली मंजूरियों और हकीकी अखराजात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि मालियाती मंजूरी बजट के दफात के मुताबिक जारी किए जाएं और अखराजात की रफ्तार तेज की जाए। वज़ीर-ए-आला ने यह भी हिदायत दी कि 70% मालियाती मंजूरी अगले 2 माह में जारी की जाए और कुल मुख्तस बजट कम अज कम 60% खर्च किया जाए। रियासत की देही मईशत को मजबूत बनाने के लिए वज़ीर-ए-आला ने बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट तनासुब को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर अहल किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा हासिल करना चाहिए। मीटिंग के दौरान जनाब योगी ने यह भी हिदायत दी कि देही इलाकों में कर्ज की दस्तियाबी को बढ़ाने और बैंकिंग निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए देही क्रेडिट कॉन्क्लेव जैसे प्रोग्रामों की मंसूबाबंदी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल

0: की इस भाग दौड़ में थोड़ा सा आराम भेजते हैं, आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान का पैगाम भेजते हैं। इस हसीन दोपहर में जो थामे हैं हमारा साथ, उन सभी अजीज श्रोताओं को हम दिल से सलाम
1: भेजते हैं। जी हाँ, महफिल की रौनक आपसे है, इस साज की धड़कन आपसे है, जो गूंज रही है फिजाओं में वो खूबसूरत आवाज आपसे है। रेडियो के इस पार से सलाम भेजा है आपको, रेडियो के इस पार से सलाम भेजा है आपको, हमारी हर कामयाबी का आगाज आपसे है। तो आगे बढ़ने से पहले शुक्रिया उन सभी धड़कनों का जो इस वक्त हमें सुन रही हैं।
0: तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी प्यारी सखियों का, सभी
1: सुधी श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।

0: जहाँ मैं अनामिका
1: और मैं शेल। आज इस सफर में आपके साथी आप सभी सखियों से, सभी अजीज श्रोताओं से हम ये जरूर कहेंगे कि आप हैं तो हमारी इस आवाज में जान है, वरना बिना आपके तो ये महफिल भी बेजान है। आपकी चाहत, आपके संदेश और आपका ये बिना शर्त प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
0: तो बस दुआ यही है कि आपकी जिंदगी का हर लम्हा मुस्कुराता रहे। कहते हैं ना कि दूरियां चाहे कितनी भी हों, अगर दिलों के तार जुड़े हों तो आवाज़ का एक झोंका भी अपनेपन का एहसास दिला देता है। तो चलिए आज का ये सफर फिर कुछ ऐसी ही अनकहीं बातों, कुछ पुरानी यादों और आपके हमारे रिश्ते के नाम

0: आई होप शैल जी कि हमने ये जो गीत के साथ साथ जो मैसेज दिया है हमारे सभी सुधीर श्रोताओं के दिल तक पहुंच गया होगा और हमारी सखियों के दिल तक भी दस्तक दे चुकी होगी हमारी भावनाएं हमारी बात, है ना?
1: बिल्कुल सही कह रही हो।
0: किसी कभी कभी आपने ये देखा है जिस तरीके से कभी हम छत पे एकांत में बैठे होते हैं शैल जी, अचानक एक ऐसा हवा का झोंका बहुत तेजी से आता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं कभी इधर उड़ जाती है कभी उधर, चीजें बड़ी अस्त व्यस्त सी हो जाती हैं। और कभी कभी तो उस तूफान को देख करके ऐसा लगता है कि अरे ये चीजें तो मुझे मिल ही नहीं रही है, अरे क्या अब मैं सच में इस बिखरे हुई चीजों को समेट पाऊंगी या नहीं। लेकिन अगर थोड़े पल हम शांति से सोचें तो वो जो तूफान है जब रुकता है तो बहुत सारी चीजों को शांत कर जाता है। वो जो अस्त व्यस्त चीजें धूमिल से दिखती है ना वो भी हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई देने लगती है।
1: सही कह रही हो अनामिका। वो कहते हैं ना कि जिंदगी कभी मखमली रास्ता है तो कभी कांटों से भरी राह, कभी धूप तो कभी घनी छांव, और अचानक जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हमारी उम्मीदों की नाव किसी बड़े तूफान से टकरा जाती है तो सब कुछ बिखरने सा लगता है। तो उस वक्त हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं।
0: और वो रास्ते कौन से हैं
1: भाई? या तो हम घबरा कर टूट जाएं या फिर धैर्य का हाथ थाम कर उस तूफान के गुजरने का इंतजार करें।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ आपके। हाँ, ये कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है शैल जी, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। जब कोई अपना साथ छोड़ दे या कई सालों की मेहनत अचानक से ढह जाती है तब धैर्य रखना किसी अंगारे पर चलने से कम नहीं होता। हाँ, लेकिन तब हमारा दिल कायनात से शायद ये जरूर पूछता है कि आखिर ये मेरे ही साथ क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ। तो इस बात पर शैल जी मैं अपनी सभी सखियों से और सभी सुन रहे श्रोताओं से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि विपरीत परिस्थितियां भी ना उन्हीं के चौखट पर दस्तक देती हैं, उन्हीं का दरवाजा खटखटाती हैं जिनके पास इनसे बाहर निकलने का हुनर होता है। एक वो कला होती है जो सब साथ पहचान नहीं पाते। हमारे अंदर का इंसान कितना मजबूत है यही तो है हमारे जीवन की असली परीक्षा। सोचिए जरा, माँ के गर्भ में एक शिशु को बनने में 9 महीने का धैर्य और वहीं एक बीज को पेड़ बनने में कई सालों का धैर्य, तो भला हम अपनी जिंदगी का फैसला एक बुरे दिन को देखकर कैसे कर सकते हैं? कैसे ये मान लेते हैं कि अब ये जो परिस्थितियां हैं वो हमें पूरी तरीके से निराशा की ओर ही मोड़ चुकी हैं, अब हम कभी उठ नहीं पाएंगे, फिर से हम चल नहीं पाएंगे, ऐसा क्यों हम सोच पाते हैं? इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि पता है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम उस परिस्थिति को देख रहे हैं, उसके बाद वाली चीजों को शायद समझ पा ही नहीं रहे हैं कि ये कुछ क्षण का है। जैसे भाई सुबह होती है रात भी आना लाजमी है, रात है तो सुबह आना लाजमी है,
1: ये तो पता होती है
0: बिल्कुल। लेकिन जो उतार चढ़ाव है जीवन में वो अचानक से आई हुई परिस्थितियों के लिए भी हमें तत्परता के साथ हमेशा तैयार रहना होगा। ये नेमत हमें ईश्वर ने बख्शी है, उसे समझना होगा।
1: बिल्कुल सही कह रही हो। रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, वक्त कितना भी विपरीत क्यों ना हो, सुबह का सूरज बादलों के घनघोर अंधेरों को चीरता हुआ निकलता जरूर है। बस अपनी हिम्मत मत खोइए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से सारी कायनात से यही कहिए कि मैं थका जरूर हूँ
0: हारा नहीं,
1: ये वक्त भी धीरे धीरे गुजर जाएगा, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो अनामिका, हम धैर्य और विपरीत की बात जरूर कर रहे हैं, ये हर इंसान पर लागू होता है। और जब कोई कठिन परिस्थिति सामने जब आ जाती है तो तुरंत भाई हम प्रक्रिया नहीं दे सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम प्रक्रिया देने के बजाय उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना? और जब ना समझ में आए तो फिर सोचते हैं क्या किया जाए।
0: बिल्कुल। तो लेकिन वो जब हम ये सोच लेते हैं ना कि क्या किया जाए, उस क्या किया जाए में ही हमारा सारा
1: सब कुछ छिपा है।
0: बिल्कुल, सारी चीजें उसी में निहितार्थ होती हैं, बस समझने की देरी है कि हमें करना क्या है। तो परिस्थितियों में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। शैल जी, आपको वो कहानी याद आती है क्या?
1: कौन सी?
0: उस मूर्तिकार की।

0: नहीं याद आ रही है?
1: नहीं, मुझे इतने याद है।
0: मैं बताती हूँ, एक बार क्या था कि एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था, ठीक है, जो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति की रचना कर रहा था। और जब भाई, जाहिर सी बात है, किसी मूर्ति को हम आकार देंगे तो उस पर हमें हथौड़ियों की चोट तो करना लाजमी है,
1: तभी तो आकार बनेगा।
0: बिल्कुल हुआ यूं कि चोट पर चोट, दर्द पर दर्द, वो पत्थर जो मूर्ति के आकार में ढलने को तैयार था, वो हर दिन सहता रहता और हर दिन वो सहते सहते चुप भी रहता, कभी कोई शिकायत नहीं करता। एक दिन क्या हुआ कि उस पत्थर से एक आदमी ने पूछा बड़ी शालीनता से, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? उस समय जिस समय वो मूर्तिकार तुम पर हथौड़ियों की चोट कर रहा होता है, क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? तुम पर रोज वो हथौड़ियाँ चला के चला जाते हैं और तुम चुपचाप ये चीज़ सहते रहते हो। पत्थर ने बड़ी शालीनता से ही उत्तर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दर्द होता है, बहुत होता है, लेकिन मुझे इस मूर्तिकार पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि ये मुझे तोड़ नहीं रहा है,
1: मुझे सही आकार दे रहा,
0: बल्कि मेरे अंदर छिपे फालतू मलबे को हटाकर मुझे एक भगवान का रूप दे रहा है। यही तो धैर्य है। जब जिंदगी हमें तराश रही होती है, मुश्किलें हम पर चोट कर रही होती हैं, तो हम बिखरने लगते हैं, हम शिकायत करने लगते हैं। लेकिन उस वक्त बस एक बात याद रखिए कि हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
1: वाह, बिल्कुल सही बात तुमने अनामिका कही। ये देखो, इतनी छोटी सी पंक्तियों में तुमने सारी बातों का एक, वो क्या बोलते हैं,
0: निचोड़
1: रख दिया तुमने। भाई, समझने की बात है, हम अपने जो भी समस्याएं हैं हमको उसमें उलझना नहीं है, बस हमें आगे बढ़ जाना है, बस हमें थोड़ा सा समय लेना है, समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एकांत कोने में बैठ जाओ और सोचो कि अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और इसका क्या हमें
0: रास्ता निकालना है।
1: बिल्कुल, तो जब आप सोचोगे शांति से बैठ के ना, तो रास्ता अपने आप सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे उतना पेशेंस है, हमने वो रखा हुआ है, और हमने अगले से भी कहा है इस चीज़ के लिए कि रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, लेकिन रास्ता अपने आप ही मिल जाता है, बस थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा धैर्य रखिए।
0: बिल्कुल, तो शैल जी की इन बातों से मैं तो इत्तेफाक रखती ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे साथ जो भी घटित हो रहा होता है, वो सिर्फ हमारे साथ नहीं घटित हो रहा होता है। मैं इतना जानती हूँ कि जो हम फेस कर रहे हैं, शायद हमारे पूर्वज कर चुके हैं, शायद हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी करेगी, और जो हमारे साथ चल रहे हैं हमारे छोटे, वो भी कर रहे होंगे। बस फर्क इतना है कि उस चीज़ से निकलने की कला कितनी, किसको किस तरीके से आती है
1: जी।
0: क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम पार्ट ऑफ लाइफ समझेंगे तो बहुत आसान है, और जब हम उसे समझ लेंगे कि नहीं नहीं ये तो लाइफ का हिस्सा ही है, तब वो कठिन लगता है। तो ये नहीं समझना है, हर एक चीज़ बड़ी आसान हो जाती है एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, एक अपने किसी के ये कह देने से कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और चुपचाप से अपने ही अंतर्मन से ये जवाब जान लेना कि कोई बात नहीं ना, ये भी वक्त ही तो है, गुजर जाएगा।
1: बिल्कुल सही कह रही है भैया नमका, तो इसी बात पर सुनते हैं ये गीत।

0: जी शैल जी वापस आ जाइए स्टूडियो में, है ना।
1: आ गई भाई अनामिका,
0: इतना मत खो जाइए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मैं आप सबको बताऊं। और हमारे सामने जो प्यारी सी मुस्कुराहट वाली आवाज़ में दीप्ति मिश्रा जी बैठी हैं, जो कि हमारे इस समय अनाउंसर्स हैं, तो उनका चेहरा और इनका खो जाना दोनों मुझे चार मिनट से सिर्फ यही परेशान कर रहा था कि दीप्ति जी भी वापस आएंगे कि नहीं और ये भी वापस आएंगे कि नहीं रेडियो में। अच्छा, वो इशारा कर रही हैं कि वो आ गई हैं, जैसा कि इन्होंने अपनी आवाज़ के साथ मुझे बताया कि भाई मैं आ गई हूँ, क्योंकि वाकई लगता है ना।
1: बिल्कुल अनामिका, देखो कुछ आवाजें केवल सुनाई नहीं देती, वे सीधे दिल तक उतरती हैं। कुछ स्वर केवल गीत नहीं गाते, वे भावनाओं को शब्द देते हैं। और देखो भारतीय संगीत के आकाश में ऐसा ही एक स्वर था लता मंगेशकर जी का। जी हाँ, आज उनके जन्म वर्ष की जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन अर्पित करते हैं। तो अब आइए सुनते हैं रूपक, सुर सामग्री लता मंगेशकर, वचन स्वर है तनु आर्य और दीप्ति मिश्रा के।

भारतीय संगीत का इतिहास जब भी अपनी अमर गाथाएं सुनाता है, वहां एक नाम स्वर्णाक्षरों में दमकता है, जिसकी आवाज ने 7 दशकों तक पीढ़ियों को बांधे रखा, जो केवल एक गायिका नहीं थी बल्कि भारत की धड़कन, संस्कृति की प्रतिध्वनि और पीढ़ियों की स्मृति थी। वो भावनाओं की जीवंत प्रतिमूर्ति थी और जब भी भारतीय संगीत अपनी आत्मा को खोजता है, वो लता मंगेशकर के स्वर में खुद को पहचान लेता है।

0: लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वो दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की पहली संतान थीं। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे।
1: यूं तो लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा था, लेकिन उनके पिता दीनानाथ ने बाद में उनका नाम लता रख दिया, जो कि उनके नाटक भाव बंधन के एक महिला किरदार से प्रेरित था।
0: घर के संगीत और कला के माहौल में वो रच बस गईं। 5 वर्ष की कम उम्र से ही लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया और पिता के साथ उनके थिएटर में गायन प्रस्तुतियां भी देने लगीं।

0: जब लता जी मात्र 13 वर्ष की थीं, तभी पिता का निधन हो गया। आर्थिक संकट अचानक सामने खड़ा हो गया। उस नन्ही उम्र में लता जी को परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। इसी कठिन समय ने उन्हें जीवन भर अनुशासन, संघर्ष और साधना का पाठ पढ़ा दिया। 1942 में पहली बार लता जी को फिल्म में गाने का अवसर मिला, जो कि एक मराठी फिल्म थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाव में लता जी ने हिंदी गाना गाया, लेकिन उसका भी बहुत प्रभाव नहीं पड़ा।
1: 1945 में लता जी मुंबई शिफ्ट हो गईं और यहाँ उन्होंने उस्ताद अमन अली खां से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। कुछ समय बाद वे वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में आईं। गुलाम हैदर लता जी की आवाज से बहुत प्रभावित थे और वे लता जी के मेंटोर बन गए। उन्होंने ही लता जी को अपने उच्चारण, खासकर हिंदी और उर्दू को सुधारने के लिए और अपनी स्वयं की शैली विकसित करने के लिए जोर दिया। लता जी भी उनको अपना गॉडफादर मानती थीं।

0: एक वाक्या है, हैदर लता जी को फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय फिल्म शहीद बना रहे थे। लेकिन लता जी को सुनने के बाद मुखर्जी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि इसकी आवाज बहुत पतली है, चलेगी नहीं। इस पर गुलाम हैदर साहब ने कहा था, एक समय आएगा जब सब लता को अपनी फिल्मों में गाने के लिए मिन्नते करेंगे।
1: पार्श्व गायन के क्षेत्र में जब लता जी अपना करियर बनाने में लगी थी, उस दौर में नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। ऐसे में लता जी उनसे खासी प्रभावित थीं, लेकिन थोड़े ही समय में उनको समझ में आ गया था कि यदि आगे बढ़ना है

के क्षेत्र में जब लता जी अपना करियर बनाने में लगी थीं, उस दौर में नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। ऐसे में लता जी उनसे खासी प्रभावित थीं, लेकिन थोड़े ही समय में उनको समझ में आ गया था कि यदि आगे बढ़ना है तो स्वयं की शैली विकसित करनी ही होगी।

आखिरकार वो समय आ गया जब उन्होंने 1949 में आई फिल्म महल का आएगा आने वाला गीत को स्वर दिया, और जब वो रेडियो पे गूंजा तो पूरा देश इस अनजान आवाज का दीवाना हो गया। उस दिन से लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा जगत के संगीत की धड़कन हो गईं।

1950 से 70 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को हमें मिले।

लता जी का रिश्ता संगीतकारों के साथ हमेशा रचनात्मक रहा। मदन मोहन के गीतों में उनका दर्द छलकता है। शंकर जयकिशन के साथ उनकी धुनें मस्ती में भर जाती हैं, तो एसडी वर्मन के साथ अलग ही जादू रचती हैं। मदन मोहन अक्सर कहते थे, लता मेरी आवाज की देवी है। वहीं रफी और किशोर के साथ उनके युगल गीत आज भी सुनने वालों के दिलों को झकझोर देते हैं।

0: अनिल विश्वास, नौशाद, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे संगीतकारों के धुनों पर लता जी ने अनेक यादगार गीत गाए जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। कई फिल्में उस दौर में महज इसलिए सफल हुई क्योंकि लता जी ने उसके गाने गाए थे। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता जी फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गईं।
1: वे हर गाने को विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे भजन हो या देशभक्ति से ओतप्रोत। मधुबाला से लेकर प्रीति जिंटा तक स्वर देने वाली लता कठिन से कठिन गीत को भी बड़े ही आसानी से गा देती थी।

0: शायद यही कारण है कि उनके गीत सुनते हुए लगता है जैसे वो केवल गा नहीं रही बल्कि जी रही हैं। लग जा गले की तान में विरह की पीड़ा है, तो ऐ मेरे वतन के लोगों में माँ भारती के लिए आंसू हैं। उनकी आवाज शब्दों को आत्मा दे देती थी।
1: लता मंगेशकर ने 36 से अधिक भाषाओं में गाना गाया। हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी से लेकर तमिल, तेलुगु और भोजपुरी तक हर भाषा में उनकी वही मधुरता और गहराई थी। उनकी आवाज़ ने भाषाओं की दीवार तोड़ी और संगीत को एकता का सूत्र दिया। वे जहाँ भी गाती लोग भाषा भूलकर भावनाओं में डूब जाते।

लता जी ने संगीत को तपस्या माना। वो घंटों रियाज करती और हर गीत को अपना जीवन बना लेती। संगीत उनके लिए साधना थी, इसलिए वो हमेशा नंगे पांव ही स्टूडियो में गीत गाती थीं।

1963 में जब चीन युद्ध के बाद दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लता जी ने कवि प्रदीप का लिखा और सी रामचंद्र का संगीतबद्ध किया गीत गाया, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें छलक पड़ी।

0: ये गीत केवल एक प्रस्तुति नहीं था बल्कि पूरी भारतीय आत्मा का स्वर था। तब से ये गीत स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी स्मृतियों में दर्ज हो गया।
1: आजीवन अविवाहित रहीं लता जी को संगीत के बाद क्रिकेट से खासा लगाव रहा। जब 1983 में भारत ने क्रिकेट का विश्व कप जीता तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड प्रत्येक खिलाड़ी को कुछ धनराशि देकर सम्मानित करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे। इस पर लता मंगेशकर जी ने म्यूजिक कंसर्ट के द्वारा प्राप्त धनराशि क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी ताकि वो हर खिलाड़ी को सम्मानित कर सकें। लता मंगेशकर को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ साथ भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। लेकिन वे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि जनता का प्रेम मानती थीं। वे कहती थीं, मुझे सबसे अधिक खुशी तब होती है जब कोई श्रोता कहे कि मेरे गीत ने उसकी जिंदगी का एक पल सुंदर बना दिया।
0: उनकी दिनचर्या में आजीवन रियाज शामिल ही रहा। यही अनुशासन उन्हें कलाकार से आदर्श बनाता है।
1: उन्होंने भजन, गजल, देशभक्ति गीत और शास्त्रीय बंदिशें भी गाएं। उनके स्वर में तुलसी और सूरदास की भक्ति भी थी और गालिब की नजाकत भी। उन्होंने संगीत को धर्म, भाषा और वर्ग से ऊपर उठाकर भारत की साझा सांस्कृतिक चेतना बना दिया।
0: जब उनका निधन हुआ तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। लगा मानो आसमान से कोई तारा टूट गया हो। पर सच तो ये है कि लता मंगेशकर कभी विदा हो ही नहीं सकती। उनका स्वर रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सबसे बढ़कर हमारी स्मृतियों में अनंत काल तक गूंजता रहेगा।

0: लता मंगेशकर की कहानी केवल एक महान गायिका की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस आत्मा की गाथा है जिसने सुरों से जीवन रचा। उन्होंने दिखा दिया कि संगीत केवल ध्वनि नहीं, बल्कि भावनाओं का वो महासागर है जिसमें डूबकर इंसान खुद को पहचान सकता है।
1: लता जी भारत की स्वर कोकिला थी और रहेंगी। जब भी कोई लग जा गले गुनगुनाएगा, जब भी कोई तेरे बिना जिंदगी से याद करेगा, तब ये तय होगा कि लता मंगेशकर वास्तव में अनश्वर हैं।

0: तो शैल जी, अभी हमने अपने सभी सखियों को, श्रोताओं को सुनवाया रूपक सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, लता मंगेशकर जी के बारे में, जिसमें वाचन स्वर दिया था तनु आर्य और दीप्ति मिश्रा जी ने। और देखिए ना कितनी गहनता से उनकी हर एक जीवन के पड़ाव को, पहलू को हमारे सामने इस रूपक के माध्यम से जिस तरह पिरोया ना आप दोनों ने, यानी दीप्ति जी ने और तनु जी ने, वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ रहा। और सच कहें तो उनकी जो आवाज़ थी ना लता जी की, जब रेडियो की तरंगों पर जिस तरह से गूंजती थी, वो थी नहीं, वो हमेशा गूंजती
1: रहेगी और उतना ही उसमें नयापन रहेगा,
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो अनामिका, आज तो लता मंगेशकर जी का जन्मदिन था, है ना, और आज एक और लोग का जन्मदिन है।
0: अच्छा,
1: आज 28 सितंबर है और आज के दिन हमारे वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह का भी जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज़ाद पार्क में आज़ाद प्रतिमा के पास आयोजित समारोह होगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं, जिनमें सम्मानित अतिथियों एवं नागरिकों द्वारा माल्यार्पण और पुष्पांजलि दी जाएगी। 21 गन शॉट फायर की सलामी, साथ ही राष्ट्रध्वनि गीत, छात्र छात्राओं द्वारा गीत संगीत एवं भावपूर्ण नाटकों से स्मरण किया जाएगा। तो बहनों और श्रोताओं, आप सभी आज़ाद पार्क में आमंत्रित हैं।

0: तो श्रोताओं और सभी सखियों से शैल जी हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि भाई आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ही अमूल्य हैं। तो भाई आपको पता है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कहाँ दे सकते हैं? जी हाँ, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे यानी 8004926250 पर दे सकते हैं। और हमारा ईमेल एड्रेस भी आपको पता ही है, grilakshmibalsangh123@gmail.com।
1: तब तक के लिए अपने श्रोताओं से हम अनुमति लेंगे और बहनों से कहेंगे अगले सेगमेंट में हम फिर मिलेंगे। बोलते
0: तब
1: हैं
0: तब तक के लिए भाई, हम मुझे यानी अनामिका को
1: और मुझे यानी शैल को इजाजत दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी पहले अपना कार्यक्रम सुन रही थी गृह लक्ष्मी।

0: The Indian men's cricket team has entered the semi-final without even taking the field after its quarter-final against Afghanistan was abandoned due to inclement weather at Aichi Nagoya in Japan today. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp decline and were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the centre's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bagged silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram kurash events. Details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में

0: अभी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
1: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
0: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई, खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
4: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
4: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
1: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
0: सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
2: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारे प्रोडक्ट बनता है।
0: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
4: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2,000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2,000, 1,500, 1,200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
5: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़क कर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर

0: 44 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
2: जी,
3: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताजा कर दी
2: जी।
3: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने

0: परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से। डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
0: ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं।
1: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
0: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं।
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों की तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया।
0: जी,
1: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
0: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
0: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
1: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
1: हमारा अगला प्रश्न था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है।
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माद।
0: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर

0: उसने सोचा,
1: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
0: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
1: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
0: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
1: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद।
0: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
1: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
0: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
1: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
0: उसने सोचा,
1: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
0: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
2: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
3: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: और वो भी अचानक।
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे।
2: हाँ,
3: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं क्या
5: मसला
6: है, भगवान सब
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा।
7: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
2: शोक सूचना?
7: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
7: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है।

0: अरे भैया, कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
1: अच्छा,
0: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे।
1: हाँ,
0: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया, कुछ पता नहीं
3: जाने
2: क्या
3: मसला
4: है। ठीक है, चलो भगवान सब
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा।
5: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
1: शोक सूचना?
5: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
6: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
5: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
5: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई के
7: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
8: कैसे हमारे भाई?
6: बताओ तो
8: थापा जी कैसे हैं?
5: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
6: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए? क्या हो गया?
8: कैसे समाचार?
5: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
6: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी, जिसने ऐसे जांबाज योद्धा को जन्म दिया।
9: अरे वो हमारा गौरव है,
7: हमारा गौरव है।
6: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
5: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
9: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी।
7: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
6: जब तक सूरज चांद रहेगा,
10: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
6: भारत माता की
10: जय।
6: भारत माता की
10: जय।
11: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
12: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
11: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है। गांव का नाम है सुरम्य।
12: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
11: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
12: और आखिरकार वो दिन आा गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया।

0: गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
1: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
2: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
3: जय हिंद धन सिंह। हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
2: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
3: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
2: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
3: तुमने ठीक सुना है धन सिंह। हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
2: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने न पाए।
3: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
2: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है,
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ।
3: हेलो हेलो, सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा, दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास, दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
3: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
3: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मारकर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो,
6: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
7: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
3: ए सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे

कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है। तो संभालो अपनी बंदूक और एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली, आया गौर काली।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की बट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
3: माँ, माँ, माँ, माँ देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो
4: चिट्ठी, ला दिखा तो।
3: अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है।
5: जिंदा है? अरे बहुत खुशी
3: है बेटा।
5: जिंदा है धन सिंह थापा।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परमवीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा

0: Shut na mai.
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने को है। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे हम आपके सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, हमारे नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स के साथ साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब आज की सांधिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुने नन्ही दुनिया।

0: आपको पता है वो लाइन आपको याद है जो हमेशा अक्सर मैं अपने नन्ही स्मार्ट साथियों को कहती हूँ? पूछिए जरा वो कौन सी लाइन है? वो लाइन है कि जब रहोगे फिट तभी तो होगे हिट।
1: वाह भाई वाह। तो बच्चों, अनामिका दीदी की ये शब्द आप अपने जीवन में उतार ही लीजिए, है ना, क्योंकि जब आपके दिमाग में ये बातें होंगी ना, तब आप अपने आप ही फिट रहोगे और हर चीज में हिट हिट करते रहोगे।
0: बिल्कुल। और शैल दीदी, आपको पता है आज ना मेरे पास एक ऐसी जादुई चाबी है ना, जिसके बारे में मैं आपको भी और अपने सभी नन्हे साथियों को बताना चाहती हूँ।
1: चाबी?
0: हाँ।
1: वो कौन सी चाबी है भाई?
0: अरे भाई, वो चाबी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसका नाम जैसे ही लूंगी शायद हमारे जितने नन्हे साथी हो उनका ना वो सैड वाला इमोजी वाला चेहरा सामने नजर आ जाए। अब पूछिए जरा वो चाबी कौन सी है।
1: कौन सी चाबी भाई, वो तो मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ।
0: सुनिए जरा, जब कोई खेल हम खेलते हैं, है ना, हर खेल में, हर परीक्षा में और जिंदगी के हर रास्ते में, पता है वो चाबी ऐसी काम करती है कि हमें सुपर हीरो बना देती है, सुपर विमन बना देती है। और जानते वो चाबी कौन सी है? वो जादुई चाबी है हार। हाँ, चौके मत और चेहरे पे उदासी भी मत लाइए आप लोग। मैं बताऊं कि ये इमोजी जो आपने बना लिया सैडी सैडी वाला, उसे साइड करिए और बड़े ध्यान से सुनिए। अब हम बताते हैं आपको कि आखिर ये चाबी हार वाली का मेन इसका मकसद क्या है। तो सोचिए जरा कि क्या अगर हम किसी भी खेल को खेलते रहें और तुरंत जीत जाएं, तो क्या वो खेल मजेदार होगा?
1: नहीं
0: होगा ना। अब जैसे हम बात करें श्याल दीदी कि जब हम लूडो गेम खेल रहे होते हैं तो हमारी गोटी कट गई होती है तो मूड ऑफ, और अगर हम रेस में पीछे रह गए तो मूड ऑफ, और कभी कभी तो आंसू भी निकल पड़ते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप गेम में पहली बार में ही बिना गिरे सीधे आखिरी लेवल पर पहुंच गए तो गेम खेलने में मजा आएगा क्या?
1: बिल्कुल भी नहीं भाई, गेम का असली मजा तो गिरने, संभलने और फिर से कोशिश करने में है।
0: तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाए अपने दोस्तों को।
1: बिल्कुल सुना भाई।
0: तो सुनिए आप भी ध्यान से, ठीक है। एक बच्चा था हमारे नन्हे साथियों के जैसा ही, उसका नाम था चीकू। चीकू ने पहली बार साइकिल चलाना शुरू किया और जैसे ही आगे बढ़ा गिरा धड़ाम, घुटने पर आ गई थोड़ी सी खरोच। चीकू तो लगा रोने और बोला, अब मैं कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा। तभी उसकी दादी ने कहा, चीकू तुम गिरे क्योंकि तुमने पैडल मारने की बजाय नीचे हैंडल को की तरफ देख रहे थे। अगर तुम पैडल की तरफ देख रहे होते तो तुम गिरते? बिल्कुल नहीं गिरते। फिर भी चीकू उदास था कि क्या मेरी दादी सही कह रही है। लेकिन वो रात में सोया और दादी की बात को अपने दिमाग में दोहराता रहा कि क्या मैं सच में अगर सामने देख रहा होता तो वाकई मैं नहीं गिरता। उसने सुबह उठते ही बोला, दादी आज तो रविवार है, तो क्यों ना आप मुझे सैर कराने ले चलिए मेरी साइकिल के साथ। अब क्या था, चीकू को अपनी गलती समझ में आई और उसने दोबारा कोशिश की और इस बार सामने देखा। और वाह, अब क्या, चीकू तो बिना गिरे ही साइकिल चलाना सीख गया।
1: वाह भाई।
0: तो समझे मेरे स्मार्ट नन्हे साथियों, ये थी हार वाली चाबी, कि हार हमें डांटती नहीं है,
1: हमें सिखाती है।
0: बिल्कुल, कान में धीरे से कहती है, अरे दोस्त इस बार ये वाली गलती मत करना, फिर देखना तुम कैसे जीत सकते हो।
1: बिल्कुल सही कह रही है अनामिका। तो बच्चों, दीदी के कहने का मतलब ये था कि आप कोई भी चीज़ करो, लेकिन पहले अपना लक्ष्य साध लो और हमें उसी पे कंसंट्रेट करना है।
0: बिल्कुल, और जब आप कंसंट्रेट हो जाएंगे तब देखो कि कोई भी चीज़ आपको बड़ी लगेगी ही नहीं और सारे गेम में ना आपको बहुत मज़ा आएगा। तब आपको हार भी लगेगी कि अरे हाँ, ये हार तो हमें कुछ सिखा के गया। और आपको याद है वो थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने कितनी बार बल्ब की खोज करते समय, जब वो प्रकाश की खोज कर रहे थे तो क्या हुआ था, कितनी बार वो हारे थे और अंततः 101वीं बार जाके वो सफल हो गए थे। और अगर वो ऐसा ना करते, अपने प्रयासों को वो वहीं असफलता की तरफ घुटने टेक देते, तो क्या आज हमको प्रकाश मिल पाता?
1: बिल्कुल नहीं मिलता,
0: हम अंधेरे में बैठे होते। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, फिर देखो जीत सदा कैसे नहीं होती।
1: बिल्कुल वही कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, इस चीज को अगर अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए तो आपको कोई भी काम कठिन नहीं लगेगा, हर काम आसान लगेगा। और अगर आप कभी पीछे रह जाते हो या किसी काम में असफल हो जाते हो तो मायूस

0: मत होइए। सोचिए कि ये मेरे एग्जाम की घड़ी है, मैं एक भी बार गिरा तो क्या हुआ, मैं अगली बार एकदम सही हो जाऊंगा, मैं आगे और अच्छा कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें भी एक सीख छिपी है कि हम अगर कोई चीज़ में गिर रहे हैं तो उससे हमको सीख ही मिल रही है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकता हूँ।
1: तो बस इसलिए अब अगली बार जब आपको हार का सामना करना पड़े तो खुद से ये मत कहिए कि मैं हार गया, बल्कि मुस्कुराकर कहिएगा मैंने एक सबक सीखा है, अब मैं पहले से बेहतर कोशिश करूँगा। तो चलिए अपने बच्चों को एक प्यारा सा गीत भी सुनवाया जाए।
0: बिल्कुल।

0: तो बच्चों आपको गीत अच्छा लगा ना भाई, अनामिका दीदी की चॉइस बहुत अच्छी है और किसी बच्चे की फरमाइश भी थी। तो चलो गीत के बाद मैं आपको एक खूब अच्छी सी जानकारी दूँ, क्यों अनामिका?
1: बिल्कुल, और मैं तो इंतजार में हूँ। और सुनिए सभी नन्हे स्मार्ट साथियों, आप भी ना डायरी और पेन लेकर फटाफट तैयार हो जाइए, क्योंकि दीदी ना जिस टॉपिक पे हमसे बातें साझा करने जा रही है वो है बड़ी इंटरेस्टिंग और हमें उसको हमेशा याद भी रखनी चाहिए, इसलिए डायरी में फटाफट नोट कर लीजिए।
0: तो बच्चों आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपने गर्मियों में जरूर महसूस किया होगा। जरा सोचिए, तेज धूप में अगर आपके सामने एक काला और एक सफेद कपड़ा रखा हो तो थोड़ी देर बाद काला कपड़ा ज्यादा गर्म क्यों महसूस होता है,
1: क्यों होता है?
0: दरअसल इसका संबंध है प्रकाश और ऊष्मा के अवशोषण से। सूरज से हमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों मिलते हैं,

0: काला रंग सूर्य के प्रकाश की अधिक ऊर्जा को अवशोषित यानी सोख लेता है। इस ऊर्जा का एक हिस्सा उष्मा में बदल जाता है और इसलिए काला कपड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। इसके विपरीत जो सफेद रंग होता है वो सूर्य के प्रकाश के बड़े हिस्से को परावर्तित यानी वापस लौटा देता है, इसलिए सफेद कपड़ा आमतौर पर उतना गर्म नहीं होता जितना काला कपड़ा होता है, है ना?
1: अरे वाह, यानी कि ये जो काले कपड़े और सफेद कपड़ों की बात है तो काले कपड़े का एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा होती है, है ना?
0: हाँ।
1: यानी कि जब भी सन की लाइट हमारे पास आती है तो वो क्या करता है कि सन रेज को वो अपने अंदर सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब करता है।
0: हाँ।
1: और वहीं जो भी लाइट कलर के कपड़े होते हैं या फिर व्हाइट कलर की हम बात करें तो वो रिफ्लेक्ट
0: हो जाता है, यानी उष्मा बन के उड़ जाता है।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात दीदी ने बताई। तो देखा बच्चों, दीदी के पास कितनी सारी बातों का खजाना तो होता ही है, लेकिन साथ ही उनके पास जानकारियों का भी भंडारण है। तो हमने क्या सीखा आज? तो हमने दो बातें सीखी। एक तो हमने ये सीखा कि भाई किस तरीके से जो ये चाबी है हार की, वो हार नहीं, वो सच में बात तो ये है कि वो हमें ये सिखाती है कि भाई अभी कुछ तो प्रयास है जो अभी अधूरा रह गया, अभी और प्रयास करना बाकी है। और वो हर बार हमें एक नया सबक, एक नया सीख दे जाती है, जैसे कि दीदी ने बताया, है ना?
0: और देखो, हम हर कार्यक्रम में अपने बच्चों को एक छोटी छोटी जानकारी देते रहते हैं जिससे कि बच्चे पढ़ने में उतना मन तो लगाते नहीं है। हाँ, सुनने में खेलने में ज़रूर लगाते हैं, तो कम से कम इसी के ज़रिए उनको जानकारी अच्छी अच्छी हो जाए जिससे कि वो अपने बच्चों अपने दोस्तों से शेयर कर सकें।
1: और जैसा कि दीदी हम लोग एक छोटी छोटी सी बात और बच्चों से कहते हैं कि जब भी आप कहीं जाया करिए तो अपने साथ डायरी ज़रूर रखिए और पेन रखे रहिए। होता क्या है कि सपोज़ आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं या फिर किसी ऐसे प्लेस में जा रहे हैं जो हिस्टोरिकल प्लेस है, तो अब सारी चीज़ें तो माइंड में रह नहीं जाती।
0: हाँ,
1: लेकिन जब आप उसे डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं तो जब आप उसको बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको भी खूब रोचकता बढ़ेगा, मन का बड़ी उत्साह बढ़ेगी कि अरे मैंने तो ये देखा था, चलो अपने आज इस वाले दोस्त से मैं ये शेयर करूंगा। इससे दो काम हुआ शैल दीदी,
0: एक तो मुझे याद हो गया और दूसरी बात यह है कि जो मैंने लिखा है वो आगे भी हमें याद दिलाता रहेगा। तीसरी बात यह है कि हम अपने दोस्तों से बता सकेंगे कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या देखा और क्या हिस्टोरिकल चीज़ें हमारे माइंड में आ गई।
1: बिल्कुल, और ये भी कर सकते हैं, ये भी तो हुआ ना कि सपोज़ हमारा कोई साथी वहाँ नहीं पहुँच पाया तो हमने वहाँ की चीज़ों से उसे अवगत करा दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये छोटी छोटी सी बातें लेकिन मोटी बातें। और अब हमारा समय हो चुका है आपसे विदा लेने के लिए, तो दीदी हम बच्चों से कहते हैं बच्चों
0: जय हिंद।

0: अभी हमारी नन्ही मुन्नी अपना कार्यक्रम सुन रही थी नन्ही दुनिया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब कुछ ही पलों में युवाणी कार्यक्रम।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल

0: लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। वक्त हो चला है युवाणी कार्यक्रम का।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका रेडियो साथी अभिषेक, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। और स्वागत है आप सभी का आज के इस सफ़र में, जहां बातें होंगी जल जीवन के बारे में, जहां बात होगी शहीद आज़म भगत सिंह जी की अमिट क्रांति के बारे में, और साथ ही बात होगी स्वर कोकिला सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले विषय के साथ। साथियों, कहते हैं पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, पानी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जिस पानी को हम नल खोलकर कुछ सेकंड में बहा देते हैं, उसी पानी की एक एक बूंद के लिए कहीं कोई घंटों का इंतज़ार करता है। किसी खेत की मिट्टी बारिश की राह देखती है तो किसी शहर की टंकी खाली होने का इंतज़ार नहीं करती, वो हमें पहले ही चेतावनी दे देती है। और इसलिए आज बात सिर्फ जल बचाने की नहीं, आज बात है युवा नेतृत्व की, क्योंकि आज की बातचीत का विषय है जल बचाना केवल जिम्मेदारी नहीं, युवा नेतृत्व का अवसर। क्योंकि साथियों, बदलाव हमेशा किसी बड़े मन से शुरू हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बदलाव आपके घर के बाथरूम या वॉश बेसिन के नल से ही शुरू होता है, कॉलेज की कैंटीन से शुरू होता है, मोहल्ले की छत पर रखे एक छोटे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से शुरू होता है। तो क्यों ना आज हम खुद से सवाल करें, पूछें कि जल बचाना केवल जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए नेतृत्व का एक बड़ा अवसर क्यों है और कैसे है। दोस्तों, पानी हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी मौजूदगी हमें अक्सर तब महसूस होती है जब ये उपलब्ध नहीं होता। हम सुबह उठते हैं और नल खोलते हैं, पानी आया, हमने शायद सोचा भी नहीं कि यह पानी कहाँ से आया, किसी नदी से, किसी जलाशय से, किसी भूजल स्रोत से, किसी पाइपलाइन के लंबे सफ़र से। हमारे लिए पानी नल में आने वाली एक सामान्य चीज़ है, लेकिन प्रकृति के लिए पानी एक लंबी प्रक्रिया का प्रोसेस होता है, परिणाम होता है। बारिश होती है, पानी ज़मीन में जाता है, नदियाँ और तालाबों को भरता है, भूजल का स्तर संभालता है, और फिर यही पानी हमारे जीवन, खेती और अर्थव्यवस्था को चलाता है। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकालते हैं और उसे वापस प्रकृति में पहुँचाने के रास्ते कम कर देते हैं, तो ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और यहीं से शुरू होती है हमारी जिम्मेदारी, और यहीं से शुरू हो सकता है युवाओं का नेतृत्व। मान लीजिए किसी घर में रोज़ ब्रश करते समय हम कुछ टाइम के लिए नल खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि काफ़ी सारा पानी वेस्ट हो जाता है, बह जाता है। और एक व्यक्ति शायद ये सोच सकता है थोड़ा सा ही तो पानी बह रहा है, लेकिन साथियों ये गौर करने की बात है कि ये सिर्फ एक घर की बात नहीं हो सकती, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे घर हो सकते हैं। जब लोग ब्रश करते समय या पानी का इस्तेमाल करते समय कई बार टोटी को खुला छोड़ देते हैं, और इस तरह से एक पानी की बड़ी मात्रा वेस्ट हो जाती है, व्यर्थ में बह जाती है। साथियों, एक कॉलेज में कैंटीन के पास पानी का नल लगातार टपक रहा, एक एग्जाम्पल की अगर बात करें, हर दिन छात्र उसे देखते हैं लेकिन किसी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं होता, कोई आगे आके रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक दिन कुछ विद्यार्थियों ने मिलकर कॉलेज प्रशासन को इसकी जानकारी दी, नल ठीक हुआ, साथ ही उन्होंने कैंपस में वाटर सेविंग वीक शुरू किया, उन्होंने पोस्टर बनाए, सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो बनाए, छात्रों से अपील की कि आखिर पानी का इस्तेमाल ज़रूरत के अनुसार कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके जो हमारे युवा साथी हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में जाते हैं, वो इस तरह से लोगों में जागरूकता का संदेश फैला सकते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि किसी ने बहुत बड़ा कोई आविष्कार नहीं किया, बस समस्या देखी, जिम्मेदारी महसूस की और समाधान के लिए आगे आ गए।

यही नेतृत्व है जो हम सबको सीखना है। और साथियों, नेतृत्व का मतलब हमेशा मंच पर बड़ी बड़ी स्पीचेस देना नहीं होता है, कभी कभी नेतृत्व का मतलब होता है जहां बाकी लोग समस्या देखकर आगे बढ़ जाएं, वहां आप भी 2 मिनट रुककर समाधान के बारे में सोचें, समस्या को हल करने के उपाय के बारे में सोचें। क्योंकि दोस्तों, पानी की हर बूंद हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से मिला संसाधन अनंत नहीं है। और साथियों, जो हमारा युवाणी का सफ़र है, जो ये प्रोग्राम है, वो हमें ये भी याद दिलाता है कि बीच बीच में भाई मनोरंजन भी ज़रूरी है। तो आइए आपको सुनवाते हैं अपने प्रोग्राम का ये पहला गीत।

दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे पानी और युवा नेतृत्व की। तो साथियों, अब सवाल है, एक युवा वास्तव में कर क्या सकता है? क्या पानी बचाने के लिए आपको कोई बड़ा पद होना चाहिए आपके पास? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपको किसी बड़े संगठन का हिस्सा होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आप अपने घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, घर में आरओ मशीन है, आजकल तो सभी के घरों में लगा हुआ है, और उसका काफ़ी पानी सीधे बाहर चला जाता है। क्या उस पानी का इस्तेमाल पौधों में किया जा सकता है, फर्श की सफाई में या अन्य गैर पेय उपयोगों में? तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, अगर संभव और सुरक्षित हो तो। इसी तरह कपड़े या बर्तन धोते समय पानी का इस्तेमाल ज़रूरत के अनुसार हमें करना चाहिए। नल और पाइपलाइन में लीकेज की जानकारी देना, बाल्टी से नहाने जैसे विकल्प अपनाना, ये छोटी छोटी आदतें हैं लेकिन बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं, जो जल संरक्षण में अपनी बड़ी भूमिकाएं भी निभाती हैं। लेकिन इन आदतों को जब हम अपने परिवार और दोस्तों तक पहुँचाते हैं तो उसका प्रभाव और दायरा और भी बढ़ने लगता है, और इसके प्रति जागरूकता का संदेश कहीं अधिक व्यापक होने लगता है। और आज के डिजिटल दौर में तो युवाओं के पास एक और ताकत है भाई, कम्युनिकेशन की। आप छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कॉलेज जाने वाले युवा साथी कॉलेज में एक छोटी सी अवेयरनेस एक्टिविटी करा सकते हैं, मोहल्ले में बच्चों के साथ पानी बचाओ कैंपेन चला सकते हैं। यानी आज का युवा सिर्फ पानी बचाने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि जल संरक्षण का कम्युनिकेटर भी बन सकता है। और साथियों, हमें यह भी सोचना चाहिए कि बारिश का पानी आपकी छत से बहकर आखिर जा कहाँ रहा है? क्या उस पानी का उपयोग हेतु उसका संरक्षण किया जा सकता है? ऐसे छोटे छोटे सवाल हमें और अधिक जागरूक बनाते हैं और इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि सिर्फ पोस्ट डाल देना, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें कर देना ही पर्याप्त नहीं होता है। अवेयरनेस तभी मीनिंगफुल होगी जब अंतिम रिजल्ट तक पहुंचेगी। अगर हम जल संरक्षण पर पोस्ट डालें और अगले ही पल पानी बर्बाद करना शुरू कर दें तो संदेश अधूरा ही रह जाएगा ना। और इसलिए सोशल मीडिया को केवल हमें दिखावे का मीडियम नहीं बनाना चाहिए बल्कि व्यवहार में बदलाव लाने का माध्यम बनाना चाहिए। हमारे गाँव और खेती से इसका बहुत गहरा संबंध है। अगर बात करें किसानों के परिदृश्य में कि किस जल कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसको बचाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो साथियों, किसान के लिए पानी केवल पीने की एक ज़रूरत नहीं होती बल्कि फसल का आधार है। बारिश का पानी अगर बहकर निकल जाए और उसे सुरक्षित संरक्षित करने की व्यवस्था ना हो तो उसका असर खेती पर सीधे देखने को मिल सकता है। यहीं पर युवा साथियों की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है। आज का ग्रामीण युवा परंपरागत ज्ञान और आधुनिक तकनीक दोनों को जोड़कर एक साथ देख सकता है। वो वर्षा जल संचयन के बारे में जानकारी ले सकता है, स्थानीय तालाबों और जलस्रोतों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ा सकता है, खेती में पानी के बेहतर उपयोग से जुड़ी तकनीकों के बारे में टेक्निकलिटी बहुत सारी हैं जो आजकल वो भी सीख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपने गांव के लोगों के बीच इस विषय पर बातचीत करना शुरू कर सकता है। क्योंकि कई बार समाधान हमारे आसपास ही होते हैं, बस उन्हें पहचानने और व्यवस्थित करने की ज़रूरत होती है। इसलिए जल संरक्षण युवाओं के लिए सिर्फ पर्यावरण का विषय नहीं, ये लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और इनोवेशन सीखने का वास्तविक अवसर भी है। दोस्तों, भविष्य में दुनिया के सामने संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की चुनौती और भी महत्वपूर्ण होगी। पानी से जुड़े क्षेत्र में नई तकनीक, जल प्रबंधन, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए सीखने और काम करने के काफ़ी अवसर भी डेवलप हो रहे हैं। इसलिए अगर कोई युवा पानी के विषय को सिर्फ बचत तक सीमित नहीं रखता बल्कि उसे इनोवेशन की नज़र से देखता है तो वो नए समाधान भी सोच सकता है। जैसे बारिश के पानी को संग्रहित करने के बेहतर तरीके, कम पानी में खेती के उपाय, पानी की बर्बादी का पता लगाने वाली तकनीकियां और घरों संस्थानों में वाटर मॉनिटरिंग, नदी पोखरों और तालाबों के पानी को साफ और संरक्षित रखना, गंदे पानी के उपचार और पुनः उपयोग की तकनीक विकसित करना, यानी पानी की समस्या के भीतर

ही कई संभावित समाधान छिपे हैं, और इस सारे समाधान खोजने वाली पीढ़ी कौन होगी? साथियों, हमारी युवा पीढ़ी ही होगी। अक्सर हम कहते हैं ना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ साथियों, लेकिन सच बात तो यह है कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत में कोई ना कोई व्यक्ति अकेला ही खड़ा होता है। एक व्यक्ति पौधा लगाता है, एक व्यक्ति सफाई शुरू करता है, एक व्यक्ति सवाल पूछता है, एक व्यक्ति दूसरों को जोड़ता है, फिर दो लोग होते हैं, फिर 10, और फिर ऐसे करके 100 लोग जाने कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। और फिर धीरे धीरे यही एक विचार आंदोलन का रूप ले सकता है। इसलिए जल संरक्षण के लिए आपको दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं, बस अपने हिस्से की दुनिया में थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। बदलाव अपने घर में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, अपने गाँव में और अपने मोहल्ले में।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी का यह सफ़र मेरे यानी अभिषेक के साथ। और इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है प्रेरणा पुंज। साथियों, हम बात कर रहे हैं अपने प्रेरणा पुंज सेगमेंट में उस शख्स की, उस किरदार की, उस नायक की, जिसकी गूंज हमें आज भी इनकलाब जिंदाबाद के रूप में सुनाई देती है। वो कहते थे, मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जन जन में इंकलाब की भावना जगा देने वाले सच्चे वीर, सच्चे देशभक्त शहीद आज़म भगत सिंह जी की। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिनकी गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी वीरता और बलिदान ने न सिर्फ हमारे देश को राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने की सहन शक्ति दी, बल्कि आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए स्वाभिमान से जीने और अपने हक के लिए लड़ने का मार्ग भी तय कर दिया। दोस्तों, भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था, यानी आज उनका जन्मदिवस है। और उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह सक्रिय था, जिसकी वजह से उन्हें भी देश के उत्थान के लिए काम करने की प्रेरणा मिली। भगत सिंह ने अपने जीवन के आरंभिक वर्ष से ही स्वतंत्रता की ललक को बड़ी ही गंभीरता से समझा था। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाले बाग में हुए हत्याकांड ने 12 साल के भगत सिंह को इतना प्रभावित किया

वे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित हुए और बाद में एक क्रांतिकारी बन गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो वो निराश हो गए और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। भगत सिंह ने 1926 में यानी 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, युवाओं को संगठित कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका के लिए तैयार करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का समर्थन करने के उद्देश्य से इस संगठन की उन्होंने स्थापना की थी, जिसके मुख्य सदस्यों में भगवती चरण बोहरा, सुखदेव और यशपाल ने भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। और फिर आता है वो समय जब भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीति से नाराज होकर 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के दमनकारी कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाना था, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल इस घटना के पीछे उनका मकसद सिर्फ ध्यान आकर्षण करना ही था। उन्होंने शांति से आत्मसमर्पण किया और अपने विचारों को लोगों के सामने रखा और सेंट्रल असेंबली का हॉल संवेद स्वर में इनकलाब के नारों से गूंज उठा। इतिहास की ये घटना उनके निर्भीक और अद्वितीय साहस को ही दिखाती है। साथियों, भगत सिंह का ये आक्रोश सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि ये उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास था। वो जानते थे कि आज की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के अन्याय के खिलाफ भी है, और इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका संघर्ष न केवल स्वतंत्रता के लिए हो बल्कि समाज में व्याप्त असमानता और अत्याचार के खिलाफ भी हो। सेंट्रल असेंबली बमकांड के बाद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराया गया और भारत की आज़ादी की इस लड़ाई में उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई। ये तारीख हमारे इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज की गई, लेकिन उनकी शहादत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। फांसी पर चढ़ते वक्त उन्होंने अंतिम बार जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और आवाज़ में इतनी गूंज थी कि जेल में बंद अन्य कैदी भी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे थे। साथियों, भगत सिंह जी का जीवन चरित्र हमें यह सिखाता है कि अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हर तानाशाही सत्ता के खिलाफ क्रांति लाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं और गलत को अपनी आँखों के सामने होते देखते हैं तो उस अपराध के भागीदार हम भी हो जाते हैं। इसलिए ना केवल व्यक्तिगत लोगों के मामलों के लिए बल्कि समाज के लिए भी अपनी आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हाँ, क्योंकि इस असली देशभक्ति का मतलब सिर्फ तिरंगे के नीचे खड़े होने में नहीं होता बल्कि अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारियों का पालन करने में भी है। भगत सिंह जी का समाज के प्रति विचार और दृष्टिकोण बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। वो कहते थे, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह जी की सोच और उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, जिन्होंने हमें आत्म बलिदान और साहस के साथ जीना सिखाया। धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर एकता में ही शक्ति की बात बताया। और साथियों, इसी उपलक्ष्य में आज यानी कि 28 सितंबर को प्रातः 9:30 बजे शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस समारोह में एक संगोष्ठी आयोजित की गई और जिसमें सम्मानित अतिथियों एवं नागरिकों द्वारा शहीद आजम भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। पुलिस गारद द्वारा 21 गन शॉट फायर की सलामी प्रस्तुत की गई। पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रध्वनि गीत प्रस्तुत किए गए और छात्र छात्राओं द्वारा गीत, संगीत एवं नाटकों से भावपूर्ण दृश्यों को उकेर कर उनके जीवन को, उनकी गाथाओं को याद किया गया।

बल्कि उस लंबे संघर्ष और साधना में छिपी है जिसने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर जी के जीवन दर्शन के बारे में। साथियों, 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। संगीत उनके परिवार की सांसों में था। लता जी ने बचपन से ही संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका बचपन बहुत लंबे समय तक बचपन नहीं रह सका। पिताजी के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत चुनौतियां थीं, लेकिन लता जी ने परिस्थितियों के सामने हार मानने के बजाय अपने हुनर को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अभिनय से भी अपने करियर की शुरुआत की और बाद में गायन को अपना मुख्य क्षेत्र बनाया। शुरुआती वर्षों में उन्होंने कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ को निखारने, उच्चारण को बेहतर बनाने और संगीत की बारीकियों को समझने के लिए लगातार अभ्यास किया। और यही वो बात है जो आज के युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हुनर होना अच्छी बात है, लेकिन हुनर को तराशने का धैर्य होना उससे भी बड़ी बात होती है।

कहते हैं कुछ आवाजें केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ स्वर केवल गीत नहीं गाते, बल्कि हमारी यादों, भावनाओं और जीवन के अनगिनत पलों का हिस्सा बन जाते हैं। भारतीय संगीत की ऐसी ही एक अमर आवाज थी लता मंगेशकर जी। साथियों, प्रेरणापूर्ण सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं एक और ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी आवाज से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन उनकी असली प्रेरणा सिर्फ उनकी सफलता में नहीं

सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

दत्ता जी का हमेशा चमकता हुआ चेहरा देखा है, लेकिन उसके पीछे छिपी मेहनत को अक्सर हम भूल जाते हैं। दत्ता जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों का अभ्यास, अनुशासन, असफलताओं से सीखना और खुद को लगातार बेहतर बनाने की

0: इच्छा होती है। लता मंगेशकर जी ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम सहित कई बड़ी भारतीय भाषाओं में भी गीत गाए हैं। उनकी आवाज़ ने भारतीय सिनेमा के संगीत को कई दशकों तक अपनी पहचान दी। उन्हें भारत रत्न सहित देश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया, लेकिन उपलब्धियों की लंबी सूची के बावजूद उनकी पहचान केवल पुरस्कारों से नहीं, उनकी पहचान बनी उनकी साधना से, उनकी सादगी से और संगीत के प्रति उनके समर्पण से।
1: अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और न मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।

साथियों, लता जी की यात्रा हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां हमारी शुरुआत तय कर सकती हैं, लेकिन हमारा समर्पण हमारी दिशा तय करता है। तो आज जब हम लता मंगेशकर जी की को प्रेरणा पुंज के रूप में याद कर रहे हैं, उनके विचारों को याद कर रहे हैं, उनकी उनके संघर्ष को याद कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ के साथ साथ उनकी साधना को भी याद करें। साथियों, आप भी अपने सपनों को सिर्फ देखिए मत, उनके लिए रोज़ थोड़ा काम कीजिए। अपने हुनर को सिर्फ पहचानिए ही नहीं, उनको निखारने का प्रयास भी कीजिए, क्योंकि कुछ आवाज़ें समय के साथ शांत नहीं होती, वे समय का हिस्सा बन जाती हैं। तो साथियों, लता मंगेशकर एक ऐसी ही आवाज़ थी जो आज भी हम सबके सामने समय का हिस्सा बनी हुई हैं। और साथ ही आपको ये आज का सेगमेंट प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com। इसी के साथ मुझे अभिषेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: हमारे युवा श्रोता भी अपना युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं हिंदी में समाचार। समाचारों की कुछ क्षण प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित

0: पहलुओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस सहमति पर समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, खाद्य सुरक्षा और जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है।
1: Annually, we have been meeting regularly.
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस अंतरिक्ष साझेदारी 6 दशक से अधिक पुरानी है, जिसमें रॉकेट प्रयोगों से लेकर गगनयान और संयुक्त उपग्रह मिशन तक शामिल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने यह बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि IIM बंगलुरु, IIT कानपुर और IIT चेन्नई के अध्ययनों के आधार पर भारत की माल ढुलाई लागत में लगभग 6% की कमी आई है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 18 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 41 पदक के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष

और कल की मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज की शेष कार्यक्रम। दस बजे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से मिली करेंगे 20वीं एशियाई खेलों की दैनिक झलकी। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 9:30 पर आपको सुनवाएंगे गजलों का प्रोग्राम कहकशा। आज की दोनों कार्यक्रम केंद्रित हैं सुप्रसिद्ध गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित जसराज का ख्याल गायन।

6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में रंजीत कुमार और साथी के गाए लोकगीत के अलावा हमारे ग्रामीण भाई लोकभाषा कविता पाठ सुनेंगे। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता हम आपको सुनवाएंगे। विषय है समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी। 7:45 पर सुगम संगीत के प्रोग्राम में भूपेंद्र कुमार के गाए भजन और गीत सुनवाए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली हमारे शेष कार्यक्रमों की, और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं।

कल रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 20वीं एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट। सुबह 6:05 पर शामिल हुई हमारे नियमित प्रसारित होने वाले भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। विचार बिंदु 6:30 पर हम आपको इस प्रोग्राम में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार सुनवाएंगे। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, क्षमा कीजिए इसे फिर सुन लीजिए। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में हमारे किसान भाई सुनेंगे अनिल कुमार से की गई बातचीत। बातचीत का विषय होगा कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम रोज की तरह 6:45 पर लेकर हम हाजिर होंगे। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता होगी हृदय रोग के लक्षण और होम्योपैथिक निदान। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 सुनवाया जाएगा और 7:10 पर हाजिर होंगे फिल्मों से ली गई भक्ति रचनाओं के साथ। शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात्रि 10:30 पर उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। हमारा इंटरैक्टिव कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर विवेक प्रिय दर्शन और शाम 7:45 पर मीनाक्षी दास के स्वर में भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। सुबह 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे फूलचंद्र और उनके साथी। दिन में 12:30 पर आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। दिन में 1:15 पर हेलो पनघट कार्यक्रम होगा। इसमें आहार विशेषज्ञ सुश्री प्रत्यक्षा कटियार से हमारी श्रोता बहनी फोन से अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। विषय है आपकी थाली में पोषण की खुशहाली। दिन में 2:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। शाम 5 धरती के गीत कार्यक्रम में डॉक्टर राजकुमार के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। कल शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में हमारे युवा श्रोता प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत त्रिपाठी से बातचीत सुनेंगे। विषय है दिल ही तो है। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई जनक जी और साथी के गाय लोकगीत के अलावा रमेश शुक्ला से रामायण पाठ सुनेंगे। शाम 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी और रात्रि 9:30 पर प्रसारित होगा गजनों का प्रोग्राम।

कहकशा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और अब वक्त हो चला है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आपको जानकारी देने का। अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल निषाद, थाना कोराव जनपद प्रयागराज से हमें सूचित करते हैं। किनके संबंधी? प्रमोद कुमार, जिनकी उम्र 20 वर्ष है, कद 5 फीट 5 इंच, चेहरा अंडाकार है, ये सफ़ेद धारीदार शर्ट और नीले रंग की जीन्स की पैंट पहने हुए हैं। ये दिनांक 13 मई 2026 से रात्रि के करीब 10 बजे से ग्राम बदौरा से लापता हो गए हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क स्थापित करें। पता नोट करें, अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल, ग्राम बदौरा, थाना कुरांव, जनपद प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 8953345030। फोन नंबर हम आपको एक बार फिर बता दें, 8953345030। एक अन्य सूचना, प्रदीप सिंह शिवकुटी प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं कि इनके पुत्र मयंक सिंह, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, कद 5 फीट 10 इंच, ये दिनांक 19 जुलाई 2026 से शिवकुटी से लापता हो गए हैं। ये काले रंग की लोअर की पैंट और टी शर्ट पहने हुए हैं। इनके शिवकुटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को मयंक सिंह के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध होती है, वे कृपया इस पते पर संपर्क स्थापित करें। पता नोट करें, प्रदीप सिंह, बद्री आवास योजना, शिवकुटी, प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 9839194112। मोबाइल नंबर हम आपको एक बार फिर बता दें, 9839194112। रचना देवी पुत्री राम नरेश हमें सूचित करती हैं कि इनकी संबंधी अनीता, जो कि दिनांक 10 सितंबर 2026 से भटपुरवा कोखराज कौशाम्बी से लापता हो गई हैं। इनके कौशाम्बी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। इसके अलावा इनकी उम्र 38 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है और ये दिनांक 10 सितंबर 2026 से लापता हो गई हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको मिलती है तो इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, भटपुरवा मजरा चमंदा, पोस्ट कोखराज, कौशाम्बी। एक अन्य सूचना, श्रीपाल सिंह पूरे गजा थाना बारा से हमें सूचित करते हैं कि इनकी संबंधी संजू सिंह, ये दिनांक 24 जुलाई 2026 से लापता हो गई हैं। इनकी उम्र 18 वर्ष है, कद 5 फीट 3 इंच, शरीर की बनावट सामान्य है और इनका रंग सांवला है। ये दिनांक 18 जुलाई 2026 से लापता हो गई हैं। इनके प्रयागराज, चित्रकूट, रीवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को संजू सिंह के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध होती है, वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, श्रीपाल सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह, पूरी गजा, थाना बारा और मोबाइल नंबर है 7408975700 यानी 7408975700। अभी आप सुन रहे थे खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संबित स्वरों में ये देशभक्ति पूर्ण रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

काशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिनशर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। यूपीआई व्यवहारेषु एमडीआर शुल्क प्रवर्तन

0: राम राम। कहा भैया मन्नू, का हाल चाल बाटे?
1: भैया देखा हो, हाल चाल तो कुल ठीक बा।
0: हाँ भैया ठीक है,
1: खेती किसानी भी देखा बढ़िया चलते है।
0: बिल्कुल भैया।
1: भाई देखा हो, अपन जोन देश बा ना, अपन जोन धरती है।
0: हाँ भैया,
1: ये भारत माता भारत भूमि।
0: बिल्कुल
1: एहमन देखा भैया, एक से एक माटी का लाल लोग जन्म ली हैं।
0: हाँ भैया।
1: और जवन की अपने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं अगर देखा जा भैया,
0: हाँ।
1: तो अपने देश का और मानवता का बहुत बड़ा कल्याण के हैं भैया। और विशेष कहके भैया देखा हो, जौन आजादी का आंदोलन रहा।
0: हाँ भैया।
1: वो आंदोलन में एक तरीके से अपन सर्वोच्च बलिदान लोग दे दिए हैं।
0: बिल्कुल भैया।
1: और यही तरीके देखा भैया, क्रांतिकारी रहन और अपने देश का सपूत भैया जेके मतलब शहीद भगत सिंह के नाम से बच्चा बच्चा आज जानत है भैया।
0: हाँ भैया।
1: तो देखा आज का दिन जौन बा ना, आज जौन 28 सितंबर बा 1907 में भैया देखा जौन है कि
0: अच्छा
1: इनका जन्म भय रहा।
0: अच्छा।
1: और आज इनका जौन है जयंती है भैया।
0: अच्छा अच्छा।
1: हम कहीं कि देखा हो वो उम्र में जहाँ आपकी देखा लो कितना समय अपन बर्बाद कर देते हैं, तरह तरह का ख्वाब सजावते हैं लोग हैं।
0: हाँ भैया।
1: तरह तरह का सपना देखते हैं जीवन के बनावे में भैया देखा हो, वो उम्र में अपन जो है कि देश बरे अपन सर्वोच्च बलिदान दिए हैं।
0: हाँ
1: और निस्वार्थ भाव से भैया।
0: बिल्कुल भैया, देश आजादी में इनके जो है प्रमुख योगदान रहा भैया।
1: बिल्कुल भैया, निस्वार्थ भाव से योगदान दिए हैं। हम कहीं कि देखा हो कोनो भी जयंती मना लेवे से, नाम ले लेवे से दोनों बहुत बड़ी बात नहीं होते है वो।
0: हाँ भैया।
1: बेहतर तो ई होते भैया कि देखा ऐसा जे लोग है ना, उनके बतावा गए मार्ग पर चले के चाहिए। हाँ,
0: सही क्या भैया। भैया देखा इनके जो है प्रमुख नारा रहा इनकलाब जिंदाबाद।
1: इनकलाब भैया देखा परिवर्तन। अपन देश देखा हो सदियन से भाई गुलाम रहा है।
0: हाँ भैया।
1: और तमाम विदेशी आक्रांता आयन, और विशेष रूप से भैया देखा हो जब अंग्रेज आयन तब पूरा का पूरा देखा तो अपने देश के कब्जिया लिए भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अपन जौन भी संसाधन रहा भैया है, चाहे भैया भूमिगत संसाधन रहा हो चाहे प्राकृतिक संसाधन रहा हो,
0: सब
1: वो संसाधन का भैया देखा लो कि दोहन की हैं लोग। और ऐसन मजबूत शक्ति से भैया, ऐसन मजबूत सत्ता के खिलाफ देखा बुलंदी के साथ आवाज उठाएं।
0: हाँ।
1: और आज वो समय से लेके आज तक जितना भी युवा लोग हैं भैया दुनिया में,
0: हाँ
1: सबके खातिर प्रेरणा का स्रोत बने।
0: बिल्कुल भैया, कहा जाता ना कि 1929 में सेंट्रल असेंबली में जो है ये जो है बटुकेश्वर के दत्त के साथ जो है बम फोड़ दिए रहे भैया।
1: भैया देखा एक बात बताई कि ये लिखे भी हैं ये बम मतलब कोनो दुर्भावना से ग्रस्त हुई कि नहीं छोड़े रहे।
0: हाँ हाँ।
1: देखा बाद में कहे ना कि देखा भैया सबकर कान एकदम बिल्कुल ऐसन हो गए बा कि कोनो आवाज के सुनत ना बा। विशेष कह के अंग्रेजी हुकूमत जो रहा
0: बहिरापन।
1: हाँ भैया, वो कोनो बात के ना सुने तो वो है कहन भैया कि देखा इन लोग का आंख और कान खोले बरे हम बम गिरावती, कोनो उनका इरादा गलत नहीं रहा भैया।
0: अन्ना
1: के हो के नुकसान पहुंचावे का इरादा रहा।
0: बिल्कुल। तो यही बार इनका गिरफ्तार कर लिए रहन। और फिर जो भैया इनका जो है 23 मार्च 1931 में।
1: हाँ भैया देखा हो भैया, एक प्रकार से अपन सर्वोच्च जो है कि बलिदान दिए हैं और पूरा जीवन अपने देश खाती खपान दिए। तो हम कहीं कि देखा भाई ऐसन जो है कि माटी का लाल, ऐसन सपूत जेकर कि रोम रोम देश और माटी खाती बना हो भैया।
0: हाँ,
1: निस्वार्थ भाव से जो देश का सेवा करते है, निस्वार्थ भाव से जो अपन पूरा का पूरा सर्वोच्च बलिदान दे देते है, हम कहीं कि भैया देखा हो उनके सत नमन। और साथे साथे भैया आज का जौन पीढ़ी है भैया, विशेष करके युवा पीढ़ी है।
0: हाँ भैया।
1: वो युवा पीढ़ी के प्रेरणा लेवे के चाहिए।
0: बिल्कुल। हाँ।
1: प्रेरणा लेवे के चाहिए कि अपने देश खाती, अपने माटी खाती, अपने संस्कृति खाती, अपने परिपाटी खाती।
0: हाँ भैया।
1: भैया देखा एकदम न्यौछावर रहे के चाहिए। और अपने सबसे बड़ जौन बात होते ना भैया।
0: हाँ भैया।
1: देखा ओके कहा जाता है अपने देश के प्रति प्रेम।
0: बिल्कुल भैया।
1: काम चाहे जितना कला भैया, हम कहीं कि देखा सभी कुछ न कुछ तो करते है।
0: हाँ भैया।
1: लेकिन कोनो भी काम करे के पहले सबसे बड़ी बात ये है ना कि अपने मन में देश

0: प्रति प्रेम। देखा अब तो देश आजाद बना,
1: हाँ
0: तो
1: भैया
0: ऐसा लोगों का कुर्बानी के कारण ही हम तू और जौन आज का नई पीढ़ी बा
1: आजाद
0: कहीं ना
1: हुआ
0: कहीं
1: था।
0: आजाद भारत में स्वतंत्रता के हवा में भैया सांस ले रहा बा। तो इनकर दायित्व बा ये स्वतंत्रता के बरकरार रखल भैया,
1: हाँ
0: और
1: भैया
0: साथे साथे अपने देश के संस्कृति के बरकरार रखल,
1: बिल्कुल
0: और साथे साथे हम कहीं कि अपने देश अपने माटी अपन जौन पहचान बा भैया वह पहचान के प्रति लगाओ।
1: बिल्कुल भैया
0: एक बात कहा जाता ना हो है कि देखा जो है कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं,
1: हाँ
0: वह
1: भैया
0: हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
1: बिल्कुल भैया
0: तो सबसे बड़ा प्रेम सबसे बड़ा जो स्नेह होता भैया
1: देश प्रेम होता
0: वो
1: भैया
0: अपने देश से होता है।
1: बिल्कुल
0: तो यह देखा प्रेरणा लेवे के चाहिए और वही मार्ग पर
1: चले
0: आगे
1: जाए।
0: बढ़े के चाहिए। अब हम ही जाना चाहब कि काल आई लवा आज कार्यक्रम
1: अच्छा
0: में।
1: भैया देखा आज जो है सोमवार के दिन बाटे है, और हर सोमवार भैया देखा कविता पाठ होते हैं, लोकभाषा कविता पाठ सुनील प्रभाकर जी के सुने जाइए, और साथ ही साथ भैया देखा एक वार्ता भी बाटे है, अमर शहीद भगत सिंह का राजनीतिक चिंतन है, यो
0: बहुत
1: सुना
0: बढ़िया
1: जी
0: बहुत
1: भैया।
0: बढ़िया भैया। लेकिन हम तो कहम ना कि देखा कुछ सुने के पहले जब तक ढोल मजीरा नहीं ठनकत है पंचायती में ना,
1: हाँ भैया
0: है तब तक जीव हरियर नहीं होता है।
1: हाँ तो भैया देखा रंजीत कुमार और साथी के एक विकास गीत बाटे, हम कहे तू सुना किसान भैया सुना
0: सुनवाए दो भैया।
1: सुनावा भैया।

0: एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हाँ भैया,
2: देखा भैया, गौने भी हो गए, सनेसा भी हो गए,
1: बिल्कुल भैया।
2: अब रघु भैया देखा एक बात बताई हो, खेती किसानी का काम है भैया, देखा एक उतरत है दूसर का कपारे पर आई जाता है,
1: एक खत्म दूसरा
2: लगा। लेकिन देखा हो हम कहीं कि अपने सेहत खाती, अपने स्वास्थ्य खाती है, बहुत जरूरी हो तो भैया साफ सफाई,
1: बिल्कुल भैया।
2: और कितनी बीरामी, चाहे भैया देखा बात गांव का होके चाहे बात शहर का होके,
1: हाँ भैया, हाँ।
2: कितनी बीरामी का कारण सबसे बड़ा हो तो भैया गंदगी,
1: बिल्कुल भैया।
2: और यही लिए देखा भैया स्वच्छ भारत मिशन चलावा जाता है सरकार की तरफ से और जोर शोर से, अब देखा एक बड़ा प्रभाव भी आया है,
1: हाँ भैया।
2: देखा जगह जगह गाँव में शौचालय बन, भैया देखा हो अब तक घर घर में जो शौचालय दिखाते है,
1: हाँ भैया।
2: लेकिन एक बात कहब न कि मान ला कि भैया शौचालय खाली बन जाए से और आपन घर खाली साफ कर लेवे से, हाँ, काम नहीं चले वाला बा,
1: बिल्कुल भैया।
2: जरूरत बा भैया एक जिम्मेदार नागरिक बने का,
1: हाँ, हाँ।
2: और चाहे भैया हम कहें कि आपन घर होके, चाहे आपन द्वार होके, चाहे दूसरे का घर होके, चाहे हम कहें कि सार्वजनिक सड़क होके,
1: हाँ,
2: कहीं भी अगर केहू जात है भैया तो ओकरे सफाई का ध्यान रखे के चाहिए। ये सफाई, हाँ। स्वच्छता मिशन तब्बे सफल हुई ना जब प्रत्येक व्यक्ति सफाई का महत्व हर पल हर कदम पर समझी,
1: हाँ
2: लिया
1: है, हाँ।
2: और सफाई भाई हम कहीं चाहे देही का सफाई होके, कपड़ा का सफाई होके, घरे का सफाई होके, हैं, हम कहीं कि एकरी बात जो है कि खर पतवार का सफाई होके,
1: हाँ।
2: हैं, ये हर तरह के सफाई का ध्यान रखे, हाँ। के पड़ी
1: भैया, घर के साथ साथ जो अपन आस पड़ोस गली मोहल्ला,
2: हाँ, हाँ।
1: साफ करे।
2: अरे भाई अब तो देखा हो जो न बरसात भी अब धीरे धीरे धीरे धीरे जायत बा है,
1: हाँ,
2: और बरसाती में देखा खूब जो न घास पात उग जाता है,
1: बिल्कुल, हाँ।
2: तो हम कहीं कि अब धीरे धीरे भैया फरसा उठावे लोग, खुरपा उठावे लोग, अपन जो को नतरा बा भैया हर भर जो घास पास भय बा न छील छाल के काट कूट करके दुरुस्त रखे, नाला वाला जो हो तो भैया नाली वाली घरे के होते हो बराबर साफ
1: साफ रहे,
2: जोने से की मच्छर न होके,
1: बिल्कुल,
2: जोने से की कोनो भाई हम कहीं कि विषाणु और जीवाणु ना आवे,
1: हाँ भैया,
2: ठीक है। साथे साथे हम कहीं कि अगर भाई सड़क पर चलते हैं सड़क पर भी ध्यान दें, सार्वजनिक जगह पर बैठा है तो ध्यान दें, कब कब देखे में या होता भैया कि पैकेट में लेके लोग कुछ खाते हैं
1: और
2: खा के वहीं फेंक देते हैं, तो भैया

0: देखा, जब तक हर मनई यह बात के ना समझी ना
1: हाँ
0: सोची, तब तक मान के चला भैया कि ई मिशन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अधूरा रही। तो हर व्यक्ति के जिम्मेदारी के समझे कि भैया तब्भी इस स्वच्छता मिशन और कामयाब हुई और
1: बिल्कुल
0: अपन देश एकदम भैया स्वच्छ चमचमात और स्वस्थ रही।
1: हाँ भैया, एक शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 में की गई रही है भैया। एक जो है देश बांटे, मतलब खुले में जो शौच प्रथा बांटे उसका खत्म करना है।
0: भाई कोनो तरह से पाई, और विशेष कही के देखा बहुत ज्यादा बेरामी का जड़ तो ये रहा खुले में शौच।
1: हाँ भैया
0: तो एके तो एकदम से भैया दिमाग से हटा दे लोग, कोनो भी कीमत पर खुले में बाहर
1: हाँ भैया
0: शौच ना करे
1: बिल्कुल
0: लोग, उसे बहुत गंदगी आवत हो।
1: हाँ
0: देखा
1: भैया,
0: तरह तरह के कीट
1: रोग
0: आवत है,
1: बिरामी
0: तरह
1: आवत है।
0: तरह के रोग आवत हैं। तो यह चीज पर भी ध्यान दे लोग, और ध्यान दे कि भाई हम कहीं कि अपने देश के अपने सेहत के बढ़िया बनावे लोग, और
1: बिल्कुल
0: तब वे देखा ये मिशन का सफलता वे जब जन जन का सहभागिता हुई
1: हाँ
0: है
1: भैया,
0: मन।
1: मतलब एक आदमी के करे से ना हो भैया,
0: नहीं नहीं सबके
1: सबके
0: सबके
1: सहयोग
0: समझे
1: चाहिए
0: के पड़ी,
1: भैया।
0: हर जगह जहां भी जा भैया जहां भी रहा ठीक है ना, ओके साफ सुथरा बनाए रखा।

0: रोग आवते हैं, तो यह चीज पर भी ध्यान दें लोग, और ध्यान दे कि भाई हम कहीं की अपने देश के अपने सेहत के बढ़िया बनावे लोग, और तब वे देखा ये मिशन का सफलता वे जब जन जन का सहभागिता हुई। हाँ, अमन
1: मतलब एक आदमी के करे से ना हो भैया,
0: नहीं नहीं सबके सब सहयोग सब जगह पड़ी, हर जगह जहां भी जा भैया जहां भी रहा ठीक है ना, ओके साफ सुथरा बनाए रखा कोनो भी भाई, हम ऑफिस में जाते कार्यालय में जाते हर जगह ये चीज का लोगों के ध्यान देवे के चाहिए। हाँ। देखा बात बत कही तो होत रही, बोला का सुनवा होते हैं
1: भैया, देखा जो है लोक भाषा कविता पाठ बांटे सुनील प्रभाकर जी के, आप कहीं तू सुना किसान भैया
0: सुनवाए दे भैया।
2: राम राम पंचो, लोक भाषा कविता आपके सामने प्रस्तुत है। प्रसंग उस समय का है, वृंदावन से भगवान श्याम सुंदर छोड़कर सबको मथुरा चले गए। अब वहाँ की क्या स्थिति है, आप सबके समक्ष ये गीत प्रस्तुत है।

0: एक और रचना पंचन के सामने प्रस्तुत बा। पंचन होकर आनंद लें।
1: रात दिना तोरी

0: देखा भैया, लोक भाषा कविता पाठ सुनील प्रभाकर के तो हो गए।
1: हाँ भैया।
0: अब देखा, बरसात भी अभिन रहा, अभिन भी होते बा भैया, हम कहीं कि एक चीज़ पर बहुत विशेष ध्यान देवे के ज़रूरत है। खेती किसानी के साथ साथ
1: हाँ भैया
0: हाँ बाग बागवानी भी करें किसान
1: बिल्कुल।
0: भाई। और हम कहें कि बाग बागवानी तो अपने खेत में करते हैं ना,
1: हाँ
0: एक चीज़ कितना बढ़िया रहत कि अगर मान ला कि कहीं कोनो खाली जगह मिलत है,
1: हाँ भैया।
0: आए और अगर वहाँ कोनो हरा पेड़ लगा दें भैया,
1: बिल्कुल।
0: आए हरा पौधा लगा दें, तो धीरे धीरे देखा जो उन्हें की बढ़ हुई, एक प्रकार से धरती की सुंदरता भी बढ़ी
1: हाँ भैया
0: और साथे साथे भैया पर्यावरण खातिर कितना बढ़िया हुई।
1: हाँ भैया
0: दिन प्रतिदिन देखा हो कहीं ना कहीं अपन पर्यावरण जो उन्हें खराब हो जाता है भैया, मौसम का चक्र बदलत जाता है, तो ओकर कारण ये बा भैया, दिन प्रतिदिन देखा गर्मी बढ़त जाता है, तो एक बहुत बड़ा कारण बा। तो हम
1: पर्यावरण।
0: कहें कि देखा हो अपने खेते में लगावा, अपने डाणे तो लगेबे करा, लेकिन अगर कहीं खाली जगह मिल गए भैया ना, कि वो रोके टोके वाला बा
1: हाँ
0: पेड़ लगा दे, कोनो जरूरी थोड़े ना कि तू ही लगा के तू ही खा ओकर फल जो
1: हाँ
0: ना। पेड़ तो भाई जितना लगा जीबा ना, कहीं ना कहीं देखा वो बहुत फलदायी हुई
1: बिल्कुल
0: और पुण्य का काम बा, साथे साथे भैया अपने प्रकृति का, अपने पर्यावरण का सबसे बड़ा संरक्षक है भैया।
1: देखा भैया, पेड़ लगा हुआ हरा भरा बड़ा पेड़, तो फल फूल तो देबे करिए, साथ साथ भैया देखा गर्मी के दिन में छाया भी दी है ना।
0: अरे पूछा मत, पूछा जिन भैया जो ना कि एक तरीके से धरती का सबसे बड़ा श्रृंगार होता भैया हरियाली,
1: हाँ
0: और
1: भैया।
0: हरियाली का सबसे बढ़िया स्रोत भैया कि जहाँ जगह मिले वहाँ पौधा लगावा भैया, है
1: धरती
0: वहीं
1: मैया।
0: लगा दा, ठीक है छोड़ दा परोपकार के नाम पर, अपने उसके चक्कर न पड़े कि अपने ही दुआरे लगाई, अपने जहाँ भी जगह मिल जाए भैया। पहले के ज़माने में देखा हो सिवाने में जाए पर पेड़ मिल जाए, कहीं
1: बिल्कुल
0: शीशो का मिल जाए, कहीं आम का मिल जाए, कहीं जामुन का मिल जाए,
1: हाँ
0: तका के
1: भैया।
0: वो जगह देख के लगावे का कि हमार खेत बा, हमार जमीन, हमार पेड़ हुई लगा दें लोग भैया।
1: भाई
0: चिड़िया
1: जितना
0: चुरंग हम
1: हाँ
0: कहें कि पशु सबके आराम मिले, और कबो को चल चल चल चल जब घाम में देखा दूर तक लोग जाए कहो के तुम्हें छाया का पेड़ देख के लोग के लगे कि
1: हाँ
0: भैया मन ठंडा जाए, मन हरियर
1: बिल्कुल
0: हो जाए।
1: भैया, जितना बड़ा पेड़ है भैया उतनी जल्दी मानसून बनेगा। हाँ धरती हरी भरी रही भैया, ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में रही।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल। अब देखा हो एक जो वार्ता लाए बैठा ना है, तो भैया हम कहें कि काबा वार्ता हो के
1: भैया
0: सुनवाएगा।
1: वार्ता वाटे अमर शहीद भगत सिंह का राजनीतिक चिंतन। भैया जो है
0: तो हम कहें कि भैया
1: ब्रजेश
0: देखा
1: कुमार के,
0: एकर
1: ब्रजेश
0: सुनवाई दिया जाए।
1: हाँ सुनवा दे भैया।
2: सरदार भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव जो पाकिस्तान में है के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था, जिसका अनुकूल प्रभाव उन पर पड़ा था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक सिख परिवार था जिसने आर्य समाज के विचार को अपना लिया था। उनके परिवार पर आर्य समाज व महर्षि दयानंद की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया था। इस शुभ घड़ी के अवसर पर किशन सिंह के घर में खुशी

और भी बढ़ गई थी। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागोवाला रखा था, जिसका मतलब होता है अच्छे भाग्य वाला। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। डीएवी स्कूल से इन्होंने नवी की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1923 ईस्वी में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह बंधन में बांधने की तैयारियां होने लगी, तो वह लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर देश की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह युवकों के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी। बांग्ला उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में भाषा, जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उग्र हो जाएगी, लेकिन जब तक वह जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने ज़्यादा बेचैन हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले देशभक्त नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह का यह निश्चित मत था, देश तभी मजबूत हो सकता है जब नवयुवकों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना का विकास सही रूप में हो। भगत सिंह इस तथ्य से परिचित थे कि भारत तभी एक रह सकता है जब यहाँ के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना प्रबल हो। इसलिए नौजवान भारत सभा का इन्होंने गठन किया था। एक संयुक्त भारतीय गणराज्य के लिए भारतीय युवकों में देशभक्ति की भावनाओं का जागरण इस सभा का उद्देश्य था। वह जानते थे इस प्रकार की भावना के न होने पर भले ही बाहरी रूप में देश की एकता बनी रहे, परंतु वास्तविकता यह है कि यह एकता केवल एक दिखावा ही रहेगी जो देश के लिए कभी भी घातक हो सकती है। भगत सिंह का राजनीतिक दृष्टिकोण समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके इस विचार के दृष्टिकोण की जानकारी किसानों, मजदूरों तथा संपूर्ण स्वतंत्र गणराज्य प्राप्ति के पास ले जाने वाले आंदोलनों को समर्थन देना तथा श्रमिकों एवं कृषकों को संगठित करने से मालूम पड़ती है। भगत सिंह के राजनैतिक चिंतन की विशेष बात यह है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना जब वह मार्च 1926 में किए, तब तक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य के निर्माण की बात सोची भी नहीं थी। उस समय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन के एक अंग के रूप में स्वतंत्र भारत का निर्माण करना था, न कि संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य का निर्माण। शहीद ए आजम भगत सिंह का चिंतन साम्यवादी विचारों के जनक कार्ल मार्क्स तथा 1917 की रूसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इस बात का प्रमाण उनके अनेक क्रांतिकारी जीवन घटनाओं से पुष्ट होता है। असेंबली बम कांड में दिल्ली की जेल में लगी सेशन जज मिडल्टन की अदालत में उनके द्वारा दिया गया भाषण उनके इन विचारों का स्पष्ट प्रमाण है कि वे एक समाजवादी चिंतक भी थे। उनके 6 जून 1927 के इस भाषण से समाजवादी राजनीतिक चिंतन होने की बात सिद्ध होती है। भाषण का एक अंश इस प्रकार है, हमारा उद्देश्य यह है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान न्याय व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। उत्पादक और श्रमिक समाज के अत्यंत जो आवश्यक तत्व हैं, तथापि शोषक लोग उन्हें श्रम के फलों और मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। एक और अन्न उगाने वाले किसान भूखों मर रहे हैं। सारी दुनिया के बाजारों में कपड़ों की पूर्ति करने वाले बुनकर अपने और अपने बच्चों के शरीर को ढकने के लिए

0: पूरे कपड़े प्राप्त नहीं कर पाते। भवन निर्माण, लोहारी और बढ़ईगिरी के काम में लगे कारीगर शानदार महलों का निर्माण करके भी गंदी बस्तियों में रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरी ओर शोषित पीड़ित समाज पर घुन की तरह जीने वाले अमीर लोग अपनी सनक पूरी करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। क्रांति से हमारा प्रयोजन अंततः एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसे इस प्रकार के घातक खतरों का सामना न करना पड़े और जिसमें सर्वहारा वर्ग की प्रभुता को मान्यता दी जाए। इसका परिणाम यह होगा कि विश्व संघ मानव जाति को पूंजीवाद के बंधन तथा युद्ध से उत्पन्न होने वाली बर्बादी और मुसीबतों से बचा सकेगा। भगत सिंह ने विषमताओं को दूर करने का एकमात्र उपचार केवल समाजवाद बताया। वह समाजवाद से बहुत प्रभावित थे, इसका अनुमान इस बात से लगाते हैं कि लाहौर सेंट्रल जेल में भी रहकर उन्होंने मार्क्स तथा रूसी क्रांति की पुस्तकें मंगाई थीं तथा फांसी पर चढ़ने से पूर्व वे लेनिन की जीवनी पढ़ने में डूबे हुए थे। भगत सिंह की यह निश्चित धारणा थी कि लक्ष्य को पाने के लिए बलिदान आवश्यक है। उनके जीवन का उच्चतम लक्ष्य भारत को स्वतंत्र कराना था। इसके लिए भगत सिंह कठिन से कठिन परीक्षा भी देने के लिए तैयार थे और उन्होंने यह परीक्षा दी भी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि मैं युवकों से अपील करना चाहूँगा कि समाजवादी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए वे उत्साहपूर्वक कार्य करें। यदि वे इस संघर्ष को बिना थके करते चले जाते हैं तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, पर एक वर्ष में नहीं अपितु भारी बलिदान और कठिन परीक्षा के बाद। इस संदेश से यह शिक्षा मिलती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है। लाहौर जेल से मित्रों को विदा करते हुए शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि साथियों, मिलना तथा बिछड़ना तो लगा ही रहता है, हो सकता है कि हम फिर मिल सकें। जब आपकी सजा पूरी हो जाए तो घर पहुंचकर सांसारिक कार्यों में न उलझ जाना। जब तक आप भारत से अंग्रेजों को निकाल कर समाजवादी गणतंत्र स्थापित न कर लें, आराम से न बैठें। यह मेरा आपके लिए अंतिम संदेश है। एक श्रेष्ठ प्रकार की त्याग की भावना उनका सिद्धांत था। भगत सिंह भविष्य के भारत को एकजुट एवं सशक्त भारत बनाना चाहते थे। उनके दृष्टि में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। वे सभी भारतीयों को आपस में भाई भाई मानते थे। भारतीयों को आपस में लड़ता देखकर उनकी आत्मा रो उठती थी। इस विषय में दीनानाथ सिद्धांत अलंकार ने एक घटना का वर्णन किया है। भगत सिंह ने मातृभूमि की दुर्दशा को देखकर कहा कि मेरा दिल छलनी हो रहा है। एक ओर विदेशियों के अत्याचार, दूसरी ओर भाई का गला काटने को तैयार है। इस हालत में ये गुलामी के बंधन कैसे कटेंगे? सारे भारतवर्ष के लोग आपस में मिलकर और एक होकर रहें, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने जून 1928 ईस्वी में लाहौर में विद्यार्थी यूनियन बनाई थी। अधिकतर विद्यार्थी ही इसके सदस्य बनाए जाते थे। इस यूनियन का मुख्य कार्य देश की एकता के लिए सामाजिक बुराई को दूर करना था। यह यूनियन सभी जातियों संप्रदायों के लिए मिले जुले भोजों का आयोजन करती थी। इस यूनियन के अनेक सदस्यों ने अपने अपने धर्म की कुप्रथाओं पर लेख लिखे थे तथा जातिवाद का जमकर विरोध किया था। इस प्रकार शहीद भगत सिंह राष्ट्रीय भावना के विकास के प्रबल समर्थक, धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विश्वासी एवं ऊंचे आदर्शों वाले समाजवादी थे। वे मानवता के सच्चे प्रेमी, खोखले आदर्शवाद के विरोधी, अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करने वाले और राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे। उन्होंने भारत के सच्चे एवं सुनहरे भविष्य का सपना देखा था। वे एक सच्चे मनुष्य और सच्चे भारतीय थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया।
1: हाँ भैया, इतनी अच्छी वार्ता रही भैया। अमर शहीद भगत सिंह का राजनीतिक चिंतन
2: बिल्कुल
1: भैया,
2: पूरा सोच जो रहा है ना,
1: हाँ बड़ा फरिया बताया
2: बिल्कुल। देखा, पूरी जो सोच रही ना, वो सोच पूरा एक तरीके से देखा जाए तो भगत सिंह जी का एक दर्शन पर आधारित रहा।
1: हाँ भैया,
2: हैं, और वही दर्शन, वही चिंतन और सोच के अनुसार देखा अपन जो है कि देश का सेवा की है।
1: हाँ भैया,
2: और निश्चित तौर पे हम जो है कि यही चीज की कहब कि लोगन की प्रेरणा लेवे के चाहिए, हैं
1: बिल्कुल,
2: कि कौने ढंग से हमके अपने व्यक्तित्व के बनावे के, अपने व्यक्तित्व के ढाले के है। भैया देखा, एक बात और बताऊ ना कि मौसम का बड़ा असर पड़ा था अपने खेती किसानी पर।
1: हाँ भैया,
2: और मौसम के अनुसार ही अपने खेती किसानी का ध्यान रखे के चाहिए
1: बिल्कुल।
2: अब देखा, अब धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे मौसम में बदलाव आ ही रहा बा भैया,
1: हैं
2: हाँ, अब आ ही रहा बा। धीरे धीरे एक तरीके से देखा तो बरसात भी धीरे

0: रे जात है भैया, हो सकत है भैया मान ला कि आ जाए का दू छरक्का, बात अलग है। मुला अब शीत भी पड़त बा रात का,
1: हाँ भैया,
0: और दिन में देखा धूप होता है
1: बिल्कुल।
0: और विशेष कह के जौन धान का खरीफ में समय फसल है भैया, तो ई ध्यान देवे के बहुत जरूरत बा ए समय की जौन देर के प्रजाति है भैया, देर में मान ला कि पकत है
1: अच्छा,
0: तैयार होते हैं, तो ई ध्यान बराबर देवे के चाहिए कि कहीं से नमी का कमी हो न हो पाए भैया। नहीं तो हम कहीं कि देखा कुल फसल बहुत बढ़िया चला, खूब देखा बरसात भी बढ़िया भय है, एकदम चहपा चहपा पानी लगा रहा खेत में
1: बिल्कुल,
0: और मुला बाद में फसल खूब लहलाहात बा, लेकिन तनको दिक्कत आवे पे देखा बाद में गड़बड़ा जाता है अगर न कुछ, तो खेती किसानी का मजा जो होता है किरकिरा हो जाता है। तो भाई यही मौसम के अनुसार एक तो लोग ध्यान रखें कि अगर धूप होते है तो कोनो भी तरीके से अगर लगे कि अपने फसल में नमी का कमी बा, पानी का कमी बा, तो ओकर अपन जौन भी वैकल्पिक स्रोत हैं भैया, जैसे मान ला कि पंपिंग सेट बा, चाहे ट्यूबवेल बा, समरसेबल बा भैया, चाहे नहर बा, तो वह से ओकर जौन है कि सिंचाई करें
1: बिल्कुल भैया।
0: साथे साथे यह समय अपन जौन फसल बा है ठीक ठाक स्थिति में आए गए बा,
1: हाँ भैया,
0: तो भाई हम कहीं कि संझा सवेरे अपन खेत के देखें, अपन फसल के देखें, विशेष कह के जो धान का फसल बा है ओकरे पत्ता के निहारें कि कोनो रोग दोख तो नहीं लगता है,
1: हाँ भैया,
0: और तब्बे संभव हुई जब लोग जाके देखी है वो क्या है, अगर तनिको कहीं से लगता है कि कुछ दिक्कत आवत है,
1: हाँ भैया,
0: कोनो परेशानी बा, या मान ला कि पत्ता का रंग कोनो बदलत बा या पियरात है भैया,
1: अच्छा अच्छा,
0: तो तुरंते हम कहीं कि देखा होकर नमूना लेके और जौन भी अपन कृषि रक्षा इकाई केंद्र बा है करीबी नजदीकी वहां दिखावे और ओकरी मुताबिक
1: वो
0: होकर भैया नियंत्रण करे का जरूरत है।
1: अब साथ साथ भैया देखा मौसम बदलत बाटे है, तो हम कहीं कुछ भैया आ रहे हैं कुछ साग सब्जी भी लगा लें भैया।
0: बिल्कुल, हम कहीं कि देखा आप तो धीरे धीरे एक साथ तैयारी भी करही के पड़ी है, कहें कि खरीफ का फसल बात चलत बा कुछ दिन के बाद हुई, तो आगे का जोन फसल बा ओहू का तैयारी करें
1: बिल्कुल,
0: धीरे धीरे हम कहीं कि देखा हो कितना सब्जी जोन रवि का हो कर कितना जो है कि बीज लग जाता है, पौधा होता है लोग जो है कि रोपाई भी धीरे धीरे होकर शुरू करते हैं।
1: भैया देखा ठंडी में जो है हरी सब्जी का बहार रात भैया, साग रात हरी सब्जी है,
0: तो वह ध्यान रखें, साथे साथे दुईरसा मौसम बा भैया है, दिने में धूप होत बा और राति के देखा हो ठंडा लगत है, राति के शीत भी पड़त है,
1: बिल्कुल,
0: तो यही समय जरूरत होत है कि अपने आप के थोड़ा सा बचाए के रखें,
1: हाँ भैया,
0: अपने सेहत का भी ध्यान रखें,
1: हाँ भैया,
0: हाँ विशेष कह के खर सेवर ना होके दें, और हम कहें कि देखा हो भैया अभी चलत चलावत देखा नंबर एक बार बता दा,
1: हाँ
0: पंच भैया के
1: हम भैया इनके हमारे के प्रोग्राम कैसा लगा, हमारे सभी के व्हाट्सएप नंबर बांटे भैया 800-4926-250 भैया ये नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 800-4926-250
0: बिल्कुल भैया, हम कहें कि देखा ये नंबर पर जो है लोग अपन प्रतिक्रिया जाहिर करें, हम कहें कि अब चले चलाओ के बेरा हो गए बात, पंचन से आगे लिया जाए, पंचों राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम अपनी सुनने वालों को याद दिला दी। आज रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे 20वीं एशियाई खेलों की दैनिक झलकी। रात 8 बजे और 9 बजकर

30 मिनट पर आप सुनेंगे, 9:30 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों का प्रोग्राम कहकशा और रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोनों ही कार्यक्रम सुप्रसिद्ध गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी पर केंद्रित होंगे। सात बजकर 31 मिनट पर हिंदी कार्यक्रम में प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता हम लेकर आएंगे। विषय होगा समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी। भूपेंद्र सिंह के स्वर में गीत और भजन का आनंद लीजिएगा आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर।

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित जसराज का ख्याल गायन। कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात्रि 10:30 पर उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन आप सुनेंगे।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता होगी, हृदय रोग के लक्षण और होम्योपैथिक निदान। 6:35 पर हमारे कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारित होता है कृषि जगत, इसमें हमारे किसान भाई अनिल कुमार से बातचीत सुनेंगे, विषय होगा कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी प्रयागराज के साथ। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को ही वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतें बनाएंगी विकसित उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश खंड स्नातक और खंड शिक्षक के निर्वाचन के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। 23 अक्टूबर को होगा मतदान। और भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से राज्य की कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने कई जनपदों में कल हल्की बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा

0: चयन आयोग से चयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में 1375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और अगले 6 महीने में 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब प्रदेश विकसित होगा।
1: नियत सरकार की साफ होनी चाहिए, परिणाम आएंगे और उस परिणाम को लाने के लिए आपको अपने ग्राम पंचायतों में काम करना, वहां पर महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर के कार्य करना है, बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना है, नई चीजें लानी है, मॉडल ग्राम पंचायत, स्मार्ट ग्राम पंचायत के कॉन्सेप्ट को पूरा करना है। विकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश हो, और उत्तर प्रदेश विकसित तब होगा जब ग्राम पंचायत की इकाई आत्मनिर्भर और विकसित हो।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इन रिक्तियों को भरने के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। इसको लेकर कल अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को होगी जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। मतों की गणना 27 अक्टूबर 2026 को की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में चल रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में 4 दिनों में 5500 करोड़ रुपए के 3765 व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं देश विदेश के खरीदारों की ओर से 12500 करोड़ रुपए की कारोबारी पूछताछ दर्ज की गई है। इसी क्रम में आज उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्रेड शो में आयोजित खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 पर कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयात को कम करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन ने ग्रामीण घरों में शुद्ध जल पहुंचाकर जीवन को सुगम बना दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित नल का जल पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना ने व्यापक अंतर ला दिया है। जहां योजना के शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन थे, वो जून 2026 तक बढ़कर करीब 16 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बताया है।
3: साथियों, जल जीवन मिशन गाँव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही। ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान।
2: बांदा के रहने वाले धीरेन सिंह ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि अब हर वक्त पानी आने से जीवन बहुत आसान हुआ है।
4: इससे पहले जब ये जल जीवन मिशन के नल नहीं थे हमारे गांव में, तब हमको पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी। हम कुआं तालाबों से पानी लेकर आते थे जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था हम लोगों को। जब से ये हर घर नल लग गया है तो इससे हम लोगों को बहुत सुविधा हो गई है।
2: योजना के तहत 7 वर्षों में 12.60 करोड़ से अधिक घर जोड़े गए हैं। अभय निगम, आकाशवाणी समाचार, बांदा।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर

0: पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज कोलकाता में इंडिया एनर्जी वीक 2027 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें लखनऊ से इंडियन ऑयल के निदेशक वित्त अनुज जैन और डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। श्री जैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के सुझाव लेकर इस क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।
1: हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया को दिखाएं कैसे इंडिया अपने एनर्जी नीड्स को मीट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि जो हमारे यंग बच्चे हैं, यंग माइंड्स हैं, वो भी चीज को समझें, क्योंकि हमारी कंपनी का और हमारी मिनिस्ट्री का ये बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इंडिया अपनी नई एनर्जी नीड्स को मीट कर सकता है, और उसके हमें नए यंग बच्चों का सहयोग चाहिए।
0: गोरखपुर में आज प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय लखनऊ की ओर से दूर संचार पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इसमें गोरखपुर समेत आसपास के 20 से अधिक जिलों से बड़ी संख्या में पेंशनर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लखनऊ के प्रधान नियंत्रक संचार लेखा अजय कुमार ने बताया कि सभी पेंशनरों की समस्याओं का समाधान कराना विभाग की जिम्मेदारी है, ताकि उन्हें पेंशन से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो।
2: यहाँ पर पेंशनर्स की कोई भी परेशानियाँ हो, उसको उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके प्रांत में जाके सुनना और उनको सरलता के साथ सॉल्यूशन निकालना, ये हमारा दायित्व है। हमारे अधिकारी जो हैं लखनऊ और वाराणसी में तो तैनात हैं ही, गोरखपुर एक बहुत बड़ा प्रांत है जहाँ पर लगभग 20 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं। पेंशनर्स के लिए सुविधाएँ यहाँ पर प्राप्त कर सकें, उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं।
0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में आयोजित हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह को आयकर विभाग की अपर महानिदेशक ऋचा रस्तोगी ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों, परंपराओं और जनमन को एक सूत्र में पिरोने वाली राष्ट्र की आत्मा है। मुख्य अतिथि ने पखवाड़े भर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। समारोह में आकाशवाणी लखनऊ के केंद्र प्रमुख आरबी सिंह, कार्यक्रम प्रमुख सुमोना पांडे समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं कई दिनों तक हुई भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण शाहजहांपुर में रामगंगा, लखनऊ में सई, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा, गोंडा में क्वानो और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने कल राज्य के कुछ जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतें बनाएंगी विकसित उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक के निर्वाचन के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। 23 अक्टूबर को होगा मतदान। और भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से राज्य की कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने कई जनपदों में कल हल्की बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता, जिसका विषय है समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी। आइए सुने।
4: एक समय था जब हिंदी कविता में रस के अभाव को लेकर

बहुत विवाद हुआ था, वैसे ही आज के समय में कथा साहित्य में लालित्य के अभाव को लेकर भी कुछ विवाद जब तब उठते देखे जाते हैं। कविता में रस को कसौटी मानने के विरुद्ध तर्क यह दिया गया था कि रस की अवधारणा एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित है जिसमें बल संयोग समाहित या संगठन पर है, विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। पर आज हमारा युग विघटनात्मक अनुभवों का युग है। मूल्यों का विघटन, पारिवारिक संबंध भावनाओं का विघटन, व्यक्तित्व का विघटन आदि सब हमारे आधुनिक समाज में नई तरह की जटिलताओं के कारण हमारे अनुभव का अंग बन रही है। यहाँ कुछ भी संगठित होने से पहले विघटित होने के लिए अभिशप्त है। ऐसे में आनंद से ज़्यादा विवाद हमारे अनुभव में जब आता है तो आनंद के स्थान पर विषाद अधिकांशतया घेरे रहता है। रस और लालित्य की अवधारणाएँ आनंद मूलक अवधारणाएँ हैं। हमारे रोज़मर्रा के अनुभव अब उतने आनंद मूलक तो रह नहीं गए हैं, इसलिए प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि कविता में रस और कथा साहित्य में लालित्य की रक्षा की जाए या उस यथार्थ को चित्रित करने का संकल्प लिया जाए जो त्रासद है, विडम्बनापूर्ण है। त्रासद और विडम्बनापूर्ण यथार्थ को रसात्मक और ललित कैसे बनाया जा सकता है? दूसरी बात ये कि लालित्य के लिए कल्पना की ज़रूरत अनिवार्यतया पड़ती है, लेकिन आज की कथा विधा में यथार्थ की अभिव्यक्ति पर जोर रहता है। कल्पना के लिए यथार्थ की बलि नहीं दी जा सकती है। कथा विधा के लिए पहली प्रतिज्ञा ये होती है कि वह यथार्थ को सामने लाए। पर फिर याद करें प्रेमचंद को, कला में यथार्थ की समाई के बारे में प्रेमचंद ने लिखा था कि कला देखती तो यथार्थ है पर यथार्थ होती नहीं, उसकी खूबी यह है कि वह यथार्थ न होते हुए भी यथार्थ मालूम हो। इस कथन पर विचार करें तो स्पष्ट है कि कोई भी रचना सिर्फ यथार्थ को हूबहू प्रस्तुत कर देने से रचना नहीं बनती। रचना सिर्फ प्रस्तुति नहीं होती, रचना एक निर्मिति होती है, यानी किसी अनुभव को सिर्फ यथातथ्य पेश कर देना मात्र पर्याप्त नहीं होता। अनुभव को भाषा और शिल्प में इस तरह फिर से रचना होता है कि वह जो अनुभव के सामान्य स्तर पर प्रकट नहीं हो पा रहा है वह रचना अनुभव के रूप में प्रकट हो जाए। माना जाता है कि उपन्यास विधा अपनी पैदाइश से ही छिपाने की कला के विरुद्ध प्रकट करने की कला का मुहिम छेड़ते आया। लेखन कर्म एक प्रकार का उद्घाटन कर्म, रिवीलिंग एक्टिविटी होता है। जो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है उसकी आड़ में कितना कुछ अनदेखा रह जा रहा है उसे रिवील कौन करेगा? साहित्य ही करेगा ना। तो उपन्यास इसी प्रतिज्ञा के साथ आया कि वह रिवील करेगा। सत्य कितना भी कुरूप हो, कितना भी असुंदर हो, तब भी उसको रिवील करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा समाज, हमारा पाठक वर्ग उससे परिचित हो जाए और वास्तविकता को देखते हुए वो एक नए प्रकार का सौंदर्य बोध विकसित करे। और ये जो रिवीलिंग एक्टिविटी है इसकी सफलता सिर्फ इतने से नहीं होती कि हमारा यथार्थ बोध कितना प्रबल है, बल्कि उसके लिए यह भी ज़रूरी होता है कि कल्पनाशीलता से काम लेने की तमीज़ भी लेखक की बनी रहे। कल्पनाशीलता एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्यक्ष अनुभव को भी जब रचना में लाती है तो उसमें कुछ नया ले आया जाता है। पाठक को लगता है कि उसने जो देखा वो अधूरा देखा, उसको पूर्ण देखना ही उसके लिए सुख का विषय होता है। और यह भी है कि यह जो रिवीलिंग एक्टिविटी है यह पाठक को कई बार आश्वस्त करती है और इसीलिए सुखद भी होती है कि जो वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पाया था उसको देखने की दृष्टि उसी रचना के माध्यम से मिल गई। ये भी एक प्रकार का आनंद का विषय होता है। यानी अगर स्थितियाँ दुखद भी हैं, स्थितियाँ त्रासद भी

तो उनके त्रास और उनके दुख को रचना में प्रकट इस तरह किया जाता है कि रचना पठनीय बनी रहे, अपठनीय ना हो जाए, उबाऊ ना हो जाए। आज कथाविधा में अगर लालित्य के लिए कोई अवकाश बनाना है तो दो शर्तें निभानी होंगी। एक तो यह कि उसके अर्थ को निरे शास्त्रीय अर्थ से बाहर लाकर उसकी नई व्याख्या करनी होगी, और दूसरी यह कि यथार्थ की अभिव्यक्ति में कल्पना के सहयोग की संभावनाएं तलाशनी होंगी। कल्पना में ही तो नवीनता होती है, वरना जो कुछ है वो तो हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए जो देख रहे हैं उसको कल्पना के जरिए आकर्षक बनाना, पाठक को अपनी ओर खींचने का गुण उसमें लाना, यह भी एक प्रकार का लालित्य है। लालित्य का संबंध पठनीयता और संप्रेषणीयता से भी माना जाना चाहिए। बौद्धिकता का अतिरेक आज देखने में आ रहा है। दिमाग से ज़्यादा, विचार से ज़्यादा रचना में हम पाठक को देने के लिए जो तत्व रखते हैं वो कई बार दिमाग के स्तर पर ही रह जाते हैं, हृदय में उतर नहीं पाते। बौद्धिकता का अतिरेक रचना में जटिलता और दुरूहता ले आता है। सामान्य पाठक को इसीलिए ऐसी रचनाएं उबाती हैं, और जहां ऊब पैदा हो वहां लालित्य कैसे संभव हो सकता है। पाठक किसी रचना को निरी तथ्यात्मक जानकारी के लिए नहीं पढ़ता, जानकारी तो वो किसी अन्य स्रोत से भी पा सकता है। रचना में आकर्षण के लिए उसकी भाषा और शैली में कुछ ऐसा होना चाहिए कि रचना पाठक को शुरू से आखिर तक बांधे रखे, रमाए रखे अपने में। लालित्य तत्व ऐसे आकर्षण को संभव बनाता है। इसी तत्व के बल पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा पाठक को अपने में रमा लेते हैं। वहाँ जो समय आता है वह केवल सामयिक घटनाओं पर पांव रखकर नहीं आता, कथानक अतीत से लिए जाते हैं, पर द्विवेदी जी उन्हें अपनी शैली में कुछ ऐसे प्रश्नों से जोड़ देते हैं जो हमें अपने समय के प्रश्न मालूम पड़ने लगते हैं। इसका कारण है वह लालित्य भाव जो द्विवेदी जी के पांडित्य भाव को रोचक और आकर्षक बना देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लालित्य को कथाविधा में रुचि पैदा करने वाले तत्व के रूप में लिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि कोई भी उपन्यास इस उद्देश्य से नहीं लिखा जाता कि वो अपने समय का निरा घोषणा पत्र ही हो। उसमें कल्पना तत्व के जरिए तथ्य को कथ्य में रूपांतरित किया जाता है। आचार्य द्विवेदी ने अपने उपन्यासों को जहाँ भी रचने का निर्णय लिया उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उसमें कल्पना के बल पर उसको पुराने समय से मुक्त करके नए समय से जोड़ा जा सकता। यानी कल्पनाशीलता ही वो तत्व है जो दो समयों के अंतराल को पाटता है। आचार्य द्विवेदी ने अपने उपन्यासों को गप कहा था, तो इसीलिए कि निरी तथ्यबद्धता को वो किसी रचना का गुण नहीं मानते थे। द्विवेदी जी इतिहास से कथा का बीज लेते थे लेकिन पल्लवित करते थे उसे कल्पना के माध्यम से। यूँ अपनी रचनाओं में वे लालित्य के लिए अवकाश बनाते थे। आज जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें इस अवकाश के लिए बहुत कम कोशिश की जाती है। लगता है कि जैसे सब कुछ जो सूचना माध्यमों से हमें मिल रहा है वो रचना में रख दिया जाए। सूचना का ये आधिक्य कई बार संवेदना पर एक ऐसे दबाव की तरह आता है कि पाठक को उसमें मन रमाने के तत्व नहीं मिलते। द्विवेदी जी ने जिस शैली का विकास किया था अपने तरीके से, वो उपन्यास के लिए नया था, कथा विधा के लिए नया था। बाद में इसी शैली का विकास मनोहर श्याम जोशी और उदय प्रकाश की रचनाओं में होता मिलता है। उदय प्रकाश ने कहीं लिखा भी है कि उपन्यास वह विधा है जिसमें यथार्थ सीमित और अयथार्थ यानी कल्पना असीमित है। इसका अर्थ यह नहीं कि रचना यथार्थ विरोधी हो जाए, बल्कि यह है कि कल्पना का ऐसा उपयोग किया जाए कि कल्पना स्वयं दूसरा यथार्थ बन जाए या

0: कहें कि कल्पना प्रत्यक्ष यथार्थ की पूरक बन जाए, ये कल्पना की रचनात्मकता का गुण है। कल्पना भी रचनात्मक होकर के हवाई नहीं बल्कि जीवन से जुड़ी हुई रचना में आए तो उससे एक प्रकार का लालित्य रचना में पैदा होता है। बहुत सी कहानियाँ या उपन्यास आज इस तरह लिखे जाते हैं कि उनमें वही यथार्थ आता है जिसे हम खुद अपनी आँखों पहले ही देख चुके होते हैं। ऐसे में रचनाएँ यथार्थ का पुनर्प्रस्तुतिकरण मात्र बनकर रह जाती हैं। उसमें कोई ऐसा तत्व नहीं मिलता हमको कि हमें लगे कि यह निर्मिति हुई है। प्रस्तुति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है निर्मिति। महत्वपूर्ण ये है कि कैसे कोई रचनाकार जो उसे प्रस्तुत मिला है अपने जीवन में उसे पाठक के सामने इस तरह रखे कि पाठक को एक आँख मिल जाए वह सब देखने की जो कल्पना के जरिए लेखक ने रचा था। यथार्थ को एक नवरचित रूप देने का कार्य करना मौलिक प्रतिभा वाले कथाकारों के जरिए ही संभव हो पाता है। प्रतिभा की मौलिकता का पता देने के लिए केवल बौद्धिकता अपर्याप्त है। कल्पना को मुक्त विचरण के लिए स्पेस जहाँ मिले वहीं पाठक का मन भी रमता है। लालित्य मन को रमाने में योग देता है। आज का युग निरी सूचनाओं का युग है। इस युग को आज के उपन्यासकार निरी सूचना कथा बना देते हैं, इसलिए कथावस्तु एकहरी हो जाती है। रचना में अनुभव न मिथकों का सहारा लेता है न लोक तत्वों का, इसलिए रोचकता का ह्रास होता है। लालित्य तत्व की योजना करने के लिए अपने समय के तथ्यों के खूंटों से बांधे बिना रचना में अपने समय को छविमान करने के प्रयत्न करने होते हैं। ये प्रयत्न जहाँ जहाँ आज होते देखे जाते हैं वहाँ वहाँ एक प्रकार का लालित्य का अनुभव हमें होता है। यानी लालित्य को अब केवल उस जो हमारे यहाँ शास्त्रीय ढंग से बंटवारा हुआ था ललित कला और उपयोगी कला, आज ज़रूरत इस बात की है कि इस भेद को इस ललित कला और उपयोगी कला के बीच में जो दीवार खड़ी की जाती रही उसको तोड़ा जाए। उपयोगी भी हो रचना, हमें अपने समय को समझने की दृष्टि भी दे और लालित्य भी बाधित न हो। इसीलिए ये कहा गया कि लालित्य का अभाव अगर हमें दूर करना है तो रचनाकार को अपने लेखन में केवल तथ्यों से ही नहीं बल्कि तथ्यों से मुक्ति इस प्रकार प्राप्त करनी होगी कि वो यह प्रभाव दे सके अपने पाठकों को कि रमणीयता भी है, आनंद भी है। पाठक को केवल दुखी करना रचना का गुण नहीं होता। दुखों का भी चित्रण इस तरह हो कि उसमें भी एक प्रकार की गहराई के साथ पाठक की आत्मीयता बन जाए।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता, विषय था समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं भूपेंद्र कुमार, इनके स्वर में आइए पहले सुनते हैं संत कवि तुलसीदास की ये भक्ति रचना।

0: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारे कलाकार हैं भूपेंद्र कुमार। संत कवि तुलसीदास की इस भक्ति रचना के बाद प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेश जौहरी का लिखा ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारे कलाकार थे भूपेंद्र कुमार। अभी आपने सुना इनके स्वर में राजेश जौहरी का लिखा ये गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब वक्त हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का हमारा ये विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी पर। आज लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है। यादों के कैनवस पर फिल्मों के रंग बिरंगे चित्र, और जब चित्र लता मंगेशकर जी की आवाज से बनी तो वो चित्र नहीं एक एहसास बन जाते हैं। श्रोताओं, आज 28 सितंबर है। आज ही के दिन सन 1929 में इंदौर में एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ था, हेमा, जिसे दुनिया ने बाद में लता के नाम से पूजा। श्रोताओं, आज हम लता जी को फिल्मों के पर्दे पर याद करेंगे। कैसे एक छोटी सी बच्ची ने 13 साल की उम्र में माइक के सामने खड़े होकर अगले 70 सालों तक पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनकर राज किया। तो आइए आज के इस विशेष फिल्म संगीत में हम आपको सुनवाते हैं लता जी के 5 नगमे 1949 से लेकर 2006 तक। एक ही आवाज का जादू, वो नगमे जो कभी पुराने नहीं हुए। तो चलिए इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं इस गाने से, जिसने लता जी को रातों रात भारत की स्वर साम्राज्ञी बना दिया। साल 1949, फिल्म थी महल, संगीतकार थे खेमचंद्र प्रकाश और अभिनेत्री थी मधुबाला, जो एक सुनसान महल में अपने पिछले जन्म के प्रेमी का इंतजार कर रही हैं। और तभी महल की दीवारों से एक आवाज आती है। ये आवाज 20 वर्षीय लता जी की थी। पुरुष आवाज

रश्मी दर्द था, जो रहस्य था उसने पूरे देश को चौंका दिया था। आएगा आएगा आएगा आने वाला। आइए सुनिए लता जी का वो

क्या बात है, आज भी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ गाना नहीं, एक इतिहास है। इसी गाने के बाद कहा गया कि मधुबाला खूबसूरत है, पर उनकी खूबसूरती को आवाज लता जी ने दी है। महल के बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और फिर आया 60 का दशक, जब लता जी की आवाज जमा हो गई और इश्क की सबसे पाकीजा आवाज बन गई। फिल्म थी 1964 की वो कौन थी। इस फिल्म में संगीत दिया था मदन मोहन साहब ने, जिन्हें लता जी बड़े प्यार से मदन भैया कहती थी, और गीतकार थे राजा मेहंदी अली खां साहब। कहती हैं इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी को हल्का बुखार था, पर उन्होंने कहा नहीं, आज ही रिकॉर्डिंग करेंगे। और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज 60 साल बाद भी हर विदाई पर, हर जुदाई पर गाया जाता है।

वाह, वाह। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लता जी ने इस लाइन को ऐसा गाया कि ये सिर्फ गाना नहीं, एक दुआ बन गई। और फिर 70 का दशक आया। लता जी अब केवल अभिनेत्रियों की आवाज ही नहीं, बल्कि हर महिला के जज्बात की आवाज बन गई थी। साल 1975 में आई फिल्म आंधी, तत्कालीन समय की सबसे बोल्ड फिल्म। अभिनेत्री सुचित्रा सेन जो एक बड़ी नेता बन गई हैं और अब अपने पति संजीव कुमार से परसों बाद मिलती हैं, दोनों के बीच एक खामोशी है, एक शिकायत है। इस फिल्म के लिए संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने, गीत लिखे थे गुलजार साहब ने और उन्होंने लिखा तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। लता जी ने इसे शिकायत नहीं, एक सुकून की तरह गाया। ये गाना आज भी पति पत्नी के बीच की उस अनकही प्यार का

वाह क्या साबित किया। लता जी और किशोरदा की जोड़ी का ये गाना आज भी रेडियो की सबसे बड़ी फरमाइश है श्रोताओं। और अब जरा तेजी से 90 के दशक में आते हैं, जब लता जी 60 साल की हो चुकी थी पर आवाज आज भी 16 साल की ही लगती थी। साल 1994 में आई एक पारिवारिक फिल्म हम आपकी हैं कौन, पूरे हिंदुस्तान ने इस फिल्म को शादी की तरह मनाया था। संगीतकार थे राम लक्ष्मण और गीतकार देव कोहली। इस फिल्म में लता जी ने माधुरी दीक्षित के लिए गाया था दीदी तेरा देवर दीवाना। सोचिए 65 साल की लता जी 27 साल की माधुरी जी के लिए गा रही हैं और कोई बता ही नहीं सकता कि आवाज में उम्र का कोई फासला है। यही तो लता जी का जादू था, वो उम्र से

वाह क्या बात है, पूरे थिएटर में लोग इसी गाने पर नाचे थे। लता जी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ दर्द भरे गाने ही नहीं गाती, मस्ती भरे गीत भी उतनी ही खूबसूरती से गा सकती है। एक ऐसा गाना जो लता जी ने अपने जीवन के आखिरी दौर में गाया, जिसने नई पीढ़ी को भी उनका दीवाना बना दिया। साल 2006 फिल्म रंग दे बसंती। संगीतकार थे A.R. रहमान, गीतकार प्रसून जोशी। श्रोताओं, इस फिल्म में लता जी ने एक माँ के दर्द को गाया था जिसका बेटा देश के लिए शहीद हो जाता है। और जब लता जी ने ये गाना गाया तो रहमान साहब ने कहा था, मैंने आज सरस्वती को अपने स्टूडियो में देखा है। लता जी की आवाज़ में अब वो बचपन की चंचलता नहीं बल्कि एक माँ की ममता, एक तपस्वी की शान।

श्रोताओं, भारत रत्न से सम्मानित सुर साम्राज्य की लता मंगेशकर जी ने 30,000 से अधिक गीत 36 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाए, जिनमें हिंदी, मराठी और बंगाली प्रमुख हैं। उन्होंने भजन, शास्त्रीय संगीत, गजल, देशभक्ति गीत, रोमांटिक और हर भाव के गीतों को अपनी सुरीली और भावनात्मक आवाज से अमर कर दिया।

साथ की भी प्रतिमूर्ति अपनी लता दीदी को आकाशवाणी प्रयागराज की ओर से हम अश्रुपूरित नेत्रों से विनम्र नमन कर रहे हैं। श्रोताओं, लता जी अब लुका छिपी खेल रही हैं। वो हमारे सामने नहीं है पर उनकी आवाज हर जगह है। आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश 1977 की फिल्म किनारा। इस फिल्म में अभिनय किया था जितेंद्र और हेमा मालिनी ने। संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और गीत लिखा था गुलजार साहब ने। श्रोताओं, इस फिल्म में एक गाना है जो लता जी ने भूपेंद्र जी के साथ गाया था, पर जब लता जी इस गाने को अकेली गाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो अपना भविष्य देख रही हों। गुलजार साहब ने लिखा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। जी हाँ श्रोताओं, इससे बड़ा सच लता जी के लिए और क्या हो सकता है। आज लता जी का चेहरा हमारे बीच नहीं है, उनका नाम भी एक दिन किताबों में रह जाएगा, पर उनकी आवाज़ ही तो पहचान है। आज 28 सितंबर उनके जन्मदिन पर इसी आवाज़ को हम सलाम करते हुए सुनते हैं आज का ये आखिरी नगमा।

मेरी आवाज ही पहचान है। लता जी चली गई पर उनकी ये बात सच हो गई, आज आवाज ही बाकी है और वही सबसे बड़ी पहचान है। इसी आवाज के साए में आज का ये विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम यहीं खत्म करते हैं। आकाशवाणी प्रयागराज से मुझे यानी संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत प्रोग्राम खत्म करने की। आप जहां भी हैं लता जी को याद करते रहिए।

श्रोताओं, आज 28 सितंबर है और आज का दिन हम सबके लिए बड़ा खास है क्योंकि आज लता दीदी का जन्मदिन भी है और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की आजादी की इबारत लिखने वाली एक ऐसे शेर का भी जन्मदिन है जिसने 23 साल की उम्र में ही मौत को भी शर्मिंदा कर दिया। में आज के ही दिन अविभाजित भारत के पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ था। घर में उसी दिन चाचा स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह जेल से छूटकर आए थे, इसलिए दादी ने उसका नाम रखा भागावाला भगत सिंह।

किसे पता था कि ये भागा वाला बच्चा एक दिन पूरे देश का भाग्य बन जाएगा। भगत सिंह सिर्फ नाम नहीं, एक सोच है। उन्होंने कहा था, राग का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है।

कहते ही भगत सिंह की माँ विद्यावती ने आखिरी मुलाकात में कहा था, बेटा बसंती चोला पहन के जाना। भगत सिंह हंसकर बोली, माँ बसंती चोला तो हमारे बिस्मिल चाचा पहन गए, अब मैं भी वही पहनूंगा।

आप सुन रही थी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, इस फिल्म का ये गाना। सोनू निगम और साथियों की मिलीजुली आवाजों में

श्रोताओं, भगत सिंह का सबसे प्यारा तराना कौन सा था? वही जो उनके गुरु रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुई कातिल में है। भगत सिंह इसी जेल में तो रोज गुनगुनाया करते थे और जब साथियों की हिम्मत टूटती तो यही गाकर उनका हौसला बढ़ाती थी।

वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या जिगरा था उस 30 साल के युवा में।

ये गाना पगड़ी संभाल जट्टा, जो सीधी भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के नारे से लिया गया है। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, ये वही नारा था जो भगत सिंह ने बचपन में अपने चाचा से सुना था।

श्रोताओं, भगत सिंह ने अपनी वसीयत में लिखा था, मेरी राख को मेरे गांव में मत बिखेरना, उसे वहीं बिखेरना जहां से मेरे देश के मजदूर गुजरते हों। आज 28 सितंबर को उनके जन्मदिन पर हम वादा करें कि हम उनकी राख को नहीं, उनकी सोच को जिंदा रखेंगे। आज भगत सिंह हर उस दिल में जिंदा हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। आकाशवाणी प्रयागराज की तरफ से शहीद आजम भगत सिंह को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद। गुलबीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस

0: वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगौड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए

0: संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
1: Annually, we have been meeting regularly.
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
3: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
5: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
6: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
5: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक

0: निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
1: So if you want to make more export,
2: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उड़ी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
4: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि ये जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
3: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं। यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
4: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
5: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से कि सभी सहकार भारत टैक्सी जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
4: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास

0: मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू घुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधित संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Zaira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency. Aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a six-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals. In men's javelin throw, Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500 meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National CT Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said at the same time the government

0: पॉलिसी जारी करने से मुतालिक मामलात, दावों, निगरानी और रिपोर्टिंग को आसान बनाते हुए मवेशियों के लिए एक ही जगह मरबूत डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मवेशी परवरी और डेयरी के महकमे की मवेशियों की बीमा स्कीम के तहत बीमा किए गए मवेशियों के लिए यह मुमकिन हो सकेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का मकसद मवेशियों की बीमा खिदमात को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर, काबिल रसाई और टेक्नोलॉजी पर मबनी बनाना है। साथ ही मवेशियों के हामिल किसानों और उनकी गुजर बसर की पायदारी को मदद करने की खातिर जोखिम से मुतल्लिक तहफ्फुज़ को तकवीत देना है। तफसील हमारे नामनगार से।
1: पशुधन बीमा पोर्टल मुल्क भर में मवेशियों के बीमा प्रोग्रामों में खिदमात की बेहतर फराहमी में तआवुन करते हुए बेहतर तालमेल, बरवक्त निगरानी और डेटा पर मबनी इंतजाम में मदद करेगा। जनाब सिंह ने कहा कि यह पोर्टल किसानों की गुजर बसर के तहफ्फुज़ की जानिब अहम कदम है और किसान की आमदनी बढ़ाने, उसके ज़रई असासों और मवेशियों के तहफ्फुज़ और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए की तकमील करता है। जनाब राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पोर्टल के ज़रिए किसान अब अपनी बीमा दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे, वहीं इस पूरे अमल की डिजिटल निगरानी की जाएगी।
2: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
1: पशुधन बीमा पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी समेत 11 मुकामी जबानों में भी दस्तियाब होगा, जिससे मवेशियों के मालिक किसान उनकी अपनी जबान में मालूमात और खिदमात तक रसाई हासिल कर सकेंगे। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज़ में हम तज़किरा कर रहे हैं कि इमदाद बाहमी की वजारत के ज़रिए इस नज़रिए को किस तरह बरूए-कार लाया जा रहा है।
3: भारत के इमदाद बाहमी के शोबे में 8.5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड सोसाइटियां शामिल हैं, जिनके 32 करोड़ से ज़्यादा मेंबरान हैं। ये सोसाइटियां कर्ज, डेयरी, चीनी, माही परवरी, मकानात और मार्केटिंग समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं और मुल्क के देही इलाकों के तकरीबन 98% हिस्से का अहाता करती हैं। साल 2021 तक इमदाद बाहमी की खातिर अलग से कोई वजारत नहीं थी। इसकी जिम्मेदारी वजारत ज़राअत के पास थी, जो मुख्तलिफ महकमों और रियासतों में तकसीम थी, जबकि बेशतर बुनियादी सोसाइटियाँ अब भी कागज़ों पर अपने रिकॉर्ड रखती थीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में जुलाई 2021 में इमदाद बाहमी की वजारत की तश्कील अमल में आई। इस वजारत ने मुल्क में अपनी नौईयत का पहला कौमी कोऑपरेटिव डेटाबेस तैयार किया, ताकि मुल्क में मौजूद इमदाद बाहमी के इदारों का दुरुस्त रिकॉर्ड मुरतब किया जा सके। इसके अलावा बैन रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया और बुनियादी ज़रई कर्ज सोसाइटीज़ PACs को कंप्यूटराइज करने के लिए माली मदद फराहम की गई। वजारत ने कोऑपरेटिव बैंकों को फवाइद की बराह रास्त मुंतकली DBT के निज़ाम से भी मुंसलिक किया। 2024 में नई दिल्ली में मुनक़िदा आलमी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि का नज़रिया पेश किया और कहा कि ये लाखों गाँवों, ख़वातीन और किसानों के लिए खुशहाली की राह हमवार कर रहा है।
4: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
3: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: कल से दिल्ली भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दिगर तालीमी इदारों में नौजवान वोटरों के इंदराज के लिए खसूसी कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। ये कैंप वोटर फहरिस्त की खसूसी जाम नज़रसानी SIR 2026 के तहत लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने तलबा से अपील की है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वोटर फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएँ और जमहूरी अमल में हिस्सा लें। ये खसूसी कैंप बुध तक जारी रहेंगे। भारत और मंगोलिया के दरमियान आज से बराह रास्त परवाज़ शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बातार के दरमियान बाकायदा तौर पर परवाज़ का आगाज़ किया गया है।

0: सर्विस के शुरू होने से दोनों राजधानी के दरमियान सफर का वक्त कम होकर तकरीबन 5 घंटे हो जाएगा। ये प्रवास मंगोलिया की फजाई कंपनी हुन्नू एयर के जरिए चलाई जा रही है और हर पीर को दस्तयाब रहेगी। इस नए फजाई रास्ते से उन मुसाफिरों के सफर का वक्त नुमाया तौर पर कम हो जाएगा जो इससे पहले बीजिंग या इंचियोन के जैसे मकामात पर परवाज तब्दील करके सफर करते थे। इस सफर में आमतौर पर 13 से 18 घंटे लगते थे। बुनियादी घरेलू इशारे में आज 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में 1,124 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई और वो गुज़िश्ता 6 महीनों के सबसे निचले मकाम पर पहुंच गया। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई और वो 22,800 से नीचे बंद हुआ। इस गिरावट के असबाब खाम तेल की कीमत में इजाफा, खित्ते की सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल और कमज़ोर आलमी रुझानात हैं जिनका असर सरमायाकारों के जज्बे पर पड़ा है। जापान में जारी एशियाई खेलों में आज भारत ने मजीद 8 तमगे जीते हैं। इनमें निशानेबाजी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, कुरश और मुक्केबाजी शामिल हैं। एथलेटिक्स में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भारत के यशवीर सिंह ने चांदी का और रोहित यादव ने कांसे का तमगा जीता। वहीं मर्दों की लॉन्ग जंप में भारत के श्री शंकर मुरली ने 8 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम किया। मर्दों की 1,500 मीटर की दौड़ में गुलवीर सिंह ने चांदी का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद मुस्तहकम निज़ाम वज़ा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज़ किया। भारत और मुत्तहदा अरब इमारात ने मकामी करेंसी में तजारत से मुतालिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तजारत को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने पशुधन बीमा पोर्टल शुरू किया है जिसका मकसद मवेशियों का बीमा, दावों और निगरानी के निज़ाम को आसान और मुअस्सर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कमतरीन सतह पर पहुंच गया और ये 72,772 पर बंद हुआ। और एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है गजलों का प्रोग्राम कहकशा।
2: सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की रात एक आम रात नहीं है। आज 28 सितंबर है। आज ही के दिन एक ऐसी आवाज ने इस धरती पर जन्म लिया था जिसने बाद में करोड़ों दिलों में अपना घर बनाया। आज स्वर कोकिला भारत रत्न हमारी अपनी लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है। जब शहर की सारी आवाजें सो जाती हैं, तब कहीं एक आवाज जागती है। वो आवाज जो सदा नहीं, सदा का सुकून है। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं गजलों, नगमों और जज्बातों का नरम और नाजुक सिलसिला कहकशा। आज कहकशा के इस आसमां पर सिर्फ एक ही सितारा है जो सबसे रोशन है। जी हाँ, लता मंगेशकर। लता जी के बारे में क्या कहें? अक्सर कहा जाता है कि लता जी गाती नहीं थी बल्कि लफ्जों को अपने सुरों से रोशन करती थी। तो आज जन्मदिन के इस जश्न में हमने उनकी 6 बेशकीमती गजलें चुनी आपके लिए। एक आवाज जो दूर से आती है और दिल के सबसे करीब आकर ठहर जाती है। जब लता जी की आवाज में ढलती है तो इसमें इंतजार की एक मीठी सी कसक पैदा हो जाती है।

क्या एहसास है, फिर कहीं दूर से आती हुई सदा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना बहुत दिनों से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। लता जी ने इस गजल में सदा लफ्ज को ऐसा गाया है कि वो सदा सचमुच सदा बन जाती है। श्रोताओं, लता जी की गजलों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो शोर नहीं करती, वो सरगोशी करती हैं, और सरगोशी हमेशा दिल तक पहुंचती है। इसी सरगोशी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगली गजल, जिसमें इश्क का वो जो सच है जो हम सब जानते हैं पर मानना नहीं चाहती।

इश्क में अक्सर हमें अंजाम पता होता है, फिर भी हम उसी राह पर चलते हैं। ये हिम्मत नहीं, ये इश्क की मासूमियत है, और इस मासूमियत को लता जी से बेहतर कौन गा सकता था। श्रोताओं, गजल के बारे में कहा गया है कि गजल जिस्म की नहीं रूह की बात करती है, और हमारी अगली गजल इसी रूह के फलसफे पर है। जिस्म और रूह दो किनारे, हम उम्र भर जिस्म में रहते हैं और तलाश करते हैं रूह की। इस गजल में शायर कहता है कि मैं जिस्म रहा ही कहाँ, मैं तो बस एक एहसास हूँ। और जब लता जी इसे गाती हैं तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे आवाज़ जिस्म छोड़कर रूह में उतर गई हो।

वह जो इतने करीब हैं, पास होकर भी दूर होने का ये एहसास लता जी ने अपनी आवाज के कंपन से मनो जिंदा कर दिया हो। गजल का हर शेर जैसे दिल की दीवार पर टंगा हुआ एक अक्स है।

श्रोताओं, लता मंगेशकर जी ने हजारों गाने गाए, पर उनकी गजलों में एक अलग तरह की तराई मिलती है, जैसे वो महफिल में गा रही हूं पर महफिल से बिल्कुल अलग अपनी ही दुनिया में खोई हुई। अब सुनते हैं इश्क की सबसे नाजुक बात।

इश्क की बातें। लता जी जब इश्क लफ्ज को अदा करती हैं तो लगता है जैसे वो लफ्ज नहीं कोई दुआ हो। उनकी आवाज में इश्क की पाकीज़गी है, उसकी इबादत है, उसका नूर है।

और श्रोताओं, आपने आज की कहकशा का आखिरी चिराग था। एक ऐसी गजल जो उन तमाम अधूरे ख्वाबों के नाम है। आज लता जी के जन्मदिन पर उन ख्वाबों को रोशनी की जरूरत है, और उस रोशनी का नाम है लता मंगेशकर।

0: श्रोताओं, आप सुन रही थी गजलों की कहकशा। आज का यह कार्यक्रम केंद्र था सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी पर। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर जरूर बताइएगा। और अब अपने रेडियो हमसफर संतोष श्रीवास्तव को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। शब्बा खैर।
1: लेकिन मानिए वो गई नहीं है, वो आज भी हमारी रातों में, हमारी तन्हाइयों में, हमारी गजलों में जिंदा है। क्योंकि कुछ आवाजें जिस्म छोड़ती हैं रूह नहीं। आज 28 सितंबर है, उनके जन्मदिन पर आइए एक बार कहीं जन्मदिन मुबारक हो लता जी। इन्हीं 6 गजलों के साथ सितारों भरी इस कहकशा को हम यहीं समेटते हैं। श्रोताओं, आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर जरूर बताइएगा। और अब अपने रेडियो दोस्त संतोष,
0: हम आकाशवाणी प्रयागराज से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में तीन और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 83.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर, तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा, लास्ट थ्रो 88.56। तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल

0: में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेस में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। चौथे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष डी के सातवें स्थान पर रहे, तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। चौथे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली चौथे स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गई। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी, तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी, ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट ऑफ का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट ऑफ, जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट ऑफ में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट ऑफ तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है, लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया, बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: Going to the Kurash arena where Pinky Balhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. Pinky was in action in the semi-final today against South Korea's Mo Soo-min and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's 3rd ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
0: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे, तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हाँ, बॉक्सिंग

0: रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक तीन मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना दोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी तीन मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से दो दिन में भारत के लिए पदकों की दो हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि दो आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot off. She survived this shoot off and she's through to the quarterfinals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
3: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग

0: सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
0: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौडरानी ने ली हेई झेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झों को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हरा कर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन्स सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर, बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासो ने पुरुषों के शॉर्ट बोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेन सांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेव आर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सर्वनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6ठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविन्द्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals.

0: medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
1: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में तीन तीन भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आपको सुनवाने जा रहे हैं पुकार फिल्म की ये प्रार्थना, लता मंगेशकर और बच्चों की मिली जुली आवाजों में, बोल जावेद अख्तर की, संगीत ए आर रहमान का।

लता मंगेशकर और बच्चों की मिलीजुली आवाजों में अभी आप सुन रही थी पुकार फिल्म की ये प्रार्थना, जावेद अख्तर की लिखी और ए आर रहमान साहब की संगीतबद्ध की हुई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिमान फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की मिली जुड़ी आवाजों में, बोल मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत एस जी बर्मन का। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित जसराज का राग बागेश्वरी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप सुन रही थी पंडित जसराज का राग बागेश्वरी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगीति की केदार पंडित ने और हारमोनियम पर लहरा दे रहे थे अप्पा जलगांवकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सहअध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुवाट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित